एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंबोर चैनल है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 25वीं तिथि। तदनुसार दिनांक 15 जून सन 2026 है। सुबह के 5:57 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

एफएम 101.5 MHz पर यह आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथम्बोर चैनल है। सुबह के 6 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली स्लोवाकिया यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया गई थी और वहां के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी इस वर्ष फरवरी में एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंभौर चैनल है। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, आज है सोमवार।

सोमवती अमावस्या। गौरी और शंकर का प्यार अमर है। सोमवती अमावस्या पर उनकी कृपा से जीवन में सुख और सौभाग्य का संचार होता है। तो सुनते हैं ये प्यारा सा भजन।

कान्हा की हर शरारत पर राधा का मुस्कुराना है, यही तो प्रेम का सबसे सुंदर और प्यारा तराना है।

जो डूबे श्री राम जी की मस्ती में चार चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में। सबकी अपनी दुनिया है, हमारी दुनिया तो श्री राम जी में ही है। तो सुनते हैं श्री राम जी का ये भजन।

यूं ही नहीं झुकती दुनिया माता के दरबार में, तकदीरें बनती है मैया के दरबार में। माँ दुर्गा हृदय से अंधकार मिटा देती है, थक चूका हुआ इंसान जिंदगी से उसे अपनी चरणों में जगह दे देती है। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, माता रानी का जयकारा करने से मन को अच्छा लगता है।

कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी दूसरों की भलाई के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, और दूसरों को दुखी करने के समान या उन्हें कष्ट देने के समान कोई पाप भी नहीं है। इसलिए हमेशा हमें परहित के बारे में ही सोचना चाहिए।

श्रोताओं, भी आपने सुना ये भजन, और इसी के साथ हमारा आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। FM 101.5 MHz पर हम आकाशवाणी सवाई माधोपुर के रणथंबोर चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 6:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। इसमें आप सुनेंगे हमारी आज की प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

श्रोताओं, अब से कुछ ही देर के बाद यानी सुबह के 6:35 पर श्री रामचरितमानस गान आप सुनेंगे विविध भारती से। विविध भारती से ही संगीत सरिता सुन सकते हैं 6:45 पर। हेलो रणथंबोर फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम हमारे केंद्र से आप सुनेंगे सुबह 7:00। 8:00 समाचार प्रभात का समय रहेगा। मॉर्निंग न्यूज आप सुनेंगे 8:15 पर। 8:30 पर आप सुनेंगे लोक रंग। आज के कलाकार हैं बनवारी लाल। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकते हैं सुबह 9:00। सुगम संगीत का समय है सुबह 9:10 और 9:30 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने नए पुराने। सुबह 10:00 पिटारा उजाले उनकी यादों के आप सुन सकते हैं विविध भारती से। और रंग तरंग का समय रहेगा 11:00। 12:00 प्रायोजित कार्यक्रम उमंग हमारे केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती से। यादों की महफिल का समय रहेगा दोपहर 12:30। दिन में 1:00 हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे। 1:05 पर विविध भारती की गीतमाला आप सुन सकते हैं। विविध भारती से सदाबहार नगमे का समय रहेगा दिन में 2:30 पर। 3:00 आप सुनेंगे विविध भारती से सखी सहेली। और 4:00 विविध भारती से ही पिटारा में आज आप सुनेंगे सेहतनामा। हमारे केंद्र से युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी आप सुन सकते हैं शाम 5:00, जिसमें आज की बात का विषय है रोजगार और स्वरोजगार, वार्ता होगी सामाजिक समरसता और युवा। ज्ञान मंजरी में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। कार्यक्रम विवरण सुन सकते हैं शाम 5:40 पर। 5:45 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम गोधुली आप सुनेंगे। शाम 6:00 नारी लोक शहरी महिलाओं का कार्यक्रम आप सुनेंगे, जिसमें आज की बात का विषय है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। साथ ही चर्चा होगी रोजगार व्यवसाय ऋण। अन्य जानकारी में सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। हिन्दी में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकते हैं शाम 6:30 पर। 6:40 पर जिले की चिट्ठी का समय रहेगा। और 6:50 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकते हैं। सुगम संगीत आप सुनेंगे शाम 7:00। विशेष कार्यक्रम केंद्र सरकार के 12 वर्ष आप सुन सकते हैं शाम 7:10 पर। रात्रि 7:45 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे। रात्रि 8:00 कृषकों के लिए कार्यक्रम होगा, जिसमें चर्चा होगी खेतों की मेड़बंदी निर्माण का महत्व। साथ ही आज की खबर में आप जानेंगे केंचुए खाद तैयार करने की विधि और रासायनिक खादों पर बढ़ती निर्भरता। साथ ही स्वस्थ धरा खेत हरा जैविक खेती अपनाए पर आप जानकारी प्राप्त करेंगे। पुराने फिल्मी गीतों के कार्यक्रम यादों के स्वर का समय रहेगा रात्रि 8:30 पर। रात्रि 9:00 फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा फोन करें गीत सुने। आज के फनकार आप सुन सकते हैं रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10:00 सवाई माधोपुर का अंशदान खेल जगत कार्यक्रम, जिसमें आज भेंट वार्ता होगी हैंडबॉल खिलाड़ी और कोच श्याम सिंह राजावत से बातचीत। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे ढलती जाए रात। 11:00 समाचार हिंदी में होंगे। और 11:05 पर आज की सभा का समापन होगा। श्रोताओं, ये था आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान में आज का प्रसंग विविध भारती से।

चित्रकूट की सभा में भरत की अनुनय विनय सुनकर श्री राम के मन में असमंजस उत्पन्न हुआ और उन्होंने विह्वल हो भरत जो और जैसा चाहें वैसा ही करने का वचन दे डाला। ये सुनकर जहां एक ओर उपस्थित जन

समुदाय हर्षित हुआ, वहां दूसरी ओर देवताओं के मन में नैराश्य उत्पन्न हो गया। देवगण सहित इंद्र आशंकित हो गए। यदि भरत के आग्रह पर श्रीराम अयोध्या लौट गए तो सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। उन्हें मालूम है कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त के वश में हैं। भक्त प्रहलाद ने नृसिंह के रूप में भगवान को प्रकट किया था। अतः देवताओं ने भरत के हृदय में प्रविष्ट होकर अपनी योजना को फलवती बनाने का निश्चय किया। देवगुरु बृहस्पति ने भी इसके लिए अपनी सहमति दे दी। फलस्वरूप भरत के मन में अपना आग्रह त्याग कर ये विचार आया कि श्रीराम की आज्ञा पालन करने में ही कल्याण है। उन्होंने स्वामी की प्रशस्ति करते हुए निर्णय उन्हीं पर छोड़ दिया।

0: गज तत्व वाद्य प्रस्तुत है गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की अगली कड़ी। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक।
1: कल हमने लोक संगीत में प्रचलित विभिन्न सारंग

संगीतियों की बात की थी। आज हम शास्त्रीय संगीत में प्रचलित सारंगी के संबंध में विचार करेंगे। सच पूछा जाए तो सारंगी हमारी मूल्यवान और समृद्ध वाद्य संगीत परंपरा का परिचायक है। गज से बजाए जाने वाले वाद्यों में सारंगी एक ऐसा वाद्य है जिसका प्रथम सप्तक अचल थाट में, दूसरा सप्तक रागानुरूप और तीसरा सप्तक संवाद स्वरों में मिलाया जाता है। गायन में सारंगी की संगत से यदि वादक सुरीला हुआ तो जिस भरावट व आकर्षण की वृद्धि होती है वह अपने आप में अनुपम है। इसके आविष्कर्ता के संबंध में अमीर खुसरो, सारंग खान, मिया कल्लू खान, हकीम बकरात गो तथा रावण आदि के नाम लिए जाते हैं। इसके गज का आकार धनुष के समान होता है और धनुष को सारंग भी कहा जाता है। इसीलिए यह भी संभव है कि धनुष से बजाए जाने के कारण इसका नाम सारंगी पड़ा हो। वर्तमान पीढ़ी के श्रेष्ठ सारंगी वादक पंडित राम नारायण जी ने चर्चा के दौरान बताया कि एक जमाने में सारंगी को सौरंगी कहते थे और सौरंगी से बिगड़कर सारंगी नाम प्रचलित हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके आविष्कर्ता के संबंध में विभिन्न मत पाए जाते हैं। मध्यकालीन ग्रंथकारों ने सारंगी का उल्लेख भिन्न भिन्न नामों से किया है किंतु विस्तृत वर्णन नहीं किया है। फिर भी इतना अवश्य कहा जा सकता है कि 13वीं शताब्दी तक यह अल्प रूप में प्रचारित हो चुकी थी। संगीत राज ग्रंथ के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि 15वीं शताब्दी तक यह प्रचलित हो गई थी। यही कारण है कि आईने अकबरी और राग दर्पण ग्रंथों में सारंगी का वर्णन मिलता है। 17वीं शताब्दी में रचित राग दर्पण में सारंगी वादकों का वर्णन भी है। इसके अलावा संगीत नारायण ग्रंथ में सारंगी वीणा का विस्तृत विवेचन किया गया है। आइए इस मधुर वाद्य सारंगी पर राग किरवानी सुनते हैं। कलाकार हैं उस्ताद अब्दुल लतीफ खां।

अब हम सारंगी के आकार पर विचार करेंगे। सारंगी की लंबाई लगभग 2 फीट होती है। इसके नीचे वाले भाग को मंधान कहते हैं, जिसे चमड़े से मढ़ दिया जाता है। घुरच अर्थात ब्रीच की व्यवस्था इसी मंधान में की जाती है। मध्य भाग को छाती अथवा गला कहते हैं। छाती की बाईं ओर 24 छोटी छोटी खुटियां तरबों के लिए लगाई जाती है। सबसे ऊपर वाले भाग को मगज कहते हैं, जिसमें दाएं बाएं मुख्य तार हेतु 2-2 बड़ी खुटियां और 11 तरबों हेतु छोटी खुटियां लगाते हैं। इस प्रकार इसमें मुख्य 4 तार और 35 तरबों के तार लगाए जाते हैं। वर्तमान में सारंगी वादक मुख्य 4 तार को सामान्यतः इस प्रकार मिलाते हैं। प्रथम तात का तार मध्य सप्तक षड़ स्वर में, दूसरा तात का तार मंद्र सप्तक के पंचम स्वर में, तीसरा तात का तार मंद्र सप्तक के षड़ स्वर में और चौथा तार फौलाद का पंचम में अथवा मध्यम में राग के अनुसार मिलाते हैं। गज को दाहिने हाथ में पकड़कर तारों पर घर्षण किया जाता है। सितार, वायलिन आदि वाद्यों में स्वर उत्पत्ति हेतु अंगुलियों से तार को दबाया जाता है, जबकि सारंगी में स्वर निकालने हेतु अंगुलियों के नाखून का स्पर्श या घर्षण किया जाता है। भारतीय संगीत की सूत, घसीट, गमक, कण, खटका, मुरकी आदि विशेषताओं को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखने के बाद भी सारंगी जितनी लोकप्रिय होना चाहिए उतनी लोकप्रिय नहीं है, जिसका कारण वाद्यगत कठिनाई और व्यवहारिक जीवन से है। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि उस्ताद बुंदू खां और पंडित राम नारायण जी ने सारंगी वाद्य को एकल वाद्य के रूप में स्थापित करने का हर संभव प्रयत्न किया और इसमें इन्हें सफलता भी प्राप्त हुई है। अब हम पंडित राम नारायण जी के सारंगी का रसास्वादन करते हैं।

गज तत्वाद्य। गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की ये कड़ी अभी आपने सुनी। कलाकार थे डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति सहायक थे जयंत श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता चारूबाला खरे। संगीत सरिता के लिए इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी भोपाल की सौजन्य से। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से प्रसारित कार्यक्रम FM 101.5 MHz पर या आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंबोर चैनल है। सुबह के 7 बजे हैं। अब आप सुनेंगे फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो रणथंबोर।

एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंबोर चैनल और अब आप सुन रहे हैं फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो रणथंबोर। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त ममता गौतम। दोस्तों, कहते हैं हर सुबह एक नई उमंग लाती है, मुश्किलें तो आती है पर कभी ना थकाती है। अपने इरादों को सच करने का हौसला रखिए, आगे बढ़िए। ये जिंदगी सिर्फ अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए है। उम्र को अगर हराना है तो शौक हमेशा जिंदा रखिए। घुटने चले या ना चले, मन हमेशा उड़ता परिंदा रखिए। इसी सोच के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज है सोमवार, तो हमारे अधिकतर श्रोताओं ने सुनने चाहे हैं शिवजी के ही कुछ प्यारे से भजन। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं याराना फिल्म के गीत के साथ। इसे सुनने के लिए हमें कॉल किया है महमदाबाद गुजरात से कृष्ण भाई रेवारी, हीराबेन कमल और विजय रेवारी ने। ये सुनना चाहते हैं किशोर कुमार की आवाज में याराना फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत।

अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से। इस गीत को सुनने के लिए हमें कॉल किया है ग्राम पीपरिया जिला सागर मध्य प्रदेश से उमा शंकर पटेल, शांति, नंदनी, प्रियांशी, माधव, यशवंत और सिमरन ने। तो सुनते हैं इन सब की पसंद पर अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों फिल्म से सोनू निगम और सुखविंदर सिंह को।

अभी आपने सुना अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों फिल्म से गीत। आप सुन रहे हैं हेलो रणथंबोर कार्यक्रम। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम में पूरब और पश्चिम इस फिल्म से गीत। इसे सुनने के लिए हमें कॉल किया है ग्राम कुंदलवाड़ी जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, संजय मुर्मेकर और किशोर सेठ डांचावार ने। तो सुनते हैं इन सबकी पसंद पर पूरब और पश्चिम फिल्म से महेंद्र कपूर, ब्रजभूषण और श्यामा को

अभी आपने सुनी पूरब और पश्चिम फिल्म से ये आरती। श्रोताओं आप सुन रहे हैं हेलो रणथंबोर कार्यक्रम। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं आपकी कसम फिल्म का गीत। इसे सुनने के लिए कॉल किया है ग्राम खोखरा वाली श्री गंगानगर से विनोद बारासा, विशाल, विकास, रोशनी, शगुन बारासा ने। इसी नगमे को सुनना चाहा है ग्राम पांचोला सवाई माधोपुर से भंवर सिंह जादौन ने। तो सुनते हैं इन सब की पसंद पर आपकी कसम फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत।

अभी आपने सुना ये गीत जिसे हमने लिया था फिल्म आपकी कसम से। लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सुनते हैं बैजू बावरा फिल्म से गीत। सुनने के लिए फरमाइश की है मथुरा उत्तर प्रदेश से शारदा प्रसाद प्रजापति, नवीन कविता, गोविंद सिमरन व्योमनी और पुरंजय ने। तो सुनते हैं ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में।

अभी आपने सुना बेजू बावरा फिल्म से गीत। लीजिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं वादा फिल्म से गीत। सुनने के लिए फरमाइश की है अशोक ने पटेल नगर सवाई माधोपुर से, तो सुनते हैं अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज में वादा फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं हेलो रणथंबोर कार्यक्रम। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम में ये गीत जिसे हमने लिया है, फिल्म का नाम है गंगा जमुना सरस्वती। गंगा जमुना सरस्वती फिल्म का ये गीत है और इसे सुनने के लिए हमें कॉल किया है पीलीभीत उत्तर प्रदेश से सुखलाल वर्मा, लज्जा देवी, योगेश और कार्तिक ने। तो सुनते हैं इन सबकी पसंद पर ये गीत फिल्म गंगा जमुना सरस्वती फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में।

अभी आपने सुना गंगा जमुना सरस्वती फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज थी। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनते हैं मैंने प्यार किया इस फिल्म से गीत। इसे सुनने के लिए कॉल किया है इंदिरा कॉलोनी सवाई माधोपुर से मनीषा अग्रवाल और नवल अग्रवाल ने। इसी गीत को सुनना चाहा है शहर सवाई माधोपुर से नगेंद्र शर्मा और सपना शर्मा ने। तो सुनते हैं इन सब की पसंद पर मैंने प्यार किया फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत।

अभी आपने सुना ये गीत जिसे हमने लिया था मैंने प्यार किया फिल्म से। लीजिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म। फिल्म का नाम है खुदगर्ज और इसे सुनने के लिए कॉल किया है बेमेतरा छत्तीसगढ़ से योगेश जांगड़े रंजीता जांगड़े ने। तो सुनते हैं इनकी पसंद पर ये गीत फिल्म खुदगर्ज से। मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाजें हैं।

श्रोताओं, अभी आपने सुना खुदगर्ज फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम में लीजिए, अब सुनते हैं दिल फिल्म से गीत। इसे सुनने के लिए कॉल किया है रीको सवाई माधोपुर से, सीता गौतम, एसपी शर्मा, बबली गौतम और गोविंद शर्मा, साथ ही परी, सृष्टि, कन्नू और इनके परिवार ने। तो सुनते हैं इन सबकी पसंद पर अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में ये गीत फिल्म दिल से।

अभी आपने सुना ये गीत जिसे हमने लिया था फिल्म दिल से। श्रोताओं लीजिए, कार्यक्रम में आप सुनते हैं धर्मात्मा फिल्म का गीत। सुनने के लिए फरमाइश की है गोधन जिला दतिया मध्य प्रदेश से ब्रजकिशोर कुशवाहा, रामरती, सोनम और हर्षित कुशवाहा ने। तो सुनते हैं इन सबकी पसंद पर धर्मात्मा फिल्म का ये गीत, मुकेश और कंचन की आवाजें हैं।

अभी आपने सुना ये गीत धर्मात्मा फिल्म से। कार्यक्रम में लीजिए, अब सुनते हैं जान तेरे नाम फिल्म का गीत। इसे सुनने के लिए कॉल किया है जबलपुर एमपी से अशोक सिंह, अंकिता सिंह, कृषभ सिंह और वेदा ने। तो सुनते हैं साधना सरगम और उदित नारायण की आवाज में जान तेरे नाम फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ हमारा आज का हेलो रणथंबोर कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम में हमें और भी फोन कॉल्स प्राप्त हुए हैं, जिनमें शामिल हैं रायपुर झालावाड़ से मुकेश कुमार गुप्ता और ग्राम पचीपलिया सवाई माधोपुर से रामगोपाल वर्मा, कुलदीप वर्मा और मोहिनी वर्मा। श्रोताओं, आप निराश न हो, समय अभाव के कारण हम आपकी फरमाइश के गीत नहीं सुना पा रहे हैं, लेकिन आपके गीत, पसंद के गीत आज नहीं तो कल हम अपने कार्यक्रम में अवश्य सुनाएंगे। आज का हेलो रणथंबोर कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो रणथंबोर। श्रोताओं, सुबह के 8 बजने को है, अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: का टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की

0: नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए और बर्मिंघम के एजबस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
1: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि ये समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, AVR फ्रांस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित

0: 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थीं। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
1: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
3: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
2: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2020 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
4: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे या पूरे देश में ट्रेन चले।
2: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज।

0: आज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है। इनोवेशन भारत के डीएनए में शामिल, वीर अर्जुन ने पीएम के शब्दों को दिया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, कहा देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है तब फ्रांस स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता। ममता गुट ने कहा विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच, हिंदुस्तान लिखता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ाने। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा वे खुद संगठन को परखें।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. US and Iran reach agreement to end military operations, open Strait of Hormuz and lift US naval blockade of Iranian ports. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 summit to begin today at Evian in France. Prime Minister Modi to participate in outreach sessions tomorrow. Noida International Airport in Jewar begins commercial flight operations. National Testing Agency releases admit cards for NEET UG 2026 re-exam to be held on 21st of this month. And in cricket, India beat Pakistan by 64 runs in their ICC Women's T20 World Cup opener at Edgbaston in Birmingham. And now the news in detail. The United States and Iran finalized a deal to end their 107-day war and open the Strait of Hormuz, the narrow waterway used to ferry one-fifth of the global oil supplies. U.S. President Donald Trump made the announcement on Truth Social last night, saying America

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे बनवारी लाल की आवाज में ये गीत, और इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 101.5 MHz पर हम आकाशवाणी सवाई माधोपुर के रणथंबौर चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने को है, अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हुआ। देशभर में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 700 शीमार्ट और 1000 जिला आपूर्ति केंद्र खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर को मॉडल सिटी के रूप में विकसित करने के लिए अधिकारियों को मिशन मोड पर काम करने को कहा। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई इलाकों में आंधी और बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत। चौमू में सर्वाधिक 44 मिलीमीटर वर्षा। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। श्री ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा। होर्मुज से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। श्री ट्रंप ने कहा कि इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, इनोवेटर, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के किसानों को आश्वस्त किया है कि आगामी खरीफ सीजन के लिए राज्य में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक मौजूद हैं। जयपुर में कल कृषि और सहकारिता विभाग की एक समीक्षा बैठक के दौरान श्री शर्मा ने कहा कि अच्छी पैदावार के लिए किसान मिट्टी की जांच के आधार पर और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से ही उर्वरकों का उपयोग करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए ऑनलाइन रिकॉर्ड रखने के भी निर्देश दिए ताकि किसानों की वास्तविक जरूरत का सटीक पता चल सके। बैठक के दौरान उर्वरक कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी राज्य में खाद की निर्बाध आपूर्ति का पूरा भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को खाद की कालाबाजारी और अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। इसके साथ ही कृषि पर्यवेक्षकों को गांव-गांव जाकर किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करने के भी निर्देश दिए। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश भर में 700 सीमार्ट और 1000 जिला आपूर्ति केंद्र बनाए जाएंगे। ग्रामीण विकास सचिव रोहित कंसल की अध्यक्षता में हुई दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई। इन सी मार्ट को अच्छी व्यापारिक संभावनाओं वाले स्थानों पर खोला जाएगा ताकि महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों को आसानी से बाजार मिल सके। बैठक में महिला उद्यमों को बढ़ावा देने, क्षमता निर्माण और वित्तीय समावेशन पर विशेष जोर दिया गया। ग्रामीण विकास सचिव ने योजनाओं को तय समय पर पूरा करने के लिए एक वार्षिक कैलेंडर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं और संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए लखपति दीदी, सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य जैसी श्रेणियों में पुरस्कार भी दिए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि जयपुर के सुव्यवस्थित विकास, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इसे देश के मॉडल शहर के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को समन्वित कार्य योजना के साथ मिशन मोड पर काम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कल जयपुर के विकास, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजधानी में कचरा संग्रहण, परिवहन और इसके वैज्ञानिक निस्तारण के लिए बेहतर कार्य योजना बनाकर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने खुले में कचरा फेंकने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। साथ ही मॉनसून सीजन को देखते हुए जयपुर में जलभराव रोकने और नालों की सफाई के लिए समयबद्ध तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम का मिजाज बदल गया है। आंधी और बारिश का दौर जारी रहने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। रविवार को जयपुर, अजमेर

0: भीलवाड़ा, कोटा और टोंक सहित कई शहरों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। दौसा और चित्तौड़गढ़ में तेज अंधड़ से पेड़ गिरने के समाचार हैं। और ब्यौरा हमारे जयपुर संवाददाता से।
1: बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में सबसे अधिक वर्षा 44 मिलीमीटर जयपुर के चौमू में दर्ज की गई है। वहीं प्रदेश के सात शहरों में अधिकतम तापमान अब भी 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। फलादी 42.8 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं सिरोही में सबसे कम 22.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों तक बीकानेर, जयपुर, अजमेर, कोटा और जोधपुर संभाग में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बारिश होने की संभावना जताई है। न्यूज रूम से मैं जयकिशन शर्मा, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: हनुमानगढ़ में आज सुबह तेज मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हुआ। इसके साथ ही जिले में कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे तापमान में गिरावट आने से लोगों को राहत मिली है। जिले में हुई बारिश से किसान नरमा, कपास और धान की फसल को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के थीम पर विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल पाली जिले में आयोजित प्रदर्शनी के दौरान स्थानीय सांसद पीपी चौधरी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इन नीतियों का सीधा लाभ समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे। श्री चौधरी ने कहा कि सरकार ने कम प्रीमियम वाली छोटी बीमा योजनाएं शुरू कर आमजन को बड़ी राहत दी है।
2: गरीबों की बात करें तो उनके लिए विभिन्न तरह की जो योजनाएं, बीमा योजना लेके आए हैं, जो 12 रुपए की भी है, 424 रुपए की भी है, इस तरह से छोटी छोटी अमाउंट की बीमा योजना ला करके उनके घरों में एक सुरक्षा प्रदान की है फाइनेंशियल। और उसके साथ साथ आज देखेंगे विश्व में भारत जो है आज एक नंबर पे है इस मामले में खाद्य सुरक्षा अपने नागरिकों को देने, और आने वाले टाइम में 2029 तक 5 करोड़ घर देने का टारगेट, और यही नहीं पानी के लिए हर घर नल के द्वारा पानी, इसके लिए करीब 16 करोड़ घरों तक पानी पहुंचाया जा चुका है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हुआ। देश भर में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 700 शीमार्ट और 1000 जिला आपूर्ति केंद्र खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर को मॉडल सिटी के रूप में विकसित करने के लिए अधिकारियों को मिशन मोड पर काम करने को कहा। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई इलाकों में आंधी और बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत। चौमू में सर्वाधिक 44 मिलीमीटर वर्षा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: FM 101.5 MHz पर हम आकाशवाणी सवाई माधोपुर के रणथंबोर चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनते हैं सुगम संगीत। इसमें आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीत और गजल। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गजल के साथ, जगजीत सिंह की आवाज है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

बुझा के करे, ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर

फाल्गुनी पाठक की आवाज में भी आपने सुना ये गैर फिल्मी गीत, और इसी के साथ हमारा आज का सुगम संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंबोर चैनल। सुबह के 9:30 हुए हैं, अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ब्रह्मचारी फिल्म के गीत के साथ। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी गीतकार हैं और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

अभी आपने सुना ये गीत जिसे हमने लिया था ब्रह्मचारी फिल्म से। लीजिए अब सुनते हैं विश्वात्मा फिल्म से गीत। साधना सरगम की आवाज है, गीतकार है आनंद बख्शी और संगीत दिया है बीजू शाह ने।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान.

0: पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने नए पुराने। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम में धूम 3 फिल्म से गीत। सुनिधि चौहान की आवाज है, गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत दिया है प्रीतम ने।

अभी आपने सुना धूम 3 फिल्म से गीत। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने नए पुराने। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं चालबाज फिल्म से गीत। अमित कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें हैं। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो सुनते हैं चालबाज फिल्म से ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने नए पुराने। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम में इश्क फिल्म का गीत। उदित नारायण, कुमार शानू, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें हैं। गीतकार हैं राहत इंदौरी और संगीत दिया है अनु मलिक ने। तो सुनते हैं इश्क फिल्म से ये गीत।

इश्क फिल्म का ये गीत था, उदित नारायण, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और कुमार शानू की आवाजें थी। और इसी के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने नए पुराने अब यहीं संपन्न होता है। FM 101.5 MHz पर यह आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंबोर चैनल है। श्रोताओं, सुबह के 10 बजे हैं। अब आप सुनेंगे पिटारा उजाले उनकी यादों के। विविध भारती से

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: उजाले उनकी यादों की।

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने लहरा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और

0: कभी छांव, कभी धूप तो कभी छांव।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया।
2: मितुल जी, हम उनके गीतों की बात कर रहे हैं, देशभक्ति गीतों के साथ ही उन्होंने बहुत सारे भजन भी लिखे हैं प्रदीप जी ने, जिन्हें हम सुनते हैं तो

0: बहुत अच्छा लगता है। और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा भजन ज्यादा अच्छा है या कौन सा कम है, तो आप बताइए कि भजन लिखने की जो उनकी आदत थी वो कैसे पड़ी और किस तरह से भजन की दुनिया में भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत भजन लिखे।
1: उनकी माँ के द्वारा जो लोकगीत गाए जाते थे, भजन गाए जाते थे, वो भी उन्होंने बहुत आत्मसात किए बचपन से। तो भजन की आदत तो उनको भगवान के प्रति आस्था, भगवान के प्रति प्रेम। लेकिन आपको एक बात ये बताऊं कि भगवान उनके लिए कौन थे? अदृश्य शक्ति। ये नहीं है कि वो मंदिर जाएंगे या वहां जाके कुछ पूजा करेंगे। वो पूजा पाठ में बिल्कुल नहीं मानते थे, रिचुअल्स में नहीं। लेकिन उनके लिए आकाश में बैठा वो भगवान था जो उनकी बात सुनते हैं। अगर कभी आप सुनेंगे उनके गीत, तो वो भगवान को भी ऐसे संबोधित करते हैं कि जो वो अपनापन से करते हैं। अगर आप ऊपर देख के ये कहे कि सूरज रे जलते रहना, रे, हाँ, तो ये रे जो है ना, वो एक प्रेम का संबोधन है। तो उन्होंने भगवान को भी ऐसे ही संबोधन किया, और गाने भी और भजन भी बहुत पॉपुलर लिखे। उनकी शुरुआत का एक भजन था, मैं तो आरती उतारू राधे श्याम की रे, राधे श्याम की रे, मुक्ति धाम की रे। ये उनका शुरुआत की पहला भजन था फिल्म के लिए। और उसके बाद में अगर आप आगे चले तो मैं तो आरती उतारू रे संतोषी
0: संतोषी
1: माता
0: माता
1: की,
0: की, वो तो
1: तो
0: बहुत पॉपुलर
1: जो
0: था
1: तो भजन लिखने में और मदद करो संतोषी माता।
0: माता।
1: तो उनको भगवान के प्रति जो था ना, वो भी आस्था मन से आती थी, ना कोई मंदिर में जाके। तो कई भजन ऐसे हैं और बैठ के लोग सुनते हैं, तो वो भजन भगवान के भजन है। हरि
0: तो
1: दर्शन फिल्म आई थी, उसमें बहुत सारे भजन थे, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, वो भी एक बहुत पॉपुलर गीत था।
0: बिल्कुल।
1: बहुत बहुत सारे हरि दर्शन फिल्म के गाने हैं जो भजन है।
0: तो घर का माहौल कभी ऐसा हुआ कि आप बहनों ने मिलकर भी उन भजनों को गाया अपनी माँ के साथ
1: बहुत
0: ऐसा?
1: बार माँ के साथ
0: जी।
1: तो नहीं, माँ तो नहीं गाती थी। माँ तो कहे कि मैं तो इनके सामने कुछ नहीं गाऊंगी हम गाते थे तो जय जय नारायण नारायण हरि हरि, वो हमको बहुत अच्छा लगता था।
0: तो मितुल जी, आप कहें तो ये गीत हम आपको सुनवा दें।
1: जरूर सुनवाइए।
2: जय

0: मितुल जी, कभी पिता के साथ बैठकर बात करने का मौका मिला?
1: घर में तो हम लोग साथ में ही रहते थे ना, तो उसमें बातचीत तो रोज ही होती थी, और रोज बातचीत होने में जनरली मजाक भी बहुत करते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ, उनको आप अगर देखें तो उनका जो स्वभाव था, खुलकर हंसते थे। हंसना उनका इतना खुलकर था, जो एक बच्चों की तरह हृदय जो साफ रहता है ना, वैसे ही इंसान ऐसे हंस सकता है। तो बैठ के बातचीत का तो बहुत मौका मिलता था, लेकिन जनरली बातचीत होती थी तो माँ के खिलाफ होती थी। आज तुम्हारी माँ ने जो दाल में हींग अच्छी नहीं डाली,
0: अच्छा जी,
1: और माँ वहां पर खड़े होके सुनते हैं, तो बेटा आज का जो खाना था वो थोड़ा सा हींग ठीक नहीं थी, फिर मजाक में हर एक बात में। तो वो चीज माँ को बहुत मन में खटका देती थी।
0: अच्छा।
1: हाँ ठीक है, मतलब
0: हाँ,
1: वो भी मजाक में, लेकिन वो बोलते ठीक है, आज हींग ठीक नहीं हुई ना, ठीक है, तो अब तुम ना आप एक काम करिए कि आप मालवा से ही हींग मंगा लो। तो वैसी बातचीत बैठ बैठ के हंसी मजाक चलती थी, और काफी कुछ बातचीत तो काफी होती थी, जैसे घर में परिवार में होती है।
0: कभी प्रदीप जी ने आप बच्चों से पूछा हो, भी पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ने में कैसे हो, कुछ लिखते हो, पढ़ते हो? मेरी तरह कुछ कविताएं लिखने की आदत है तुम लोगों में, क्या कभी ऐसा भी कहा उन्होंने?
1: नहीं, उन्होंने कहा कभी लिखना नहीं,
0: अच्छा।
1: जो करना हो दूसरा कुछ करो, लिखना और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मत सोचना, और लिखना कभी तो कभी नहीं बनना, ऐसा उन्होंने कहा कि भाई आपको ठीक है, मैं बहुत हो गया, अगर पैसे कमाने हैं तो इसमें मत पड़ा, कुछ और काम करना। तो फिर मैंने और कुछ काम किया, और तब भी उनको थोड़ा सा बुरा लगा था जब मैंने अपना काम शुरू किया, पेंटिंग करना, लोगों को सिखाना, ड्राइंग सिखाना।
0: तो उन्हें बुरा क्यों लगा?
1: हाँ, तो यही बात है कि उनको बुरा क्यों लगा। बोलते कवि प्रदीप की बेटी है और वो बाहर जाके पैसे कमाएगी।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो वो उनको जैसे तब एक ट्रेडिशनल पिता उनके मन में जागृत हुआ
0: जागृत है। जी
1: कि
0: जी
1: भाई ये काम आप क्यों
0: हाँ,
1: करेंगी।
0: लेकिन तब तक आप भी बड़ी हो गई थी,
1: मैं तो
0: आपकी भी
1: बड़ी हो
0: अपनी
1: गई थी,
0: दुनिया बन चुकी थी, आपके भी अपने सपने थे, अपने
1: तो
0: शौक थे।
1: हाँ, तो तब माँ ने कहा कि नहीं, हमें तो उसको अपने पैरों पे खड़ा करना है, उसको अगर ये अच्छा लगता है और वो उसमें आगे बढ़ना चाहती है तो क्या हुआ। तो ये कोई थोड़ी कहेगा कि ये प्रदीप जी की बेटी है तो क्यों पैसे बाहर जाके कमाएगी। जाएगी बाहर जाके, मैं बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशंस देती थी कॉलेजेस में, स्कूल्स में। उसके बाद में उनको लगा कि नहीं नहीं ये तो अच्छा कर रही है, तो फिर कोई भी आएगा उनके पास तो उनको लेके आएंगे कि देखो मेरी बेटी का ड्राइंग, देखो देखो मेरी बेटी ने आज ये पेंटिंग बनाया,
0: भी तब
1: वो
0: होता
1: फिर
0: है,
1: गर्व
0: वो
1: महसूस करने
0: महसूस
1: लगे।
0: किया। मितुल जी, कहते हैं कि माँ कवि निराला भी उनकी कविताओं और उनकी आवाज की प्रशंसक थे, क्या ये बात सच है?
1: बहुत सच है, क्योंकि निराला जी ने उनमें एक स्पार्क देखा, मतलब एक ऐसा कवि देखा जो बहुत सालों के बाद एक ऐसी भाषा यूज कर रहा था, और छायावाद वगैरह जो है, तो निराला जी ने वो सुना उनकी कविता, और उन्होंने उनके ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिखा कि ये नवीन कवि प्रदीप जो आगे चल के बहुत आगे बढ़ेगा, ऐसा।
0: जी। तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि उन्होंने देशभक्ति गीतों को बहुत लिखा, बहुत बड़ी तादाद में उनके भजन हम देखते हैं, क्या कभी उन्होंने रोमांटिक गीत भी लिखे प्रदीप जी
1: हाँ,
0: ने?
1: रोमांटिक गीत भी अच्छे अच्छे लिखे हैं, और वो भी इतनी अच्छी भाषा में लिखे हैं कि कोई भी कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई वल्गर बात आई। प्रेम की बात भी उन्होंने कितनी अच्छी की है
0: खूबसूरती
1: कि
0: के
1: मेरे
0: साथ,
1: जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, बोलो
0: तो
1: तुम
0: तुम
1: कौन
0: कौन
1: हो,
0: हो?
1: बोलो तुम कौन
0: आहा, क्या
1: हो।
0: बात है, क्या
1: हाँ,
0: बात
1: तो
0: है
1: मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले,
0: जी।
1: कितना सुंदर से उन्होंने संबोधन किया है प्रेमी को। या फिर दूसरा है कि ना जाने कहाँ हम थे, ना जाने कहाँ
0: तुम
1: तुम।
0: थे।
1: हाँ,
0: आहा।
1: तो ये भी बहुत सुंदर सुंदर है, और एक हल्का फुल्का सा गाना भी है जो जगदीप के ऊपर फिल्माया गया था, ओ दिलदार बोलो एक बार
0: क्या मेरा
1: क्या
0: प्यार
1: मेरा
0: पसंद है
1: प्यार
0: तुम्हें?
1: पसंद है। तो
0: बहुत
1: ये भी कितना सुंदर सुंदर से गीत है,
0: बहुत स्वीट।
1: और कभी भी कोई भी इसको गा सकता है,
0: हर पल के गीत है ये,
1: हर
0: हर
1: पल के। तो
0: मौके
1: ये
0: के गीत है।
1: रोमांटिक गाने भी उन्होंने
0: जी
1: लिखे,
0: जी
1: और ज्यादातर युगल गीत थे ये।

0: मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम अभी रोमांटिक गाने उनके सुने भी सही और बात भी की हमने।
1: जी जी बिल्कुल।
0: उन्होंने कविता शुरू की थी रोमांटिक कविताओं से, और उसके बाद में जो है उनको देशभक्ति की कविता लिखने का मौका मिला, और फिर उन्होंने उसी लाइन पे अपनी कविताएं लिखी। तो एक रोमांटिक उनकी कविता बहुत शुरू शुरू में थी, और वो है, मेरे छंदों के बंद बंद में तुम हो प्रिय, तुम हो इन बरन बरन के विहंगों का कल कूजन, क्यों बरबस हर लेता है जनजन का मन, मैं खोज रहा था इस मिठास का कारण, हंस दिए तभी तुम, हुआ रहस्योद्घाटन।
1: क्या बात है।
0: और तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम हो, मेरे छंदों के बंद बंद में प्रिय तुम
1: हो। क्या बात है।
0: तो ये
1: रुमानियत गहरी गहरी
0: कितनी गहरी। तो मतलब ये है कि तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम, मतलब काव्य का जो स्वस्तिक है
1: उसके
0: कुमकुम हो।
1: बहुत सुंदर, जिस तरह से उपाधियां दी है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रदीप जी ने।
0: ये भी उनकी एक कविता है जो रोमांस पे है
1: जी। और ये खासियत है कि इतना बड़ा कवि, जो कि जन जागृति जिन्होंने पैदा कर दी, जिन्होंने देश प्रेम लोगों के दिलों में पैदा कर दिया, वो कभी रुमानियत के उस माहौल में भी थे जहां रुमानी कविता उनकी कलम से निकली, रुमानी गीत निकले इतने शानदार तरीके से, जिन्हें हम आज भी गुनगुनाते हैं। तो हम बात करते हैं 1997 की, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष था कवि प्रदीप जी के लिए, बताइए कैसे।

0: उनको 1998 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, जो 1997 का दादा साहेब फाल्के गिना जाएगा,
1: जी
0: लेकिन जब मिला तो वो इसमें मिला 98 में।
1: जी
0: दादा साहेब फाल्के अवार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है फिल्म इंडस्ट्री के
1: जी
0: लिए, लेकिन तब भी वहां के जो आयोजक थे वो थोड़े चिंतित थे,
1: किस बात पे?
0: क्योंकि प्रदीप जी ने बीच में ये बोल दिया था कि मैं कोई अवार्ड नहीं लूंगा।
1: जी
0: तो उन्होंने कहा कि हमको चिंता है कि हम तो आपको दे रहे हैं, लेकिन आप आएंगे कि नहीं आएंगे।
1: जी
0: फिर हम परिवार वालों ने उनसे बहुत विनती की कि नहीं बापू, आपके लिए नहीं, हमारे लिए आप ले लीजिए, क्योंकि ये हमारा भी गौरव बढ़ाएगा और आपको मिलेगा तो ये हमें अच्छा लगेगा। तब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी
1: जी
0: और उनको लगता था कि मैं उतने दिल्ली तक नहीं जा पाऊंगा, तो हम सबने कहा कोशिश करेंगे, आपको अच्छे से ले जाएंगे, व्हील चेयर में ले जाएंगे। तो ये पहली बार हुआ कि स्टेज के ऊपर व्हील चेयर में लेकर के दादा साहेब फाल्के अवार्ड लेने के लिए कोई व्यक्ति को लेके गए, और आगे चल के प्रेसिडेंट आए।
1: जी
0: प्रेसिडेंट कभी भी आगे नहीं
1: नहीं
0: चलते
1: आते
0: हैं, वो
1: जी,
0: वहीं खड़े रहते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: लेकिन जैसे ही उनकी व्हील चेयर लेके हम अंदर गए तो आगे चल के प्रेसिडेंट आए देश के, और उन्होंने उनको सम्मानित किया। और पहली बार हुआ कि जब स्टेज पे वो गए तो दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, पूरे उसमें गूंजा।
1: क्या बात है
0: विज्ञान भवन में कार्यक्रम
1: जी
0: था, और वो
1: जी
0: कभी भी ऐसा नहीं होता है कि तब गाना बजाया जाता है, तो वो नियम को तोड़ा गया। उस स्टेज पे हम लेके गए उनको और वो गाना बजा, और आप नहीं मानेंगे, उस वक्त भी खड़े खड़े खड़े लोग रोए हैं।
1: जी
0: और ये मुझे शत्रुघ्न सिन्हा जी ने भी बताया कि हम रोए। यश चोपड़ा जी वहां खड़े थे, वो बाद में दौड़ के आए कि प्रदीप जी आज आपने हमको भी रुला दिया,
1: जी
0: वो भी ऑडियंस में थे।
1: जी और कभी प्रदीप जी के चेहरे पर कहीं सुख और संतोष के चिन्ह नजर आए ना, कि वो संतुष्ट थे।
0: वो संतुष्ट थे और उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ तुम लोगों ने मुझे कहा, नहीं तो मैं इसको भी मना कर देता, लेकिन ये मेरी आखिरी जीवन की पड़ाव में ये मिलना मेरे लिए बहुत मेरा भाग्य है।
1: जी बिल्कुल। तो बताइए कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी आप?
0: जो भी आपके पास हो, अगर मेरे जीवन में किरण है तो वो करवा दीजिए,
1: चलिए सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत।
0: बहुत सुंदर गीत है।

0: मितुल जी, जब बात चल रही है कवि प्रदीप जी की, तो कविता और लेखन तो खैर उनका मुख्य काम था जिसमें वो बह रहे थे और कहें कि उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन इसके अलावा जब वो कविता नहीं लिखते थे, लेखन नहीं करते थे, तो क्या करते थे? उनके और क्या क्या शौक थे जो आपको समझ आए?
1: उनको गार्डनिंग का बहुत शौक था।
0: हाँ,
1: तो हमारे ऊपर टेरेस है तो उसपे वो चले जाते थे और कई चीजें, जैसे उनको लगा कि ये पत्ते ठीक नहीं है, वो काटते थे। दो दो तीन तीन घंटे तक ऊपर गार्डन में अपना बिताते थे। और नीचे भी हमारे पास जितने भी आज बड़े बड़े ट्रीज हैं, वृक्ष हैं, आम के चार हैं, दो नारियल के हैं, जामबू, जामबू समझते हैं आप, सफेद वाले जिसको आप क्या बोलते हैं पता नहीं, सफेद जामुन।
0: हाँ,
1: काले नहीं, सफेद
0: सफेद। हाँ,
1: खैर एनीवे, वाटर एप्पल ऐसे कुछ बोलते हैं, जो भी होगा। उसके जितने भी हमारे गार्डन में आज जो हमारे वृक्ष हैं, वो सब मेरे पिता ने लगाए हुए हैं।
0: क्या बात है।
1: जब हमारा घर बना तब पूरा आसपास में ये बड़े बड़े वृक्ष आज खड़े हैं। तो गार्डनिंग का शौक, और वो जो देखते थे कि कहीं आम के पेड़ में कहीं कीड़े तो नहीं लग गए,
0: अच्छा,
1: तो वो उसको दवाई देना, ये करना, चाहे वो खुद ना दे, माली के पास करवाना। तो आज जो वृक्ष खड़े हैं वो मेरे पिता के कारण खड़े हैं।
0: क्या बात है।
1: और एक कड़ी पत्ता, उसका एक छोटा सा लाए थे वो प्लांट, और आज बहुत बड़ा हो गया है और वो आज भी है उनका लगाया हुआ।
0: जी, उनकी याद दिलाता होगा।
1: हाँ, तो सभी मतलब वृक्ष जो है उनकी याद दिलाता है।
0: हाँ, तो जब हम आपसे बात कर रहे थे, आपने कहा कि आपका घर ऐतिहासिक है और कवि प्रदीप जी ने बहुत ही शौक के साथ उस घर को बनाया, बहुत रुचि के साथ। तो बताइए क्या है, किस तरह से उन्होंने अपने मकान को बनाया, क्या किया?
1: मकान को उन्होंने खड़े होकर के एक एक ईंट को देख के, उनको जैसे लगवा रहे थे तो वह खड़े रहते थे। ये नहीं कि उनको उन्होंने दे दिया कि आर्किटेक्ट को कि आप बना लो, नहीं। रोज सवेरे से शाम खड़े रहते थे कि ये यहाँ गलत हो रहा है, ये गलत है, ऐसे करो, ये मजबूत चाहिए, सीमेंट। आज भी हमारी जितनी भी दीवारें हैं उसमें कील भी नहीं ठोक सकते आप।
0: अच्छा,
1: इतनी मजबूत है,
0: क्या बात है,
1: इतने सालों के बाद। तो उनका मतलब ये है, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा मंदिर है, घर नहीं है, मंदिर है।
0: मंदिर है जी, जो उन्होंने बहुत ही आत्मीयता के साथ
1: जी
0: उसको खड़ा किया।
1: हाँ
0: जी, मितुल जी, आज हमने इस कार्यक्रम में आपके पिता पर एक लंबी बातचीत की है। अब हम आपकी जिंदगी पर भी आते हैं। आपने ये तो बताया कि आपने लेखन को क्यों नहीं अपनाया, आपने कविता को क्यों नहीं अपनाया, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप एक जानी मानी चित्रकार हैं और चित्रों के प्रति एक आपकी जो रुचि है उसका भी उदाहरण देखने को मिलता है। तो ये रुचि आपके मन में कैसे आई, ये रुचि कैसे पैदा हुई और किस तरह की आर्ट आप बनाती हैं, हमारे श्रोता ये जानना भी चाहेंगे। जैसा आपने कहा कि आप घर से निकली थी, पिता ने एक बार विरोध भी किया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आप बहुत अच्छी कलाकार हैं तो उन्हें आप पर गर्व भी महसूस हुआ।
1: ऐसा है कि मैं करीब 44 साल से पेंटिंग सिखाती हूँ।
0: जी,
1: और मेरा आर्ट सेंटर है तुली का आर्ट सेंटर, जिसमें बहुत सारे लोग सीखने के लिए अभी भी आते हैं। और जब मैंने शुरू किया 1982 में, तब भी लोग बहुत सारे आते थे, आज तक आते हैं। कैसे शुरू हुआ?
0: जी,
1: मैं जब छोटी थी, 2-3 साल की या 4 साल की रही होंगी, मेरी माँ ने मेरे हाथ में कलम थमा दी कि ये लो, इस पे तुम स्वस्तिक ड्रॉ करो। एक कागज दिया और एक पेंसिल दी और कहा कि स्वस्तिक निकालो। तो वो पहली बार था कि जो छोटे बच्चे ने लाइन कर करके स्वस्तिक ड्रॉ किया।
0: जी,
1: मेरी माँ खुद बहुत अच्छी कलाकार थी, बहुत बढ़िया, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूं उनके सामने, इतना ब्यूटीफुल उनका आर्ट था, इतना अच्छे अच्छे से वो ड्राइंग्स बनाती थी। उनमें से मुझ में आया
0: जी,
1: तो पिता का लिखना या गाना नहीं आया, लेकिन माँ का जो माँ की कला है वो मुझ में आई, तो वो जीन्स में आया। तो वहां से शुरू हुआ। फिर हर रंगोली निकालना, हर एक दिवाली के दिन या कोई भी अच्छा शुभ दिन हो तो लो बेटा

0: ये लो हाथ में पाउडर दे दिया, अब मोर करो, ओम लिखो, श्री लिखो, माता के पैर बनाओ, माता की जो होते हैं
1: जी
0: ना
1: बिल्कुल,
0: लक्ष्मी के,
1: नवरात्रा में मनाते हैं,
0: हाँ
1: दीपावली में।
0: दीपावली में, तो वो सबसे शुरुआत हुई मेरी। लेकिन जब मैं स्कूल में पढ़ती थी या कॉलेज में पढ़ती थी, तब मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं रहा, मुझे कुछ और करना था।

0: उनकी मालकिन मिली।
1: जी
0: बोलती आपका ड्राइंग तो बहुत अच्छा है, सुना है। मैंने बोला हाँ वो तो है। तो कहा कि क्यों नहीं आप सिखाते हो, हमारे 40 महिलाएं हैं
1: हाँ
0: उनको हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सिखाइए, हमारी टीचर नहीं है। मैंने बोला मैं सिखा तो नहीं सकती हूँ। बोलती नहीं सिखा पाओगे, कोशिश तो करिए। और वो तब की बात है जब पिताजी ने विरोध किया, उन्होंने कहा 40 महिलाएं हैं आप देखिए कोशिश करिए सिखाइए। मैं बोला ठीक है कोशिश करते हैं। क्या करना था, कपड़े पे फैब्रिक पेंटिंग करना था, कपड़े के ऊपर पेंटिंग करना था। उन्होंने कहा ये रहा हमारे पास कलर्स हैं, हमारे पास तुलिका है, मतलब ब्रशेस हैं, आप आइए सिखाइए। कैसे सिखाना, हमने कोशिश की, सब खुश हो गए, मैं सक्सेसफुल हो गई सिखाने
1: जी
0: में।
1: जी जी
0: तो वो भी मेरे अनायास हुआ है, जैसे कहते हैं ना कि जो एक लिखा हुआ
1: आपकी
0: होता है
1: डेस्टिनी
0: आपके
1: में।
0: क्या कर्म है आपके कर्मों में, मतलब जो लिखा हुआ है डेस्टिनी में वही हुआ। जब मैं पैदा हुई थी तो ज्योतिष ने कहा था कि ये टीचर बनेगी,
1: अच्छा
0: तो वो टीचर तो नहीं बनी स्कूल की, लेकिन मैं दूसरी टीचर बन गई।
1: जी
0: तो वो पहली बार था, वो 40 महिलाएं खुश हो गई, वो जो कलर बनाने वाली कंपनी के वो लोग थे वो खुश हो गए, बहुत बढ़िया आपने बहुत अच्छा सिखाया, और हमारे पास लोग हैं उनको भी सिखाइए, हमारे वहां डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए आप पेंटिंग के। तो ये ऐसे शुरू हो गया। तो मेरी पढ़ाई तो मैंने कंप्लीट की, मैंने लॉ भी कंप्लीट किया, मैंने ग्रेजुएशन भी किया, लेकिन साथ साथ में ये भी चलता रहा। तो उसमें से मुझे मेरी एक पूरी जिंदगी का पूरा ट्रेंड बदल गया,
1: मकसद मिल
0: मकसद
1: गया।
0: मिल गया।
1: जी
0: और सिखाने में जो आनंद है वो समझ में आया कि जब स्टूडेंट आपके साथ में खड़े होके खुश होके जाते हैं वो बात ही अलग है।
1: बिल्कुल।
0: तो जब गुरु बनते हैं ना, तो गुरु की और शिष्य की जो परंपरा है वो एक आपको अलग ही माहौल में ले जाती है और
1: बिल्कुल
0: आपका जीवन बदल जाता
1: बदल
0: है।
1: जाता है।

0: मितुल जी, तो हम ये समझ सकते हैं कि आपने अपनी जो आरंभिक शिक्षा थी वो अपनी माँ से ही ली, आपकी माँ ही आपकी गुरु रही?
1: जी जी, एकदम से माँ ही गुरु रही। मैं बताऊं कि जब तक थी तब तक हमको लगता था कि नहीं, वो हमसे ज्यादा ही अच्छा करती हैं। क्योंकि उनकी भी एक आखिरी बात बता दूं कि वो जब मेरे पिता चले गए 98 में, उसके बाद में उन्होंने जितना जीवन जिया, वो एक तो रेडियो सुनती थी और दूसरा उनका काम था ड्राइंग करना। जैसे ही वो फ्री हो जाती, हाथ में कलम और हाथ में कोई भी, जैसे पेपर आ गया, कोई भी सफेद रंग का, कोई भी हाथ में कलम लेके उसमें ड्राइंग करना शुरू कर दें। तो आज हमारे पास उनके हजारों ड्राइंग्स हैं।
0: अच्छा,
1: मेरे पिता के चले जाने के बाद और उनके चले जाने के बीच के उतने सारे उन्होंने ड्राइंग बनाए, पूरी रात दिन, जब भी उनको समय मिला, कोई भी दूसरा सोचना नहीं, कुछ गलत सोचना नहीं, कोई दिमाग में टेंशन नहीं लेना, ड्राइंग करते
0: रहे। तो आपके लिए एक बहुमूल्य चीज है वो, तो
1: बहुत बहुमूल्य चीज है मेरे पास, आज खजाना है वो।
0: बिल्कुल, आपने उस विधा को प्राप्त कर लिया जो हम कहीं सीखकर भी नहीं सीख पाते है। वो गुरु ज्ञान उतनी शिद्दत और बारीकी से नहीं दे पाता कोई, जो आपने अपनी माँ से सीख लिया है। तो आज जब आप अपने बच्चे तैयार कर रही हैं, आपके यहाँ शिष्य आते हैं, आप उन्हें सिखा रही हैं, उनका भविष्य सुधार रही हैं, किस तरह की पेंटिंग सिखाती हैं बच्चों को आप?
1: वैसे मैं सभी कुछ सिखाती हूँ, क्योंकि ड्राइंग पेंटिंग में मंदाकिनी जी ऐसा है कि उसमें आकाश ही जिसका मतलब अंत है, उतना सारा है, अनंत है। आप क्या सिखाएं, जिसमें आप ड्राइंग सिखाएं, आप कलर सिखाएं, आप चारकोल सिखाएं, आप हाथ से मिट्टी के आप सामान सिखाइए, आप स्कल्पचर सिखाइए, वो सब हम सिखाते हैं। और वो मैं सिखाती हूँ खुद भी, और मेरे साथ मेरे दूसरे टीचर्स भी हैं। तो सिखाने का तो बहुत सारा है, लेकिन मैं खुद क्या अच्छा लगता है मुझे, तो मुझे ऑयल कलर्स अच्छे लगते हैं।
0: ऑयल पेंटिंग
1: जो ऑयल पेंटिंग का एक अलग सा रहता है और वाटर कलर अलग रहता है। तो पहले ऑयल पेंटिंग, दूसरा वाटर कलर। तो उसमें आपको बहुत स्वतंत्रता मिलती है, आप जो करना चाहो, तो वो स्वतंत्र जो होता है ना, वो अच्छा लगता है। कहीं पर आप बंधते नहीं हो। अगर आप स्कल्पचर बनाते हैं तो आप वहां बंध जाते हैं जी, लेकिन कैनवास के ऊपर आप बंधते नहीं हो।
0: क्या गढ़ते हैं, क्या पेंट करते हैं, आपका अपनी कल्पना शक्ति पर।
1: कोई तो वो कल्पना शक्ति उसमें बहुत ज्यादा स्वतंत्र है।
0: तो आपकी तो आर्ट गैलरी भी लगती है, कहाँ कहाँ आप जाती हैं अपनी पेंटिंग्स को लेकर, और अभी तक कितनी सारी जो है आपने
1: आपको आर्ट... आपको एक बात ये बताऊं कि मैं बहुत ज्यादा कमर्शियल काम नहीं करती हूँ।
0: अच्छा जी।
1: अगर मैं अपना एग्जीबिशन लगाती हूँ तो वो मैं बेचने के लिए नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ डिस्प्ले के लिए लगाती हूँ। क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं खुद ही इसका मैं मूल्यांकन नहीं कर सकती हूँ कि मेरी पेंटिंग का मूल्य क्या होगा।
0: जी जी जी।
1: तो ज्यादातर मेरे जो भी जितने भी मेरे कला है, मेरी वो है, तो मैं अपने लिए रखती हूँ, लोगों को डिस्प्ले के लिए मैं बनाते जाती हूँ, लेकिन मैं बेचती नहीं हूँ। तो जब भी मेरा एग्जीबिशन लगता है, कई जगह पे लगा, और हमारी खुद की आर्ट गैलरी बड़ी है जहाँ पर हम क्लासेस चलाते हैं, तो वहां पर भी हमारा बहुत अच्छा डिस्प्ले वगैरह रहता है। तो लोग आते हैं, देखते हैं, अगर कोई ऑर्डर देना चाहे कि भाई आपका ये बहुत अच्छा है, तो हम स्टूडेंट्स के ऊपर उसको छोड़ते हैं, जो स्टूडेंट्स बना के उनको देते हैं।
0: बहुत बड़ी बात, आपने अपनी कला को मतलब कमर्शियल रूप में नहीं देखा है, अपनी कला को एक कला प्रति रहने दिया है।
1: क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपना मूल्य लगाऊंगी ना, तो हो सकता है कि मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब मेरा जो व्याप है वो कम हो जाएगा। तो इसके लिए मैं उसका मूल्य नहीं करती हूँ, वो वैसे ही रहता है वहाँ पर। आप मेरे कभी आर्ट गैलरी में आएंगे देखने के लिए,
0: बिल्कुल,
1: तो बहुत बड़े बड़े पेंटिंग्स लगे हुए होते हैं।
0: तो पहले बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: सबसे अच्छा रहेगा ऊपर गगन विशाल, नीचे गहरा पाताल, क्योंकि हम अभी व्याप की बात कर रहे हैं और आसमान की बात कर रहे हैं।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये बेहद ही खूबसूरत गीत।
1: जी।

0: वाह मितुल जी, गीत को सुनने के बाद तो क्या कहें, मतलब अचानक एक अलग सी फीलिंग्स आई है। बहुत ही शानदार गीत, बहुत ही गहरा गीत। तो मितुल जी, जब बात चल रही है आपकी पेंटिंग्स की, आपकी कलाकृति के बारे में, तो किस तरह की है ये कलाकृति, किस तरह की कला आप बच्चों को सिखा रही है या आप खुद कैनवास पर उतारती है इन कलाओं को?
1: मेरे पास जैसे अलग अलग विधा है, अलग अलग टाइप के मैं पेंटिंग सिखाती हूँ, लेकिन जैसे समय बदलता है तो उस हिसाब

0: से हम एब्स्ट्रैक्ट आजकल बहुत चला है
1: जी
0: लोगों के पास, जैसे मैंने कहा बहुत स्ट्रेसफुल लोगों की जीवन है, तो कहते हैं हमको 2 दिन में खत्म करना है, तो क्या कर सकते हैं? तो एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसी है कि जिसमें आप 2 दिन में अपना मन का जो पेंटिंग है वो पूरा कर सकते हैं।
1: अच्छा
0: अगर आपके पास समय है तो आप अच्छा सा पोर्ट्रेट करिए। पोर्ट्रेट करने में समय लगता है, अगर समय लगेगा तो आपको उतना कंसंट्रेशन करना है, ये दिमाग के लिए बहुत जरूरी है और बच्चों को सिखाना जरूरी है कि आप कंसंट्रेट करिए, मन को शांत रखिए। तो उसके लिए पोर्ट्रेट है, चारकोल है। चारकोल एक ऐसा माध्यम है जो पाउडर है, वो पाउडर से आप पूरी कला को आप कैनवस पे उतारिए।
1: जी
0: तो ये एक है। और देवी देवताओं के जो पेंटिंग्स आजकल लोग बनाते हैं तो उसमें अलग अलग हीरे जवाहरात, मतलब आर्टिफिशियल, वो लगा के करते हैं, तो उसको मिक्स मीडिया बोलते हैं।
1: ठीक है,
0: तो मिक्स मीडिया पेंटिंग भी मैं कराती हूँ, है ना। तो ये अलग अलग चीजें अलग अलग समय पे और अलग अलग, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको अलग तरीके का करवाया, थोड़े बड़े हैं तो उनको अलग करवाया। बहुत बड़ी उम्र के लोग मेरे पास आते हैं, 80-80 साल की महिलाएं आती हैं सीखने के लिए।
1: अच्छा जी,
0: तो
1: वो क्या सीखना पसंद करती हैं?
0: वो कैनवस पे पेंटिंग करना सीखना उनको बहुत अच्छा लगता है। कपड़े पे पेंटिंग करना, तो अभी मेरे पास 2 हैं वैसी जो 80 साल के ऊपर की हैं, तो वो लोग दोनों कपड़े पे स्कार्फ बनाती हैं और अपने बच्चों को, बच्चे के बच्चों को, सबको गिफ्ट देती हैं। तो अपना बनाया हुआ किसी को देना तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसा बहुत सारा जो अलग तरीके का, अलग टाइप के लोग हैं, उनके लिए हम स्पेशली उनको समझाते हैं कि आप ये करिए।
1: मॉडर्न आर्ट है,
0: मॉडर्न
1: कैरिकेचर
0: आर्ट
1: है,
0: है,
1: इस तरह का सभी तरह के आप।
0: मॉडर्न आर्ट भी बहुत चलता है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट है वैसे मॉडर्न आर्ट। और बड़े बड़े कलाकारों की, जैसे बहुत बड़े मास्टर्स हो गए ना पुराने, वैन गॉग है या वैसे, उनके मास्टर्स की पेंटिंग हम सिखाते हैं कि देखिए उनका कैसा था और उनके ऊपर से आप इसको आप अपने पेंटिंग बनाइए।
1: तो मितुल जी, हमारे देश में कहें या पूरे संसार में बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, पेंटर हुए हैं, आप किनसे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं?
0: मेरी माँ से उनका जैसा कोई नहीं।
1: बहुत सुंदर।

0: मित्तल जी, आपने बताया कि आप इतनी प्रकार की कलाएं जो हैं बच्चों को सिखाती हैं, जब इनसे आप फ्री होती हैं, अपनी पेंटिंग की दुनिया से आप अलग होती हैं, कला की दुनिया से अलग होती हैं, तो क्या करती हैं? इसके अलावा आपके और क्या क्या शौक हैं? हमारे श्रोता ये भी जानना चाहेंगे।
1: मेरे शौक में मैंने भी गार्डनिंग को अपना शौक बनाया, लेकिन सबसे बड़ा तो आपको आश्चर्य ये होगा कि मेरे पास बहुत सारी बिल्लियां, कुत्ते और खुले में रहने वाले बहुत सारे पंछी हैं।
0: अच्छा,
1: तो खुले में रहने वाले मतलब मेरे घर में बंद नहीं है।
0: हाँ हाँ।
1: लेकिन वो मेरे अपने हैं, जो कौवे हैं, पैरट्स हैं, तोते हैं, छोटी छोटी गिलहरियां हैं,
0: वो आपके घर के आजू बाजू रहती है
1: और रोज खाने के लिए आती है। तो बिल्लियां और कुत्ते तो घर में रहते हैं और ये सब पूरा माहौल जो है पूरा जैसे एक जंगल जैसा माहौल है। और मेरे पिता ने एक गीत लिखा था, बापू ने, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तो तेरे द्वार खड़ा भगवान में कोई छोटा अगर बच्चा भी आ गया बिल्ली का, तो ये तो नहीं पता हमको कि ये भगवान है कि नहीं है। हो सकता है छोटा रूप लेके आए हैं, हो सकता है कि वो एक कौवा बैठा हुआ है, वो भी एक भगवान का स्वरूप है, तो वो आपके पास पानी या खाना मांगने आया है। तो कभी भी किसी को निकालो मत घर से, भूखा मत भेजो। तो ये है तेरे द्वार खड़ा भगवान। तो ये सब भगवान है हमारे लिए।
0: तो कितनी बिल्लियां पाली हैं आपने और कितने कुत्ते पाल रखे हैं?
1: अभी तो 4 कुत्ते हैं और 40 बिल्लियां हैं।
0: क्या कह रही हैं?
1: हाँ जी,
0: 4 कुत्ते और 40 बिल्लियां, और कुत्ते बिल्ली साथ रहते हैं?
1: साथ रहते हैं और कुत्ते बिल्लियों से डरते हैं।
0: ये तो आप मजाक कर रही हैं।
1: नहीं नहीं नहीं, बहुत सही कह रही हूँ। हमारी बिल्लियाँ बहुत ही तेज है, तगड़ी है बड़ी, और कुत्तों को डराती हैं।
0: तो 40 बिल्लियों को आप कैसे पालती हैं?
1: बस वो हो जाता है, जैसे मैंने कहा कि सब भगवान के आशीर्वाद हैं, तो हो जाता है सब।
0: जी जी, जी। ये तो बहुत बहुत मतलब एक अद्भुत बात आप कह रहे हैं, और इतना आश्चर्य हो रहा है कि 40 बिल्लियां आपने पाल रखी, वो आपके परिवार के सदस्य हो गई।
1: वो परिवार है और सबके नाम है
0: जी, जैसे
1: जैसे जिंजर है, जैसे कालू है।
0: अच्छा,
1: है ना। जैसे ब्राउनी है।
0: हाँ।
1: ब्लैकी है,
0: उनको पता ही उनके नाम।
1: हाँ,
0: है।
1: हाँ, सिम्बा है, बहुत सारे हैं। अजीब अजीब नाम भी है, जैसे टिनटिन है तो दूसरा है चिनचिन। जैसे चुन चुन भी है। सो किटकैट भी है।
0: अच्छा, ये सभी बिल्ली आपका कहना मानती है?
1: हाँ, हाँ, मानती भी है और सामने गुस्सा भी करती है। क्या बहुत हो गया
0: जी। कभी ऐसा हुआ कि इन बिल्लियों ने गुस्से में आकर आपकी ही पेंटिंग को फाड़ दिया हो, खुरच दिया हो अपने नाखूनों से, और आपको बहुत गुस्सा आया हो इन पर?
1: ऐसा हाँ करते हैं कभी कभी, लेकिन गुस्सा नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे बच्चे हैं।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर। तो यानी कि आपके घर में एक भरा पूरा जंगल है?
1: पूरा पूरा जंगल है। और बहुत मेहरबानी है कि कभी कभी मैं चेयर पे बैठ सकती हूँ।
0: तो मित्तल जी, आप कहें तो ये गीत हम आपको सुनवा दें, तेरे द्वार खड़ा भगवान।
1: जरूर सुनवाइए, जरूर।

0: अब हम बस चलते चलाते आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारे महान कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल जी और एक बहुत बड़ी कलाकार पेंटर मितुल
1: जी।
0: वो क्या कहना चाहती है अपने श्रोताओं को अपने पिता के बारे में और अपने बारे में।
1: पिता के बारे में तो यही है कि बस उनके जो संदेश हैं उसको आप मन से सुनिए, आत्मसात कीजिए और देश को सबसे आगे रखिए। ऊंच नीच या कौन क्या है वो मत सोचिए और प्रेम से जिंदा रहिए एक दूसरे के साथ।
0: जी।
1: और मैं ये कहना चाहूंगी कि कला एक ऐसा माध्यम है जो मैंने देखा है बहुत करीब से, उसको अगर आप अपने जीवन में लाएंगे तो जीवन की कई मुश्किलें, कई स्ट्रेस बहुत कम हो जाएंगे। तो कला को अपनाइए,
0: जी
1: चाहे कोई भी कला हो उसको अपनाइए।
0: जी बहुत खूब, बहुत शानदार। मितुल जी, आप स्टूडियो में आई हैं और आपने आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपने पिता कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद किया, हमारे साथ उनकी जिंदगी को साझा किया, उनकी बातों को, उनके लेखन को साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य वक्त विविध भारती के लिए निकाला, आपके हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं।
1: मैं आभारी हूँ विविध भारती। मैंने जैसे पहले ही कहा कि हमारी रग रग में बसा है
0: जी
1: और आपके साथ बात करके यहाँ सबसे मिलके बहुत खुशी हुई।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से विविध भारती में आने के लिए। और दोस्तों, उजाले उनकी यादों की इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से। और आज की बातचीत बस यहीं तक। अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
2: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था तीसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।
3: उजाले उनकी यादों के। उजाले।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: मेरे पिया दे रंगून पिया है वहाँ से टेलीफोन।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गद्दी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छपकर आ गई। अर्जी मैंने भरी।

0: धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेजनी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
1: विविध भारती पर हर पल है खास।
2: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
3: आज के फनकार।
1: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
3: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
2: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
4: एक ताजमहल, एक लता मंगेशकर, एक विविध भारती। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

रंग तरंग इस कार्यक्रम को लेकर आज आपके साथ मैं हूं नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। साथियों, दिन कोई भी हो सुहाना सा ही लगता है जब तक हमारा मन अच्छा है। जब मन दुखी होता है तो फिर चाहे बाहर कितनी भी खुशियां हो लेकिन हम अच्छा महसूस नहीं कर पाते क्योंकि मन सुखी नहीं है। तो मन को खुश रखना जरूरी है, उसके लिए मन की शांति जरूरी है। तो आइए इसी बात के साथ आज के इस कार्यक्रम की आगाज करते हैं। मिश्र संगीत के इस कार्यक्रम में आपको सबसे पहले आज सुनवाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की लिखी ये कविता, जिसे सुरों में ढाला है जगजीत सिंह ने और अपनी मीठी आवाज में इन्होंने इसे गाया है जगजीत सिंह ने ही, और एल्बम का नाम है नई दिशा।

जगजीत सिंह के संगीत निर्देशन में सुनते हैं इन्हीं की आवाज में ये गजल। एल्बम का नाम प्यार का पहला खत। इस गजल को लिखा है हस्ती ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: रंग तरंग कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फाल्गुनी पाठक की आवाज में। एल्बम का नाम दिल झूम झूम नाचे। गीत और संगीत ललित सेन का।

देखा है तेरी आंखों को इस एल्बम का गीत अभी आपने सुना, आवाज और शब्द रचना साधु की, और इस गीत को सुरों में ढाला ललित ने।

शान का गाया और लिखा गीत आपने सुना तन्हा दिल। इस एल्बम से राम संपत ने इसे संगीतबद्ध किया था। और आइए अब आपको सुनवाते हैं सोनू निगम की आवाज में फैज अनवर का लिखा ये गीत। संगीत से सजाया है साजिद वाजिद ने और एल्बम का नाम दीवाना।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली हुई कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: रंग तरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं काबुल एक्सप्रेस, इस फिल्म का गीत। इस गीत को गाया है राघव सचर ने और संगीतबद्ध किया है राघव सचर ने। इस गीत को लिखा है आदित्य धर ने।

फाल्गुनी पाठक की आवाज में सुनिए नक्शलायल पुरी का लिखा ये गीत, ललित सेन ने सुरों में ढाला है और एल्बम का नाम मेरी चुनर उड़ उड़ जाए।

घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर।

लकी अली का गाया गीत आपने सुना, उन्हीं के संगीत निर्देशन में सईद असलम के बोल थे और सिफर था एल्बम का नाम। और आइए अब आपको सुनवाते हैं तू ही मेरे रब की तरह है। इस एल्बम से गीत सईद कादरी के बोल हैं और गोल्डी का संगीत।

आज का मिश्र संगीत का ये कार्यक्रम रंग तरंग अब यहीं पर संपन्न होता है। नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से प्रसारित कार्यक्रम FM 101.5 MHz पर। हम आकाशवाणी सवाई माधोपुर के रणथंबोर चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम उमंग में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल महाराष्ट्र से संदीप कोल्हे, अश्विनी कोल्हे और क्षितिज कोल्हे जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में सकारात्मकता भरते हैं, हर परिस्थिति में ये हमें सही राह दिखाते हैं।
0: आप सबका धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। अब आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे जी ने लिखा है, नमस्कार, मैं छठवीं वर्ग में पढ़ता हूँ, मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
0: आपका संदेश भी हमें बहुत अच्छा लगा। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीन बाई मानिकपुरी जी ने। लिखा है, जय हिंद जय जोहार, बंदगी विमलेश मैडम जी और साहेब अजीत जी। 28 मई 2026 को उमंग कार्यक्रम सुनाया, इस दिन बाल गीत टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा आपने सुनाया, हमें बहुत पसंद आया।
2: इसके साथ वीर गाथा में हमने सुना ब्रिगेडियर 19 वर्षीय योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में। योगेंद्र सिंह यादव जी को नमन करते हैं और जय हिंद करते हैं। उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम को जय हिंद। आपके कार्यक्रम ने सभी सुनने वालों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति का भाव जगाया। आपका कार्यक्रम हम सबको सही राह सही मंजिल की ओर ले जाता है। बहुत बहुत बधाई।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश सुनते हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मारकंडे और संजय मारकंडे जी के साथ बेबी किट्टू जी ने लिखा है,
0: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। आप कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में प्रतिक्रिया और समीक्षा भेजिए।
2: जी,
0: हमने इस कार्यक्रम में कुछ प्रतिक्रिया और समीक्षा व सुविचार भेजे लेकिन एक भी शामिल नहीं हुआ।
2: ममता जी और संजय जी, जहाँ तक हमें याद है आपके नाम हम हर प्रसारण में शामिल करने की कोशिश करते हैं। रही बात प्रतिक्रियाओं की, तो आगे हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे।
0: अगला संदेश हमें मिला तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान का।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
0: तो हमारा पहला प्रश्न था, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है?
2: श्रोताओं, इसका उत्तर है भारत में भील जनजाति की संख्या सबसे अधिक है।
0: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जापान की चाय परंपरा या समारोह को चा नो यू कहते हैं।
0: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
2: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इथियोपिया के कॉफी समारोह में कॉफी 3 बार परोसी जाती है। पहला प्याला खामोशी से पिया जाता है, दूसरा प्याला परोसा जाता है तो इसका अर्थ होता है अब अतिथि आपस में बातचीत या संवाद कर सकते हैं। तीसरे प्याले का अर्थ शुभकामनाएं और आशीर्वाद होता है।
0: हमारा अगला प्रश्न था, कोको या ककोआ की पैदावार किस देश में सबसे अधिक होती है?
2: इसका उत्तर है साथियों, ब्राजील और आइवरी कोस्ट में कोको या ककोआ की पैदावार सबसे अधिक होती है।
0: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?

0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं। चीन की येलो रिवर की घाटी सोयाबीन की उत्पत्ति का स्थान मानी जाती है।
1: तो ये थे श्रोताओं हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
0: एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों?
1: श्रोताओं हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल के पते पर प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब चलिए बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम है कंचा।
0: बचपन की यादों को ताजा करता हुआ ये कार्यक्रम बच्चों के प्रिय कंचे के खेल की जानकारी देता है और बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे पढ़ाई के अलावा खेलों और व्यायाम पर भी ध्यान दें ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे।

0: वो नीम के पेड़ों की घनी छांव में होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वो न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की।
1: सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा, सियार उसे उठाकर नौ दो ग्यारह हो गया।
0: वो जोर से हंसा,
2: बुद्धू कौवा।
0: वो चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे? उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वो कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा।
2: कितना सुंदर।
0: नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वो चीज यहाँ नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
2: कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा।
0: उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वो आसमान सा बड़ा हो गया तो वो भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था।

0: छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वो अकेले ही खेलता था। वो कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई,
1: लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा।
0: वो चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ दो जने वहां हैं, वो और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी।
1: मैंने कहा ना, जो चाहते हो वो निकाल कर दूं।
0: वो उदास हो अलग खड़ा रहा।
1: क्या कंचा चाहिए?
2: नहीं।
0: दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया।
2: नहीं।
1: तो फिर?
0: सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा।
2: आह, कितने सुंदर कंचे। ओह,
0: जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो।
2: अरे अरे, लगता है देर हो गई।
0: स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा।
3: सात का पहला सुनो।
4: सात एकम सात,
5: सात एकम सात,
4: सात दूनी चौदह।
0: देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वो ही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वो रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है।
2: आ गया। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता।
0: लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा।
2: जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना।
0: उसे रामन ने ये सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है।
6: अप्पू, कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है।
2: मास्टर जी।
0: उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था।
2: रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, पृष्ठ 37, रेलगाड़ी।
0: वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे।
6: पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है।

0: का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जार जब अच्छा होकर आ जाएगा तब।
1: जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे।
2: अहो,
1: उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं।
2: अरे तू उधर क्या कर रहा है?
1: उसका दम घुट रहा था।
2: बोल।
1: वो खामोश खड़ा रहा।
2: क्या नहीं बोलेगा?
1: वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई।
0: मास्टर जी,
2: मैं अभी किसके बारे में बता रहा था?
0: वो
1: कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है।
2: हाँ हाँ बता, डरना मत।
0: वो
1: मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था।
2: हाँ हाँ
1: वो कांपते हुए बोला,
0: वो कंचा।
2: कंचा?
1: वे सक पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया।
2: स्टैंड अप।
1: मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका। सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा,
0: दिखा दूंगा सबको। जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आएगा। हाँ,
1: जॉर्ज के आने पर वो कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वो खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है।
0: हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
1: तब शक हुआ,
0: कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो, नहीं दे तो?
2: किसी को शक हो तो पूछ लो।
1: मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया।
2: क्या किसी को कोई शक नहीं?
0: नहीं मास्टर जी।
1: अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वो सोच रहा था,
0: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा?

0: अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे?
1: अप्पू क्या सोच रहे हो?
0: वो मैं
1: पूछ लो ना, शंका क्या है?
0: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में?
1: क्या सोच रहे हो?
0: वो पैसे
1: क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? क्या रेलगाड़ी के लिए?
0: हाँ
1: बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा?
2: वो खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा।
0: रेलगाड़ी नहीं, कंचा।
2: चपरासी एक नोटिस लाया।
3: आज तक जी नोटिस है।
1: लो।
2: मास्टर जी ने कहा,
1: जो बच्चे फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें।
2: बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा।
0: 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का।
2: वो बेंच से उतरा।
1: किधर?
2: मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे।
0: फीस देनी है।
1: फीस मत देना,
2: मास्टर ने कहा। वो छिछकता रहा।
1: ऑन द बेंच।
2: वो बेंच पर चढ़कर रोने लगा।
1: क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा?
0: ध्यान दूंगा।
2: वो दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी।
4: बच्चों एक एक करके आओ।
2: क्लर्क बाबू बता रहे हैं।
5: पहले मैं आया हूँ। मेरे बाकी पैसे।
2: इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े लड़के ही बचे हैं। वो सोच रहा था,
0: जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे, हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे।
2: घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वो भी चला मानो नींद से जागकर चल रहा हो।
1: क्या सब फीस जमा कर चुके?
5: जी मास्टर जी।
2: कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वो नहीं उठा।

शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वो उनके पास नहीं गया। फाटक के सींखचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा।

0: उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं, उनमें एक जार में पूरा पस्ता कंधे पर लटकाए वो चलने लगा। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वो भी हंसा।
1: कंचा चाहिए है ना?
0: उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा,
2: अच्छे कंचे हैं ना?
1: बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए?
2: कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने?
0: दुकानदार समझ गया। वो भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे, के लिए खरीदने आया होगा।
2: मैं बस जॉर्ज को ही बताऊंगा।
0: वो कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा,
1: क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है?
0: वो नहीं जानता था।
1: तो फिर
0: कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया,
2: दे दो।
1: ये लो।
0: कागज की पोटली छाती से चिपटाए वो नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। बस्ता कंधे पर लटकाए स्लेट किताब शीशी पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वो दौड़ कर माँ के गले लग गया।
2: माँ,
3: अरे आ गया।
0: उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया।
2: क्या देखो माँ?
3: अरे ये क्या है?
2: मैं नहीं बताऊंगा।
3: मुझसे नहीं कहेगा?
2: कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। वन टू थ्री।
0: वो कुछ और हैरान हुई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया?
2: खरीदे हैं।
3: पैसे?
0: पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा,
2: दोपहर को दिए थे ना?
0: माँ ने दांतों तले उंगली दबाई।
3: फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ?
0: उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन। मगर माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है। अब वो नहीं जान सका कि माँ

0: क्यों रो रही है? क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा,
1: बुरे कंचे हैं, है ना?

0: पूरे कंचे हैं, है ना?
1: नहीं, बहुत अच्छे हैं।
0: देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना?
1: बहुत अच्छे लगते हैं।
2: वो हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी, आंसू से गीले माँ के गाल पर अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी।
3: तो श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग एनसीआरटी। हम आकाशवाणी सवाई माधोपुर के रणथंभौर चैनल से बोल रहे हैं, FM 101.5 MHz पर। श्रोताओं, दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से प्रसारित कार्यक्रम यादों की महफिल।

दिल है कि मानता नहीं। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज में। समीर की रचना थी और धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने। और आइए अब आपको सुनवाते हैं सत्य फिल्म का ये गीत। आशा भोसले और सुरेश वाडकर की आवाजें हैं, रचना है गुलजार की और तर्ज बनाई है विशाल।

कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति का गाया ये गीत सुनिए, जिसे रचा है संजय छैल ने, जतिन ललित का संगीत है और इस ये गीत है फिल्म खूबसूरत से।

सुना रहे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

लक बाई चांस इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना शंकर महादेवन की आवाज में, बोल थे जावेद अख्तर के और संगीत शंकर एहसान लॉय का। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ब्रदर्स फिल्म का गीत सोनू निगम और नीति मोहन की आवाजों में, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल अजय अतुल का संगीत।

तो साथियों, सपनों से सजे इन गीतों का ये सफर यहीं पर विराम लेता है। उम्मीद है इन मधुर धुनों ने आपके मन में भी कुछ खूबसूरत ख्वाब जगा दिए होंगे। फिर मिलेंगे नई थीम और नए गीतों के साथ। अब दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से प्रसारित कार्यक्रम FM 101.5 MHz पर। यह आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंबोर चैनल है। दिन का 1 बजने को अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से प्रसारित कार्यक्रम FM 101.5 MHz पर। यह आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंबोर चैनल है। दिन का 1 बजने को अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी

0: जायका प्रोजेक्ट के तहत 100 करोड़ रुपए के 12 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार इन कार्यों में मुख्य रूप से हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले की सिद्धमुख नोहर और भाखड़ा नहर प्रणाली की मरम्मत और रीलाइनिंग के काम किए जाएंगे। इन कार्यों के पूरा होने से नहरों की जल वहन क्षमता में सुधार होगा और किसानों के खेतों तक पर्याप्त मात्रा में पानी तेजी से पहुंच सकेगा। विभागीय अधिकारी ने बताया कि इन स्वीकृत कार्यों को धरातल पर उतारने के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई है। राज्य के कई स्थानों पर मध्यम दर्जे की बरसात हुई। सर्वाधिक 5 सेंटीमीटर वर्षा झालावाड़ के खानपुर इलाके में दर्ज हुई। वहीं सीकर के लक्ष्मणगढ़, झालावाड़ के पचपहाड़, छीपा बड़ोद, चौमू, मांगरोल, छबड़ा और बसुआ में 2 सेंटीमीटर बारिश हुई। कल जयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, अलवर, दौसा, टोंक समेत कई जिलों में दोपहर बाद तेज आंधी के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। राज्य में कई स्थानों पर अभी भी तापमान 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। सर्वाधिक तापमान फलौदी में 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पिलानी में 41.2 और बाड़मेर में 41.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। राज्य में कहीं भी हीट वेव की स्थिति नहीं है। प्रदेश भर में आज सोमवती अमावस्या श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है। भीलवाड़ा के प्रसिद्ध हरणी और तिलस्वा महादेव मंदिर में अल सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु पवित्र स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं। पाली के सोमनाथ मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। महिलाएं पीपल के वृक्ष की परिक्रमा और दीप दान कर समृद्धि की कामना कर रही है। वहीं बाड़मेर सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में गौशालाओं में गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाया जा रहा है। साथ ही जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्र दान करने का सिलसिला दिन भर से जारी है। तीर्थराज पुष्कर में आज पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। यहां सरोवर में स्नान करते समय गहरे पानी में गए एक युवक को सिविल डिफेंस की टीम ने तुरंत रेस्क्यू कर सुरक्षित बचा लिया और एक बड़ा हादसा टल गया। अजमेर जिले के जसनगर क्षेत्र में लूणी नदी के रपट पर एक बस और कार की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई और 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब कार में सवार एक ही परिवार के सदस्य सोमवती अमावस्या पर पुष्कर सरोवर में स्नान के लिए जा रहे थे। हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों को जयपुर रेफर किया गया है। सवाई माधोपुर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर चौथ का बरवाड़ा के पास मिर्ची से भरे एक ट्रक के त्रिलोकपुरा अंडरपास में गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। भरतपुर के बयाना स्थित दरबारहना झरने के नीचे पिकनिक मना रहा एक युवक गहरे पानी में चला गया जिससे डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी सवाई माधोपुर के रणथंबोर चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 1:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से प्रसारित कार्यक्रम, तो सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

तो साथियों, इस गीत में जो शब्द था वो था कभी कभी, आपने पहचान ही लिया होगा। और हमारे एक साथी लिखते हैं, आज की इबारत मेरी जिंदगी के बहुत करीब है। इसे इस तरह से कह सकते हैं कि कुछ फिल्मों के संवाद मेरे दिल में घर कर गए हैं और मेरी जिंदगी की दिशा और दशा निर्देशित करते हैं। पहला संवाद फिल्म आनंद का जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं। दूसरा फिल्म बावर्ची का, अक्सर हम बड़ी बड़ी खुशियों की खोज में छोटी छोटी खुशियों के पल जो बहुत ज्यादा होते हैं उन्हें गंवा देते हैं। मैं लोगों से प्यार से मिलता हूं और जहां तक हो सके उनके साथ कनकर चलने की कोशिश करता हूं। फिल्म बावर्ची का एक और संवाद, अपना काम तो सभी करते हैं, कभी दूसरों का काम करके देखिए कितनी खुशी मिलती है। साथ ही एक साथी ने लिखा है, सच कहें आज की इबारत हमें बिल्कुल अपनी सी लगी, क्योंकि छोटी खुशियों को लेकर आई है। छोटी छोटी खुशियों के मायने बहुत बड़े होते हैं, बस हम इन्हें आते। हम बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भागते हैं, बस शायद दिखावा करना चाहते हैं, पर हम तो छोटी छोटी सादगी भरी बातों से ही खुश रहते हैं, बस उसमें अपनापन हो। अब देखो ना, कल थोड़ी बारिश हुई, हमने उसे बड़े ध्यान से देखा। जब पानी की बूंदें पौधों पर पड़ी तो पौधों की धूल साफ हो गई, ये देखकर हम खुश हो गए। फिर हम ये भूल गए कि बारिश से बाकी पूरा सब जगह खराब भी तो हो गया। बात तो सही है, बारिश जब आती है तो खुशियों की फुहार लेकर आती है। चलिए इसी के साथ सुनते हैं भूपिंदर सिंह और अनुराधा का गाया ये गीत दूरियां, इस फिल्म से। सुदर्शन फकीर की रचना और जयदेव का संगीत।

हमारी इबारत से लिया गया इस गीत में जो शब्द था वो था जिंदगी। एक साथी ने लिखा है, जब कभी सुबह की सैर के वक्त किसी वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी सांसों को आता जाता महसूस करना, पक्षियों की चहचहाट को सुनना असीम खुशी और शांति दे जाता है। प्रकृति कितना कुछ सिखा जाती है कि खुशी किसी के पीछे भागने में नहीं बल्कि ठहराव में है, हर पल को महसूस करने में है। एक साथी ने लिखा है, कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है कि कमेंट करूं या ना करूं, ऐसा क्यों भाई? अब इसका जवाब भी आप दे ही दीजिए अगले कमेंट में। खैर आगे बढ़ते हैं। एक साथी ने, उन्हें 12 बजे का कार्यक्रम पसंद आया उसके बारे में लिखा है। एक साथी ने लिखा है, हमारे भोपाल में 2-3 दिन से बादल और सूरज की लुका छिपी चल रही है, हल्का फुल्का पानी भी आ जाता है, लेकिन सूरज की तपिश से कुछ तो राहत मिल गई है। अब देखिए किस तरह समय बदलता है और जज्बात भी उसके साथ बदल जाते हैं। आज जब सूरज की गर्मी के बीच हल्का फुल्का पानी आता है तो वो ठंडक अच्छी लगती है। यही हल्का फुल्का पानी जब भारी भरकम बारिश में बदल जाता है और जब कई दिनों तक गहरे बादल छाए रहते हैं, घने बादल छाए रहते हैं, तब जब हल्की सी वो धूप की किरण आती है ना, वो भी खुशी दे जाती है और तब हमें लगता है कि अरे सूरज दादा दर्शन तो दे दो। बिल्कुल सही, गर्मी के बीच हल्का फुल्का पानी आता है तो वो ठंडक अच्छी लगती है। यही हल्का फुल्का पानी जब भारी भरकम बारिश में बदल जाता है और जब कई दिनों तक गहरे बादल छाए रहते हैं, घने बादल छाए रहते हैं, तब जब हल्की सी वो धूप की किरण आती है ना, वो भी खुशी दे जाती है और तब हमें लगता है कि अरे सूरज दादा दर्शन तो दे दो। बिल्कुल सही कहा ना, ऐसा ही लगता है ना। तो चलिए इसी के साथ अगला गीत आपको सुनवाते हैं, देखते हैं कितने हमारे आज के श्रोताओं ने इसे सही पहचाना है। ये गीत है फिल्म शबनम से मोहम्मद रफी की आवाज, जावेद अख्तर के, जावेद अनवर के बोल और उषा खन्ना का संगीत।

0: आशिकम।
1: तो सादगी शब्द था इस गीत में जो हमारी इबारत में भी शामिल था और कई साथियों ने सही भी पहचाना। खूबसूरत इबारत है आज की। मराठी में कहते हैं तुझे आहे तुझपाशी परी तू जागा चुकलासी। हमें मालूम ही नहीं होता कि जीवन के बहुत सारे सुनहरे पल छोटी छोटी बातों में हमारे पास ही छिपे रहते हैं और हम कस्तूरी मृग की तरह कस्तूर की तलाश में दूर दूर भागते रहते हैं। असली खुशी तो आत्मिक समाधान में है जो चेहरे पर स्वाभाविक मुस्कुराहट ले आती है। इसी के साथ इन्होंने कुछ गीतों की लिस्ट भी लिखी है, बताइएगा यदि इसमें से कोई गीत आता है तो। एक साथी ने लिखा है, अक्सर हम बड़ी खुशियों की प्रतीक्षा में छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं जबकि सच्चाई ये है कि जीवन का अधिकांश हिस्सा इन्हीं छोटे सुखद पलों से बना होता है। सुबह की ताजी हवा, किसी अपने की मुस्कान, दोस्तों से बातचीत, बारिश की फुहार, चाय की प्याली या किसी की सच्ची प्रशंसा, ये छोटे छोटे पल मन को सुकून और आनंद से भर देते हैं और जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेता है वो जीवन का वास्तविक आनंद उठा पाता है। एक साथी ने लिखा है, मेरी हर सुबह ईश्वर की प्रार्थना के बाद विविध भारती न्यूज़पेपर और अदरक इलायची दालचीनी वाली चाय के साथ होती है। दिल में खुशी, होठों पर मुस्कान और मीठी जुबान, सभी के लिए प्यार हमेशा मेरे साथ रहता है। और हाँ, जानवरों और पक्षियों को दाना पानी रखना नहीं भूलता। अच्छी बात है, ये हमेशा ही होना चाहिए। अभी तो गर्मी इतनी है कि पक्षियों के लिए पानी दाना रखना एक अच्छी आदत है ये हम कहेंगे। आइए इसी के साथ, इस जीवन की सफर वाली इबारत के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कभी धूप कभी छांव इस फिल्म का गीत प्रदीप की आवाज में। इस गीत की रचना की है प्रदीप ने, चित्रगुप्त का संगीत।

तो धूप शब्द था जो हमारी इबारत में भी शामिल था और इस गीत में भी था। साथियों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। क्या कभी आपने ऐसा अनुभव किया है कि किसी बात को लेकर आप बड़े दुखी हो रहे थे और फिर अचानक आपको पता चलता है कि ये बात उतनी दुखी होने वाली थी ही नहीं, या फिर हम शायद उस बात को ज्यादा तवज्जो दे रहे थे, लेकिन जिंदगी में उससे भी बढ़कर कई सारी अच्छी चीजें हैं जो हमें मिलनी बाकी हैं और मिलती भी हैं। तो अगर ऐसा कभी कोई किस्सा आपके साथ हुआ हो तो आप हमारे साथ फेसबुक पर साझा कर सकते हैं। फिलहाल सुनते हैं मुकेश की आवाज में साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत, खयाम का संगीत, फिल्म का नाम कभी कभी।

जी हाँ, तो पल वो शब्द था जो इस गीत में चुना गया था इबारत से। एक साथी ने लिखा है, ऊपर वाला पांसा फेंके नीचे चलते दांव। पंक्ति भाग्य और कर्म के बीच गहरे संबंध को दर्शाती है। भगवान या नियति जीवन की परिस्थितियां तय करती हैं। पांसा फेंकना, इंसान धरती पर जीवित रहने के लिए अपनी बुद्धि और कर्मों से फैसले लेता है। एक साथी ने लिखा है, कभी धूप कभी छांव, आज बादलों की ओट में सूरज भी अटखेलियां सी कर रहा है। कभी धूप खिलखिला रही है तो कभी छांव अपना आंचल लहरा रही है। जी हाँ, यही तो बारिश की धीमी धीमी

0: तो ये जो गीत था इसमें छोटे शब्द लिया गया था इबारत से। एक साथी ने लिखा है कि नेहा जी आप सवाल इस तरह से पूछें कि हम बिजी रहें, फिल्म का नाम पूछ सकती हैं, गीतकार पूछ सकती हैं, किस सन में ये फिल्म आई ये पूछ सकती हैं, हम बिजी रहेंगे। आपको लगता है इतने आसान सवाल हम पूछेंगे आपसे? क्योंकि ये सवाल तो कोई भी गूगल बाबा से देखकर, सोशल मीडिया की किसी भी साइट से देखकर जवाब दे सकता है। हमें वो बातें जानने में अच्छा लगता है जो हमें आपसे जानने को मिलती हैं, जो बातें यूनिक होती है आपके बारे में। जैसे कि देखिए, हमारे एक साथी ने कमेंट लिखा है कि हमारी जो मेड है वो भी आपका प्रोग्राम सुन रही है, उसे जो समझ आया आपका सवाल तो उसका जवाब सुनो। अभी कुछ दिन पहले घर से आते समय उसका मंगलसूत्र कहीं गिर गया, वो बहुत उदास हो गई, पर उसने सबका काम किया और वो वापस गई तो उसका वो मंगलसूत्र मिल गया। उसे जाते समय हमने कहा, एक तो आज तेरा फास्ट है और दूसरा तू हम सबका काम करके जा रही है और तीसरा तुमने किसी का कुछ गलत नहीं किया, तो पक्का तुम्हारी चीज तुम्हें मिल जाएगी। क्या बात है, हमें हमेशा ये लगता है कि देखिए जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। और देखिए आपके साथ हुआ भी, मंगलसूत्र जैसी चीज गिरना ना सिर्फ मतलब हमें एक मानसिक पीड़ा देता है, ये हमारी एक संपदा का भी नुकसान होता है, लेकिन देखिए आपको मिल भी गया। तो कभी कभी होता है कि हम बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, सोचते हैं, मगर जब जीवन में आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि जितना समय हमने चिंता में व्यस्त किया, चिंता में मतलब गवाया, उतना अगर हम उसका जवाब ढूंढने में या हल ढूंढने में निकालते तो शायद परिणाम बेहतर होते। एक साथी ने लिखा है, सुबह की सैर पर जाते हुए और लौटते हुए सब्जी और फलों से भरे ठेले, कहीं फूलों की दुकान, किसी जानवर की अजब गजब हरकतें, फुदकते तरह तरह की चिड़ियाओं को देखकर भी मन बहुत हल्का महसूस करता है। कुछ समय प्रकृति के साथ गुजारना चाहिए, बहुत से दुख दर्द भूल जाते हैं, किसी से हल्की फुल्की बातें करके भी मन हल्का सा हो जाता है। वहीं पर एक साथी लिखते हैं, मराठी लेखक हैं पु ल देशपांडे, कहते हैं हमारी उम्र तब तक है जब तक हम लोगों को याद रहते हैं। बस यही बात है, हम पल दो पल के मेहमान हैं, फिर भी दिल में जीते रहेंगे। और चलिए इसी के साथ सुनिए बातों बातों में इस फिल्म का गीत, अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। अमित खन्ना ने इसे लिखा है, राजेश रोशन का संगीत।
1: उठ सबके।

साथी लिखते हैं, साधारण जीवन शैली का मतलब पीछे रह जाना नहीं होता, इसका मतलब है शोर कम करके असली आवाज को ही सुनना। जब प्लान कम होंगे तो पल ज्यादा मिलेंगे। छोटी छोटी खुशियां वही हैं जिन्हें जिनकी कोई डिमांड नहीं होती। चाय की पहली चुस्की से लेकर पहली बारिश में मिट्टी की वो सौंध ही खुशबू वाली खुशियां हम इसलिए मिस कर देते हैं क्योंकि हमारे अंदर की इच्छा तो बड़ी बड़ी खुशियों के इंतजाम में लगी रहती है, पर जिंदगी की बड़ी खुशियों की किश्तों में नहीं आती। जिंदगी की बड़ी खुशियां किश्तों में नहीं आती, वो हर रोज छोटी छोटी खुशियों में ही निहित होती है। और एक साथी ने पहले जो गीत हमने बजाया उसे लेकर लिखा है, जो छोटे हैं ना बड़े, बड़ी मुश्किल में है वो। यही सही है, जिस घर में बीच का भाई या बहन हो उसकी यही मुसीबत होती है। अब आप इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं क्योंकि आपके इस कमेंट से बिल्कुल समझ में आ रहा है कि आप भी घर में बीच वाले भाई हैं या बहन हैं। तो चलिए बताइए, क्या मुसीबत ऐसी होती है जब आप बीच वाले भाई या बहन होते हैं? तब तक सुनते हैं अगला गीत। मुकेश की आवाज है, आनंद फिल्म का ये गीत है, योगेश ने इसे लिखा है और सलील चौधरी का संगीत। पिछले गीत का शब्द था खुशी और इस गीत का कहीं दूर।

0: जाए।
1: जैसे कि हमने पूछा था अपने एक साथी से कि बीच के भाई बहनों की क्या समस्या होती है, तो उसके जवाब में एक साथी ने लिखा है, छोटे छोटे कामों के लिए हम बड़े हो जाते हैं और बड़े बड़े कामों के लिए हम छोटे होते हैं। जैसा जी चाहे घर वाले हमारा उपयोग कर लेते हैं। आपकी ये बात पढ़कर बड़ी हंसी आई मुझे, और सही कहा आपने कि होता है ऐसा। इवन एक उम्र ऐसी आती भी है जब हम अगर कुछ बच्चों जैसी हरकत करें तो डांट पड़ जाती है कि अब इतने छोटे हो क्या, और अगर कोई बड़ों के बीच में कोई बात कर ले तो तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो,

कि बड़ों में बात करो, ये भी हो जाता है, तो ये तो सब बातें होनी ही है। एक साथी ने लिखा है, हमने कई बार ऐसे कई काम देखे हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। एक बार हम गुरुजी के प्रोग्राम में नागपुर जा रहे थे और इतनी तेज बारिश की गाड़ी से जाना मुश्किल था स्टेशन तक। उधर ट्रेन राइट टाइम, जो हमारी दोस्त स्टेशन पहुंच गई थी उसने कहा ट्रेन चलने वाली है, हम अपने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया कि अब आप ही हमें पहुंचाएंगे। वो हम कैसे पहुंचे नहीं पता, हम अंदर गए, हमारे सामने ही ट्रेन का डिब्बा और हम ऊपर चढ़े और ट्रेन चल दी। अब इसे क्या कहेंगे नहीं पता। जी हाँ, कभी कभी होता है कि हमें लगता है अब तो ये काम संभव ही नहीं है, लेकिन किसी तरह कोई चमत्कार हो जाता है और असंभव काम संभव हो जाता है। एक साथी ने लिखा है, किसी भी काम और परेशानी में चिंतन करना ही समझदारी है। चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। बिल्कुल सही आपने कहा। और लीजिए अब इस कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है खट्टा मीठा। आवाजें लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की। गुलजार के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत।

एक साथी ने लिखा है, बीच वाले भाई या बहन को बड़ा भाई या बहन दोनों की सुननी पड़ती है। सब कहते हैं वो बड़ा है और वो तुमसे छोटा है, बेचारा चक्की में पिस जाता है। एक साथी ने लिखा, बचपन में एक कहानी या वाकया सुना था कि एक व्यक्ति बहुत टाइट जूते पहनकर बाहर जाया करते थे। घर आकर जब जूते उतारते थे तो उनको बहुत आराम महसूस तब वो बहुत आराम महसूस करते थे। लोगों ने सलाह दी कि थोड़े ढीले जूते पहने, तो उसके जवाब में उन्होंने बताया कि जीवन में कोई सुख नहीं है, जब मैं जूते उतारता हूं तो बहुत सुख महसूस करता हूं। देखिए, किसी के लिए कोई बात कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। शायद हमारे लिए वो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन वो किसी के लिए कितना सुकून देने वाली बात हो सकती है। आज का जो सुरीला सफर का कार्यक्रम है, हमें संपन्न करना होगा क्योंकि समय हमें इजाजत नहीं दे रहा। बस इतना ही कहेंगे कि आज की संगीत यात्रा में हमने उन छोटे छोटे एहसासों को छूने की कोशिश की जो अक्सर भागती दौड़ती जिंदगी में नजरअंदाज हो जाते हैं। उम्मीद है कि इन गीतों ने आपके मन में कुछ मीठी यादें और कुछ सुकून भरे पल जरूर जगाए होंगे। चलते चलते बस इतना याद रखिए, जिंदगी की असली रौनक बड़ी उपलब्धियों में नहीं बल्कि उन लम्हों में होती है जिन्हें हम दिल से जीते हैं। दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार।

0: 2023. Data released by the Ministry of Commerce and Industry showed that the rise in inflation last month was primarily driven by higher prices of mineral oils. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 summit set to begin in French city of Avignon this evening. Prime Minister Modi to participate in outreach sessions tomorrow. India welcomes peace deal between Iran and the United States, says it will help restore peace and stability in the region. Sensex jumps over 1,100 points as global crude oil prices tumble up to over 4% amid US-Iran peace deal. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman assures adequate buffer stock of food grains in the country despite El Nino conditions. United Kingdom announces social media ban for children under 16. And in FIFA World Cup 2026, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta Stadium in the United States this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13 भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
1: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्वभर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार

0: स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
1: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 1,53,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 2,53,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
3: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है, क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
0: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है।

0: जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि यह मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
1: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
2: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। राजा का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा, अरिसा पिठा, मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक राजा पान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं, ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबू वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की, जबकि ट्यूनिशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोमा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ

0: साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सुरैया के गाए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम दिल लगी, शकील बदायूनी की रचना है, नौशाद अली का संगीत।

नौशाद अली के संगीत निर्देशन में सुनिए शकील बदायूनी की लिखी ये रचना। सुरैया की आवाज, फिल्म का नाम दर्द।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विद्यार्थी फिल्म का गीत अब सुनिए मोहम्मद रफी और उषा तिमोथी की आवाज में। मधुकर बिहारी ने इसे लिखा है और बाबू सिंह का संगीत।

जिंदगी और मौत इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवाएंगे महेंद्र कपूर की आवाज में, शकील बदायूनी की रचना और सी रामचंद्र का संगीत। आज के सदाबहार नगमे से इस गीत के साथ ही इजाजत दीजिए, नेहा गरकर देसाई को नमस्कार।

0: सखी सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को और नेहा आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
1: सोनाली जी आपको भी और मेरे सभी श्रोताओं को सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। कैसी है सोनाली जी आप?
0: मैं तो मजे में हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई सहेली हमें बहुत दिनों बाद बाजार में या कहीं अन्य जगह पर दिखाई देती है और उसके कुछ दिन बाद तुरंत दिखाई देती है, तो हम कहते हैं देखिए ऐसे तो हम मिलते नहीं है, और कभी कभी बार बार मिलने लगते हैं।
1: मिले तो अचानक फिर मिलने लगे। मैं जान रही हूँ कि आप मेरी ही बात कर रही हैं। अभी पिछली बार ही हमारी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई और लो आज फिर हो गई।
0: तो ऐसी मुलाकातें बार बार होती रहे तो
1: अच्छा लगता है।
0: तो चलिए विषय बता दें आज के।
1: बिल्कुल, आज के विषयों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आज है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस,
0: जो बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है ना।
1: जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण विषय भी है इसके बारे में। मतलब ये एक गंभीर विषय है, हो सकता है हमें यूं बात करते वक्त लगेगा, हम कहते हैं कि ठीक है ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन सिर्फ बातें नहीं है, उन बातों को व्यवहार में भी लाना है।
0: और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अगर झल्लाहट के कारण या फिर किसी अन्य कारणों से हमारे घर के बुजुर्ग हैं उनसे हम दुर्व्यवहार यानी बस कुछ ऊंची आवाज में बात कर ले, उससे आगे तो क्षमा ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो उनसे तुरंत माफी मांग लेना भी बहुत जरूरी है। और इस विषय में हमारे बहुत सारे साथियों ने, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने, सखियों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लिखकर भेजे हैं।
1: जी हाँ, उनको भी हम जरूर पढ़ेंगे। अगला विषय किस बारे में है बताएंगी?
0: जी आज कथा सुधा, जिसका सभी श्रोताओं को इंतजार है, आभूषण भाग 3, जो हम सब मिलकर सुनेंगे। साथ ही बहुत जल्दी यानी कुछ ही दिनों में बारिश आने वाली है, तो उसके पहले क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए?
1: बारिश आने वाली है। सोनाली जी बस सुन ही रहे हैं कि बारिश आने वाली है, कब आने वाली है।
0: बस आएगी ना तो हम उसका बहुत खूबसूरती के साथ उसका स्वागत करेंगे, और हम कुछ ऐसा करेंगे बारिश के मौसम में, यानी खूब सारे पेड़ लगाएंगे। जब भी हम जामुन खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, उन गुठलियों को हमें सहेज कर रखना है, और जैसे ही बारिश आएगी तो हमें खूब सारे पेड़ लगाना है, ताकि हमें इतना इंतजार ना करना पड़े।
1: वही तो बस सुन रहे हैं, लेकिन बारिश आने के पहले हमें कुछ तैयारियां भी करनी है ना।
0: तो वो कौन सी तैयारियां हैं वो हमारे साथियों से हम गुजारिश करेंगे कि वो लिखिए आप कि आप कौन सी तैयारियां करते हैं। कुछ लोग अनाज को सुखाते हैं, कुछ घर की मरम्मत करवाते हैं, तो कुछ जो पेड़ है जिनकी टहनियां जो बहुत

0: बढ़ चुकी है, जो गिरने का डर है वो कटवाते हैं, क्या करते हैं आप, किस तरह से तैयारियां आपकी शुरू हो गई है उस बारे में हमें लिखकर बताइए। और साथ ही व्यंजनों का जब जिक्र चलता है तो आज हम उत्तर प्रदेश के व्यंजन, उसमें है मक्खन मलाइयो और बेडमी पूड़ी और आलू की सब्जी।
1: क्या बात है, मेरे लिए तो इनमें से दो चीजें बिल्कुल नई हैं, तो आज नई जानकारी जानने को मिलने वाली है।
0: और अब क्या करना है,
1: एक गीत सुन लेते हैं।
0: तो सुनते हैं गीत।

0: बड़ा ही सुंदर गाना था ये।
1: बहुत सुरीला गाना, और हमारे बहुत सारे सखियों ने और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी लिखा कि गाना बहुत पसंद आया। तो अब सभी को इंतजार है कथा सुधा का, तो
0: मुझे भी
1: है ना, मुझे भी। तो सुनते हैं आभूषण भाग 3।
0: जी
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। पिछली कड़ी में आपने सुना
4: मंगला सुंदरी न सही, पर पति पर जान देती थी। जो अपने को चाहे उससे हम विमुख नहीं हो सकते, प्रेम की शक्ति अपार है। पर शीतला की मूर्ति सुरेश के हृदय द्वार पर बैठी हुई मंगला को अंदर न जाने देती थी। जिस दिन शीतला इस घर में मंगला का मुख देखने आई थी, उसी दिन सुरेश की आंखों ने उसकी मनोहर छवि की एक झलक देख ली थी। सुरेश एकांत में बैठे हुए शीतला के चित्र को मंगला से मिलाते ये निश्चय करने के लिए कि उनमें क्या है, एक क्यों मन को खींचती है, दूसरी क्यों उसे हटाती है। पर उसके मन का ये खिंचाव केवल एक चित्रकार या कवि का रसास्वादन मात्र था। वो पवित्र और वासनाओं से रहित था। पर जब मंगला ने अंत को बात बात में उनकी तीव्र आलोचना करना शुरू कर दिया, वो उनसे उच्छृंखलता का व्यवहार करने लगी, तो उसके प्रति उनका वो उतना सौहार्द भी विलुप्त हो गया। घर में आना जाना छोड़ दिया। प्रातःकालीन ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश खुमारी में पड़े हुए स्वप्न देख रहे थे कि मंगला सामने से चली जा रही है। चौंक पड़े, देखा द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी है। सुरेश समझ गए, पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की, मनाने की या समझाने की चेष्टा नहीं की। वो यूं ही जड़वत पड़े रहे और मंगला चली गई। इस गांव से निकलकर मंगला उस गांव में पहुंची जहां शीतला रहती थी। शीतला सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो गई और मंगला से बोली,
5: कुंवर जी से कुछ कहा सुनी हुई क्या?
6: जहां प्रेम नहीं, पूछ नहीं, मान नहीं, वहां अब नहीं रह सकती मैं। बहन, स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं कि वो रूपहीन हो। रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है।
4: ये कहकर मंगला उठ खड़ी हुई। शीतला ने उसे रोका नहीं। मंगला के जाने के बाद शीतला बहुत देर तक बैठी सोचती रही। अपनी लालसा को, तृष्णा को वो कितनी ही बार धिक्कार चुकी थी। मंगला की दशा देखकर आज उसे आभूषणों से घृणा हो गई।
3: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का तीसरा भाग।
4: विमल सिंह को घर छोड़े 2 साल हो गए थे। शीतला को अब उनके बारे में भांति भांति की शंकाएं होने लगी थीं। आठों पहर उसके चित्त में ग्लानि और क्षोभ की आग सुलगा करती थी। देहात के छोटे मोटे जमींदारों का काम डांट डपट छीन झपट ही से चला करता है। विमल की खेती बेगार में होती थी। उसके जाने के बाद सारे खेत परती रह गए।

0: कोई जोतने वाला न मिला। इस ख्याल से साझे पर भी किसी ने न जोता कि बीच में कहीं विमल सिंह आ गए तो साझेदार को अंगूठा दिखा देंगे। असामियों ने लगान न दिया। शीतला ने महाजन से रुपए उधार लेकर काम चलाया। दूसरे वर्ष भी यही कैफियत रही। अब की महाजन ने रुपए नहीं दिए। शीतला के गहनों के सिर गई। दूसरा साल समाप्त होते होते घर की सब लेई पूंजी निकल गई। फाके होने लगे। बूढ़ी सास, छोटा देवर, ननद और आप, चार प्राणियों का खर्च था। नाथित भी आते ही रहते थे। उस पर ये और मुसीबत हुई, मायके में एक फौजदारी हो गई। पिता और बड़े भाई उसमें फंस गए। दो छोटे भाई, एक बहन और माता, चार प्राणी और सर पर आ डटे। गाड़ी पहले ही मुश्किल से चलती थी, अब जमीन में धस गई। प्रातः काल से कलह आरंभ हो जाता। समदिन समदिन से साले बहनोई से गुथ जाते। कभी तो अन्न के अभाव से भोजन ही न बनता, कभी भोजन बनने पर भी गाली गलौज के कारण खाने की नौबत न आती। लड़के दूसरों के खेतों में जाकर गन्ने और मटर खाते, बुढ़िया दूसरों के घर जाकर अपना दुखड़ा रोती और ठकुर सुहाती करती। पुरुष की अनुपस्थिति में स्त्री के मैके वालों का प्राधान्य हो जाता है। इस संग्राम में प्रायः विजय पताका मैके वालों ही के हाथ में रहती है। किसी भांति घर अनाज आ जाता तो उसे पीसे कौन। शीतला की मां कहती, चार दिन के लिए आई हूं तो क्या चक्की चलाऊं। सास कहती, खाने की बेर तो बिल्ली की तरह लपकेंगी और पीसते क्यों जान निकलती है। विवश होकर शीतला को अकेले पीसना पड़ता। भोजन के समय वो महाभारत मचता कि पड़ोस वाले तंग आ जाते। शीतला कभी मां के पैरों पड़ती, कभी सास के चरण पकड़ती, लेकिन दोनों ही उसे झिड़क देती। मां कहती, तूने यहां बुलाकर हमारा पानी उतार दिया। सास कहती, मेरी छाती पर सौत लाकर बैठा दी, अब बातें बनाती है। इस घोर विवाद में शीतला अपना विरह शोक भूल गई। सारी अमंगल शंकाएं इस विरोधाग्नि में शांत हो गईं। बस अब यही चिंता थी कि इस दशा से छुटकारा कैसे हो। मां और सास दोनों ही का यमराज के सिवा और कोई ठिकाना न था। पर यमराज उनका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं जान पड़ते थे। सैकड़ों उपाय सोचती, पर उस पथिक की भांति जो दिन भर चलकर भी अपने ही द्वार पर खड़ा हो। उसकी सोचने की शक्ति निश्चल हो गई थी। चारों तरफ निगाहें दौड़ाती कि कहीं कोई शरण का स्थान है, पर कहीं निगाह न जमती। एक दिन वो इसी नैराश्य की अवस्था में द्वार पर खड़ी थी। मुसीबत में, चित्त की उद्विग्नता में, इंतजार में द्वार से हमें प्रेम हो जाता है। सहसा उसने बाबू सुरेश सिंह को सामने से घोड़े पर जाते देखा। उनकी आंखें उसकी ओर फिरी, आंखें मिल गईं, वो झिझक कर पीछे हट गई, किवाड़ बंद कर लिया। कुंवर साहब आगे बढ़ गए। शीतला को खेद हुआ कि उन्होंने मुझे देख लिया। मेरे सिर पर साड़ी फटी हुई थी, चारों तरफ उसमें पैबंद लगे हुए थे। वो अपने मन में न जाने क्या कहते होंगे। कुंवर साहब को गांव वालों से विमल सिंह के परिवारों के कष्ट की खबर मिली थी। वो गुप्त रूप से उनकी कुछ सहायता करना चाहते थे, पर शीतला को देखते ही संकोच ने उन्हें ऐसा दबाया कि द्वार पर एक क्षण भी न रुक सके। मंगला के गृह त्याग के 3 महीने पीछे आज वो पहली बार घर से निकले थे। मारे शर्म के बाहर बैठना छोड़ दिया था। इसमें संदेह नहीं कि कुंवर साहब मन में शीतला के रूप रस का आस्वादन करते थे। मंगला के जाने के बाद उनके हृदय में एक विचित्र दुष्कामना जाग उठी।
1: ओ शीतला, शीतला, क्या किसी उपाय से ये सुंदरी मेरी नहीं हो सकती? विमल का मुद्दत से पता नहीं, बहुत संभव है कि वो अब संसार में ही ना हो।
0: किंतु वो इस दुष्कल्पना को विचार से दबाते रहते थे। शीतला की विपत्ति की कथा सुनकर भी वो उसकी सहायता करते हुए डरते थे। कौन जाने वासना यही वेश धरकर मेरे विचार और विवेक पर कुठाराघात करना चाहती हूं। अंत को लालसा की कपटलीला उन्हें भुलावा दे ही गई। वो शीतला के घर

0: उसका हालचाल पूछने गए। मन में तर्क किया,
1: ये कितना घोर अन्याय है कि एक अबला ऐसे संकट में हो और मैं उसकी बात भी ना पूछूं। ओ शीतला, आ ये मनोहर छवि, ये अनुपम सौंदर्य। शीतला, ये प्राण और ये शरीर तेरी भेंट करता हूं। संसार हंसेगा, हंसे, महापाप है, हो, कोई चिंता नहीं। इस स्वर्गीय आनंद से मैं अपने को वंचित नहीं कर सकता, वो मुझसे भाग नहीं सकती। इस हृदय को छाती से निकालकर उसके पैरों पर रख दूंगा। विमल सिंह मर गया, नहीं मरा तो अब मरेगा। पाप क्या है पता नहीं। शीतला, ओ शीतला।
0: अकस्मात वो ठिठक गए, जैसे कोई भूली हुई बात याद आ जाए। मनुष्य में बुद्धि के अंतर्गत एक अज्ञात बुद्धि होती है, जैसे रणक्षेत्र में हिम्मत हारकर भागने वाले सैनिकों को किसी गुप्त स्थान से आने वाली कुमक संभाल लेती है, वैसे ही इस अज्ञात बुद्धि ने सुरेश को सचेत कर दिया। वो संभल गए, ग्लानि से उनकी आंखें भर आईं। वो कई मिनट तक किसी दंडित कैदी की भांति क्षुब्ध खड़े सोचते रहे, फिर विजय ध्वनि से कह उठे,
2: कितना सरल है, इस विकार के हाथी को सिंह से नहीं चींटी से मारूंगा। शीतला को एक बार बहन कह देने से ही यह सब विकार शांत हो जाएगा। शीतला बहन, मैं तेरा भाई हूं।
0: उसी क्षण उन्होंने शीतला को पत्र लिखा।
1: बहन, तुमने इतने कष्ट झेले पर मुझे खबर तक न दी, मैं कोई गैर न था, मुझे इसका दुख है। खैर, अब ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें कष्ट न होगा। इस पत्र के साथ अनाज और रुपये भेज रहा हूँ।
3: भैया क्षमा करो, जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी, तुमने मेरी डूबती नाव पार लगा दी है।
0: कई महीने बीत गए, संध्या का समय था। शीतला अपनी मैना को चारा चुगा रही थी, उसे सुरेश नेपाल से उसी के वास्ते लाए थे। इतने में सुरेश आकर आंगन में बैठ गए।
3: कहां से आते हो भैया?
1: गया था जरा थाने, कुछ पता नहीं चला। रंगून में पहले कुछ पता मिला था, बाद को मालूम हुआ कि वो कोई और आदमी है। क्या करूं, इनाम और बढ़ा दूं?
3: तुम्हारे पास रुपए बढ़े हैं तो फूको, उनकी इच्छा होगी तो आप ही आवेंगी।
1: शीतला बहन, एक बात पूछूं, बताओगी?
3: हाँ।
1: विमल सिंह किस बात पर रूठे थे तुमसे?
3: कुछ नहीं, मैंने यही कहा कि मुझे गहने बनवा दो। कहने लगे मेरे पास है क्या? मैंने कहा तो ब्याह क्यों किया? बस बातों ही बातों में तकरार हो गई।
0: इतने में शीतला की सास आ गई। सुरेश ने शीतला की माँ और भाइयों को उनके घर पहुंचा दिया था, इसलिए यहाँ अब शांति थी। सास ने बहू की बात सुन ली थी, कर्कश स्वर से बोली,
4: अरे बेटा, तुम तो घर के आदमी हो, तुमसे क्या पर्दा है? ये महारानी तो बस देखने की ही गुलाब की फूल है, अंदर सब काटे हैं। अरे अपने बनाओ सिंगार के आगे विमल की बात ही ना पूछती थी ये। बेचारा वो तो इस पे जान छिड़कता था, पर इसका मुंह ही सीधा नहीं होता था। और प्रेम, प्रेम तो इससे छू ही नहीं गया, अंत को उसे देश से निकाल कर ही दम लिया इसने।
3: हाँ। क्या वही अनोखे धन कमाने घर से निकले हैं? देश विदेश जाना तो मर्दों का काम ही है।
1: यूरोप में तो धन भोग के सिवा स्त्री पुरुष में कोई संबंध ही नहीं होता। बहन ने यूरोप में जन्म लिया होता तो हीरे जवाहर से जगमगाती होती। शीतला, अब तुम ईश्वर से यही कहना कि सुंदरता देते हो तो यूरोप में जन्म दो।
3: जिनके भाग्य में लिखा है वो यही सोने में लदी हुई है, मेरी तरह सभी के कर्म थोड़े ही फूट गए हैं।
0: सुरेश सिंह को ऐसा जान पड़ा कि शीतला की मुख कांति मलिन हो गई है। पति वियोग में भी

0: गहनों के लिए इतनी लाल आई थे? बोले,
1: अच्छा बाबा, मैं बनवा दूंगा गहने तुम्हें।
0: ये वाक्य कुछ अपमान सूचक स्वर में कहा गया था, पर शीतला की आंखें आनंद से सजल हो आईं, कंठ गदगद हो गया। उसके हृदय नेत्रों के सामने मंगला के रत्न जटित आभूषणों का चित्र खिंच गया। उसने कृतज्ञता पूर्ण दृष्टि से सुरेश को देखा, मुंह से कुछ न बोली, पर उसका प्रत्येक अंग कह रहा था, मैं तुम्हारी हूं।
2: कथा सुधा में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का तीसरा भाग। पात्र परिचय कुछ इस प्रकार से है, सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रीकर, मंगला, ममता सिंह, शीतला की सास दीपा माहेश्वरी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। कहानी आगे क्या मोड़ लेती है, इसके लिए सुनिए अगले सोमवार को कथा सुधा का अगला अंक।
3: सोनाली जी, कमेंट्स पढ़कर पता चल रहा है कि कथा सुधा की आज की कहानी सभी को पसंद आई है।
4: हमको भी पसंद आई है, आपको भी पसंद आई,
3: और इंतजार रहेगा इसके अगले भाग का
4: जी।
3: लेकिन बीच में एक गीत सुन लिया जाए
4: तो सुनते हैं एक गाना।

0: नेहा, प्यार कुछ ऐसी ही चीज है ना, प्यार कह लीजिए, स्नेह कह लीजिए, कि जो हम देते हैं ना तो सामने से हमें बिल्कुल मिलता ही है वो प्यार, है ना?
1: और दुगना होके मिलता है.
0: बिल्कुल, दुगना क्या, चौगुना, आठ गुना होके मिलता है. क्योंकि हर इंसान को सिर्फ प्यार की, स्नेह की, यानी अच्छी बातों की इच्छा होती है ना.
1: बिल्कुल. और सोनाली जी, अब कार्यक्रम में एक अंतराल ले लें.
0: बिल्कुल, लेते हैं.

0: तो ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है
1: सखी
0: सहेली।
1: सहेली।
0: और जैसे प्रेम स्नेह की बात चली थी, तो हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, उन्हें सिर्फ और सिर्फ चाहत होती है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए,
1: बिल्कुल, प्रेम से बात की जाए, थोड़ा उनके साथ बैठा जाए।
0: उन्हें वक्त दिया जाए,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि उस उम्र में आके उन्हें ना नए कपड़े, या फिर ना घूमना फिरना, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे हम लोगों को, जैसे घड़ियां या बहुत सारी महंगी महंगी चीजें, उन्हें किसी चीज से लगाव नहीं होता है उन्हें।

0: होती है कि उनके साथ में दो चार पल सुकून के साथ कोई बैठे, उनकी बातें समझे। और उम्र के साथ ऐसा होता है ना कि उनके कानों से कम सुनाई देता है, आंखों से कम दिखाई देता है, तो लोग छोटी छोटी बात को लेकर उन पर झल्लाने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और आज है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस।
1: जी,
0: तो
1: विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। ये दिन हमें बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील रहना सिखाता है, जिन्होंने अपने जीवन के अनमोल वर्ष परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के निर्माण में लगा दिए। हम देखते हैं ना सोनाली जी, कि हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। वो हमें तब समझ नहीं आता, हम जब छोटे होते हैं तब हमें वो उतना जान नहीं पड़ता, लेकिन उम्र के साथ धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो जान पड़ता है कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है। और आज वो उम्र के उस पड़ाव पर है जहां उन्हें हमारी जरूरत है। बुजुर्ग परिवार की वो मजबूत नींव होते हैं जिन पर रिश्तों की इमारत खड़ी रहती है। उनके पास जीवन का लंबा अनुभव, संघर्षों की कहानियां और आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल सीख होती है।
0: लेकिन क्या होता है ना नेहा, कि बदलती जीवन शैली, व्यस्तता और कई सामाजिक कारणों से कुछ बुजुर्ग उपेक्षा और दुर्व्यवहार का सामना करते हैं। और इसी समस्या के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और बुजुर्गों के साथ होने वाला कोई भी ऐसा व्यवहार जिससे उन्हें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आर्थिक पीड़ा पहुंचे, दुर्व्यवहार ही कहलाता है। यानी अगर आप जोर से बात करें, चिल्ला के बात करें, उनके ऊपर झुंझलाए, तो ये भी एक दुर्व्यवहार में ही गिना जाएगा।
1: अब देखने में भी ये भी आता है सोनाली जी, कि जब भी मोबाइल वगैरह पर कुछ नई चीज, हमारे घर के जो वृद्ध व्यक्ति हैं, बड़े लोग हैं, जब वो मोबाइल की कोई चीज हमसे सीखना चाहते हैं तो वो हमसे पूछते हैं। कई बार वो एक बार पूछने के बाद भूल जाते हैं, फिर दोबारा पूछते हैं, फिर तीसरी बार पूछते हैं, तो तीसरी चौथी बार में हम चिड़चिड़ा जाते हैं, उन्हें कभी उल्टा जवाब दे देते हैं या फिर ऊंची आवाज में बात करके कह देते हैं कि कितनी बार बताया। लेकिन हमें वो समय याद करना चाहिए जब हम छोटे थे और उन्होंने भी हमें कितनी बार एक ही चीज सिखाई होगी, तो उसी तरह हमें भी बार बार वो चीजें उन्हें बता देनी चाहिए, क्योंकि उम्र के उस पड़ाव में वो भूल जाते हैं, इसलिए शायद वो बार बार पूछते हैं।
0: या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम उन्हें प्यार से समझा भी सकते हैं कि देखो अम्मा या बाबूजी, जब हम काम करते रहे ना, उस वक्त हम थोड़ी देर अपना काम कर लेंगे, उसके बाद आपके साथ वक्त बिताएंगे, तो उस वक्त आप फिर सवाल ना पूछे या फिर क्योंकि क्या होता, उन्हें नहीं पता होता, उन्हें वो अपने बच्चों को अपने छोटे बच्चों जैसे ही समझते हैं। उन्हें नहीं मालूम होता है कि बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, लैपटॉप लेके बैठे तो क्या मूवी देख रहे हैं या फिर गाने सुन रहे हैं। तो उन्हें प्यार से भी समझा के परिस्थिति को संभाला जा सकता है।
1: और सोनाली जी, ये जो बात आपने कही है बिल्कुल सही कही, ये ना सिर्फ बुजुर्गों के साथ होता है बल्कि ये हमारे साथ भी होता है। कभी अगर हम मोबाइल लेकर बैठे हैं तो हमारे मम्मी पापा को भी लगता है कि गेम खेल रही है या पढ़ाई कर रही है, पता नहीं। अब उन्हें पता नहीं है, हो सकता है वो बेचारे सोचेंगे कि नहीं, अभी अभी इन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, पढ़ रही है फोन पर, पता चलता है गेम खेल रही। तो वही बुजुर्गों के साथ भी होता है, उन्हें नहीं समझ आता होगा कि अब फोन लेकर या लैपटॉप लेकर बैठे हैं तो टाइम पास कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं या कुछ
0: काम कर रहे हैं।
1: ऐसा हो जाता है। उनकी बुजुर्गों की जो जरूरतें, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां और भावनाओं को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उनका अपमान करना, कठोर शब्द बोलना या फिर उन्हें अकेला महसूस कराना, ये भी बिल्कुल सही नहीं है।
0: बिल्कुल सही नहीं है, कि कई बार ऐसा होता है ना कि पूरा परिवार जो है हंस रहा है, खिलखिला रहा है, और अम्मा को कम सुनाई देता है तो पीछे के कमरे में अकेली बैठी हुई। ये जो परिस्थिति है ना, बहुत निराशाजनक परिस्थिति है। तो ऐसी परिस्थिति किसी भी घर में नहीं होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात है नेहा, कि उनकी संपत्ति या पैसों का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें परिवार में महत्व देना है और घर परिवार के निर्णयों से उन्हें दूर नहीं रखना चाहिए। और ये जो बातें होती है ना, अगर ये बातें उन्हें अंदर से खोखला कर देती है, कि उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि उस वक्त उनका जीवन साथी छोड़कर चला गया होता है, कभी तो वो जो अकेलापन होता है वो सचमुच उस दशा में आने के बाद ही हर इंसान उसे महसूस कर सकता है। तो अगर किसी के घर में इस तरह से कोई बुजुर्ग है तो उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। और अब हमें क्या करना चाहिए नेहा?
1: एक गीत सुनना चाहिए।
0: हाँ, तो अगर वो रूठ जाए हमारी दादी अम्मा, तो उन्हें गाना गा के मना भी लेना चाहिए।
1: बिल्कुल, मना लेते हैं।

0: दादी को तो मनाना ही पड़ता है क्योंकि पहले हम गुस्से में चिल्ला देते हैं, बोल देते हैं, फिर बुरा लग जाता है तो मनाना पड़ता है।
1: और ऐसे अगर गा के दादी को अगर मना लिया तो दादी भी बहुत प्यार से मान भी जाएंगी, है ना।
0: एक साथी लिख रहे हैं, बुजुर्ग हमारे अतीत की धरोहर, वर्तमान के मार्गदर्शक और भविष्य के लिए प्रेरणा है। उनका सम्मान ही हमारे संस्कारों की सबसे बड़ी पहचान है। आज के व्यस्त जीवन शैली में अक्सर बुजुर्ग अकेलेपन और उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए और उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि वे परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक प्रेमपूर्ण शब्द, थोड़ी सी संवेदना और सम्मान का व्यवहार उनके जीवन में नई ऊर्जा भर सकता है।
1: एक साथी लिखते हैं, बुजुर्ग केवल उम्र में बड़े नहीं होते, वे अनुभवों की किताब होते हैं जिनके हर पन्ने पर जीवन की कोई न कोई सीख लिखी होती है। उनका सम्मान करना केवल एक संस्कार नहीं बल्कि हमारी पहचान है। घर में बुजुर्गों की मौजूदगी उस छांव की तरह होती है जहां थका हुआ मन सुकून पाता है। उनकी मुस्कान, उनका आशीर्वाद और उनका स्नेह जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है। बुजुर्गों के पास बीते वर्षों का अनुभव होता है, दिल में अपनों के लिए अथाह प्रेम। उन्हें सम्मान देना, उनकी बातें सुनना और उनके साथ समय बिताना ही उनके प्रति सच्चा आदर है।
0: और एक साथी ने लिखा है, बुजुर्ग जो भी हमारे परिवार में समाज में वो आदरणीय है, उनके जीवन के अनुभव बताए गए सही मार्ग पर चलकर जीवन सार्थक होता है। कोई भी समस्या जीवन में आती बुजुर्ग सहयोग से जल्दी निवारण होता है। घर परिवार में दादाजी, दादी जी, माँ, पिताजी, बड़े भाई, उनका आदर करना चाहिए। माँ पिताजी को भगवान से कम नहीं है, इसलिए मंदिर तीर्थ पर भगवान को ढूंढते हैं। वो बुजुर्ग रूप में हर घर में परिवार के पास है।
1: क्या बात है,
0: ये तो बिल्कुल सही कहा। हमारे माँ हमारे लिए भगवान समान होते हैं। देखिए, हर मुसीबत में जब सारी दुनिया हमें भूल जाती है या छोड़ देती है, या फिर जब किसी के पास कोई उपाय नहीं होता, माता पिता के पास जरूर एक उपाय होता है और वो हमें हर समस्या से बचा लेते हैं।
1: और है ना कि कोई भी दुनिया में कोई भी इंसान हमारा बुरा कर सकता है, पर हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, नाना नानी, वो हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। वो भर भर के आशीर्वाद देते। एक साथ ही लिखते हैं कि बुजुर्गों की दुआएं उस दीपक की तरह होती है जो बिना शोर के

0: जीवन की राहों को रोशन करती है। उनके साथ बिताया गया हर पल एक अनमोल उपहार है। और एक साथी लिखते हैं, वृद्धजनों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने के लिए परिवार और समाज दोनों को संवेदनशील बनना अति आवश्यक है। यदि वृद्धजनों के प्रति किसी प्रकार का शोषण या उपेक्षा दिखाई दे तो उसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए और संबंधित यानी लोगों तक पहुंचाने चाहिए। प्रेम, सम्मान और सहयोग का वातावरण ही वृद्धजनों को सुरक्षित और सम्मानपूर्ण जीवन दे सकता है। और इस दिन को मनाने की शुरुआत 15 जून से की गई, ऐसी भी बातें हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भेजी है। और इसकी शुरुआत 2006 से शुरुआत की गई थी, INPEA इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर अब्यूज द्वारा की गई थी और बाद में दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इसे आधिकारिक मान्यता दी थी।
1: सोनाली जी, आज के बच्चे जब दादा दादी और नाना नानी से कहानियां सुनते हैं तो केवल मनोरंजन नहीं होता बल्कि वे संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों से जुड़ते हैं। बुजुर्ग परिवार को जोड़ने वाली वो कड़ी होते हैं जो पीढ़ियों के बीच पुल का काम करती है। आपने कभी नोटिस किया है, ये मैंने खुद भी जाना है कि जब भी किसी परिवार में बच्चे दादा दादी के आश्रय में बड़े हो रहे होते हैं तो उन पर एक अलग ही तरह के संस्कारों की बौछार होती है।
0: वो बच्चे अलग ही संस्कारी नजर आते हैं।
1: चूंकि माता पिता अपनी व्यस्तताओं के चलते उतना समय नहीं दे पाते, लेकिन दादा दादी अपने समय का पूरा सदुपयोग उस बच्चे की परवरिश में करते हैं और वो बच्चा अलग ही जान पड़ता है।
0: तो सचमुच जिनके घर में दादा दादी नाना नानी है वो सचमुच बच्चे नसीब वाले होते हैं ना।
1: जी हाँ। और इसी के साथ हमारे एक साथी ने लिखा है, बुजुर्ग हमारे समाज की नींव और अनुभवों का समृद्ध दस्तावेज है। बुजुर्ग विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हमें याद दिलाता है कि एक सभ्य समाज वही है जो अपने वृद्धों को सुरक्षित, गरिमापूर्ण और प्रेमपूर्ण जीवन दे सके। इसके अलावा सोनाली जी, कभी कभी ये भी लगता है जब हम अभी अब चलन हो गया है कि सिर्फ पति पत्नी अकेले रह रहे हैं या फिर बच्चे न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, लेकिन जब हम बड़े परिवार में, संयुक्त परिवार में रहते हैं तब एक बात और जानने को मिलती है कि बुजुर्गों का जो सहयोग हमें मिलता है, घर में बच्चे कभी अकेले नहीं पड़ते, वो कभी अवसाद का सामना नहीं करते क्योंकि उनके पास कोई ना कोई उन्हें देखने के लिए होता है कि नहीं।
0: आप क्या करें,
1: तो अब चूंकि हमें भी थोड़ा सा मनोरंजन बीच में चाहिए तो एक गाना सुन लेते हैं।
0: गीत

0: कहाँ गुम है आप?
1: ठंडी हवा का इंतजार कर रही हूँ।
0: और ठंडी हवाओं के साथ बारिश की फुलवारी का भी
1: बहुत इंतजार है, क्योंकि जो है ना इतनी गर्मी बढ़ गई है, इतनी हाँ। गर्मी बढ़ गई है कि हर कोई जाकर आसमान की तरफ देखता है कि काले बादल दिखे, पर काले बादल नजर ही नहीं आ रहे,
0: नहीं आ रहे। और जो थोड़े बहुत बादल दिख भी जाते हैं वो यूं ही मुंह मोड़ के चले जाते हैं।
1: और उनका रंग इतना सफेद सफेद है कि अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, काला रंग ज्यादा अच्छा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। बारिश भी ना सोनाली जी प्रकृति का वो अनमोल उपहार है जो धरती को नया जीवन देती है। तपती गर्मी के बाद जब बादल उमड़ते हैं और पहली बूंद धरती को छूती है तो वातावरण में ताजगी और हरियाली फैल जाती है।
1: और वो जो खुशबू आती है नहीं,
0: हाँ हाँ हाँ, सौंधी सौंधी खुशबू,
1: उसके आगे महंगे महंगे जो इत्र है ना वो फीके लगते हैं।
0: वो तो है। लेकिन बारिश का आनंद तभी लिया जा सकता है सोनाली जी जब हम इसके आने से पहले उचित तैयारी कर लें। थोड़ी सी सावधानी हमें जल भराव, बीमारियों और अन्य परेशानियों से बचा सकती है। बारिश आने से पहले घर की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए।
1: बहुत
0: कई
1: जरूरी
0: सारे
1: है।
0: बिंदु हैं जो हमें पहले जांच कर लेना चाहिए, बारिश आने से पहले तैयारियां कर लेनी चाहिए। इन तैयारियों के बारे में कई सारे कमेंट्स भी आए हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे।
1: अब जैसे तैयारियों की बात चलिए तो वैसे तो हम सभी तैयारी करते हैं कि भाई कहीं दरारें पड़ गई है तो वो भर देते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण तैयारी है नेहा कि वर्षा जल संचयन का काम है ना, क्योंकि क्या होता है ना, हम ये जो बारिश का पानी है वो वैसे ही बह जाता है, तो अगर हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि छत के ऊपर से ऐसा उतार करके और उसे नाली नल के पाइप के माध्यम से जमीन के अंदर भेजने की व्यवस्था हो तो जो पानी है ना हमारे जमीन के अंदर चला जाएगा और फिर हैंडपंप वगैरह के माध्यम से वो पानी हमें मिलता है। कुछ लोग तो ऐसे स्टोर करके भी रखते हैं, तो इस तरह की व्यवस्था करना सबसे जरूरी बात है। तो वो हमें अगर आप कर सकते हैं तो ये व्यवस्था जरूर करें, क्योंकि जो बूंद बूंद है ना इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी होती है। और वर्षा जल संचयन का अर्थ है कि जो पानी है उसे हमें जमा करना है और छतों पर गिरने वाले पाइप को टंकी के माध्यम से भूमिगत जल संग्रह स्थान तक पहुंचाना, इससे पानी की बचत तो होती है साथ ही भूजल का स्तर भी बढ़ता है। तो इस व्यवस्था करने का काम हमें जरूर से करना आना चाहिए।
0: इसके अलावा बारिश आने से पहले घर की अच्छी तरह से जांच करना चाहिए, छत दीवारें और खिड़कियों में कि कहीं से पानी का रिसाव तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसकी मरम्मत करवा लेनी चाहिए। घर की नालियों, पाइप और पानी निकलने के रास्तों की भी सफाई कर लेनी चाहिए ताकि तेज बारिश में पानी जमा न हो जाए। कई बार ना जो ऐसे घर के पुराने पाइप होते हैं या जो उपयोग में कम होते हैं तो देखिएगा बाकी दिनों में ना चिड़िया वहां घोंसला बना लेती है या फिर अपने तिनके तिनके जमा कर। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो आपको जांच कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे में वहां पानी जम सकता है और घोंसले को भी नुकसान हो सकता है।
1: और बहुत सारे लोगों को ना बहुत लालच भी होता है ना कि अरे ये टायर जो है मुझे बाद में काम आएंगे, भले ही वो बिना काम के हो, तो उसमें पानी जमा हो जाता, फिर उसमें मच्छर पनपने लगते हैं, फिर डेंगू मलेरिया होने का
0: बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
1: इसलिए फिर वो जो है ना जो कबाड़ सामान जो घर में जमा करके रखा है, छत के ऊपर है जो बोतल्स वगैरह है,
0: हाँ,
1: और बहुत सारा ऐसा सामान है वो बिल्कुल कबाड़ में दे देना चाहिए। एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि बारिश के दिनों में जल स्रोतों के दूषित होने की संभावना सबसे अधिक होती है, इससे पेट के संक्रमण, पीलिया, टाइफाइड का खतरा बढ़ सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार बारिश शुरू होने से पहले घर में वाटर फिल्टर का यानी आरओ सिस्टम की मरम्मत सर्विसिंग करवा लेना समझदारी का काम है। वाटर फिल्टर उपलब्ध न हो तो पानी को अच्छी तरह उबालकर छानकर पीने की आदत डालना जरूरी है और घर से बाहर निकलते वक्त अपनी बोतल लेकर जाए।
0: बिल्कुल। एक साथ ही लिख रहे हैं, बारिश तो भाई होनी होती है, तो आषाढ़, सावन, भादो और क्वार तक अपने आप प्राकृत स्वरूप में भली भांति चतुर्दिक हो जाया करती है। और उनके पूर्व की तैयारियों में कृषक अपने ईंधन की व्यवस्था के तहत गोहरे और लकड़ियों को संभाल कर रख लिया करते थे, नहीं तो भादो मास में तो चूल्हा ही नहीं जल पाता था, तो फिर चना चबेना और गंग जल का ही भरोसा रहता था, न कि चटनी और गर्मा गर्म पकौड़ों का। ये प्राकृत मानसून के बारिश का हाल था, नदियां उफान पर रहा करती थी, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती ही पानी न बरसने के कारण गर्म हो रही है और नदियों में प्रवाह नहीं हो रहा, तो फिर तैयारी किस बात की। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ तैयारियां हैं जो हमें करनी ही होती है।
1: बिल्कुल करना जरूरी। और आप क्या करना चाहिए, आप एक गाना सुनिए।
0: गीत सुनना भी बहुत जरूरी है।
1: सुनते हैं गीत।

0: तो हम मेघा से कहेंगे कि भाई परदेश मत जाओ, हमारे देश में आ जाओ।
1: एक साथी ने लिखा है, बारिश की पूर्व तैयारी में हमें अपने अपने घरों, सरकारी भवनों आदि ऐसे स्थानों के चांदनी गैलरियों में जमा बारिश के पानी को पुनः जमीन में भेजने की व्यवस्था करने की ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे पानी जमीन में जाकर पुनः हम पानी को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कर सकें। तो बिल्कुल सही इन्होंने कहा है। लेकिन सोनाली जी, जब बरसात का मौसम आता है तो खाने पीने की भी बड़ी इच्छा होती है, कुछ अलग अलग मस्त मस्त चीजें।
0: यानी अभी गर्मी में ना तला भुना खाने का मन नहीं होता है ना, बस ठंडा ठंडा खाने का मन होता है। पर जब बारिश झमझमाती बारिश होती है ना, उस वक्त पूरी हो, आलू की सब्जी हो,
1: अरे वाह सोनाली जी, अब तो आप और नाम मत लीजिए।
0: तो आज के हमारे जो उत्तर प्रदेश के हम प्रादेशिक व्यंजन में मक्खन मलाइयो और साथ में बेडमी पूड़ी और आलू की सब्जी, उसकी जो हमने व्यंजन का बोला था और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भी भेजे थे, तो मक्खन मलाइयो सर्दियों के मौसम में उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से वाराणसी, लखनऊ, कानपुर में मिलने वाली एक बेहद लोकप्रिय और स्वादिष्ट मिठाई है। इसे दिल्ली में दौलत की चाट भी कहा जाता है। ये इतनी
1: सोनाली जी, अब तो आप और नाम मत लीजिए।
0: तो आज के हमारे जो उत्तर प्रदेश के हम प्रादेशिक व्यंजन में मक्खन मलाइयो और साथ में बेडमी पूड़ी और आलू की सब्जी, उसकी जो हमने व्यंजन का बोला था और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भी भेजे थे, तो मक्खन मलाइयो सर्दियों के मौसम में उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से वाराणसी, लखनऊ, कानपुर में मिलने वाली एक बेहद लोकप्रिय और स्वादिष्ट मिठाई है। इसे दिल्ली में दौलत की चाट भी कहा जाता है। ये इतनी हल्की और मुलायम होती है कि मुंह में जाते ही घुल जाती है। दूध का चयन, इसे बनाने के लिए फुल क्रीम दूध या ताजी मलाई का इस्तेमाल किया जाता है। ओस के में पारंपरिक रूप से दूध को उबालकर ठंडा किया जाता है और रात भर खुले आसमान के नीचे ओस में छोड़ दिया जाता है और इसे मथते हैं और सुबह तक इस दूध को बहुत देर तक मथा जाता है, जिसके ऊपर बादलों जैसा हल्का झाग या फोम बन जाता है। स्वाद और सजावट, इस झागदार मलाई को अलग करके इसमें चीनी, इलायची, केसर और कटे

0: बादाम पिस्ता मिलाए जाते हैं और खाया जाता है। नेहा आपने खाई है मिठाई?
1: नहीं, मैंने खाई भी नहीं थी और सुनी भी नहीं थी, लेकिन आज रेसिपी सुनने के बाद, विधि सुनने के बाद बिल्कुल समझ आ गया है। और मुझे बिल्कुल वो दृश्य भी सामने आ गया है कि कैसी दिखती होगी और कैसी लगती
0: और
1: होगी।
0: वो ना दोने में जो खाते होंगे ना, तो बहुत ही मजा उसमें दुगना हो जाता होगा। और सचमुच मैंने पढ़ा है
1: हाँ,
0: इस बारे में, पर खाया नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सर्दियों के मौसम में हम बनारस जाएंगे और ये मक्खन
1: तभी ये
0: मलाइयों खा
1: खाया
0: के
1: जा
0: आएंगे
1: सकता है।
0: क्योंकि उसे ले नहीं जा सकते ना कहीं दूसरी जगह।
1: एक साथी ने लिखा है, उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक व्यंजन अपने अनोखे स्वाद और पारंपरिक तरीकों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें से मक्खन मलैया और बेडमी पूड़ी आलू की सब्जी विशेष रूप से पसंद की जाती है। मक्खन मलैया लखनऊ, ये लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों का शीतकालीन स्पेशल स्ट्रीट फूड है, जिसे निमिष या दौलत की चाट, जैसा कि हमने पहले भी कहा, के रूप में जाना जाता है। ये दूध की मलाई से बनी बेहद हल्की और झागदार रुई जैसी नरम मीठी डिश है। इसके अलावा इन्होंने बेडमी पूड़ी के बारे में भी लिखा है और आलू की सब्जी। आगरा, मथुरा, ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नाश्तों में से एक है, जो विशेष रूप से आगरा और मथुरा की गलियों में प्रसिद्ध है। बेडमी पूड़ी ये उड़द दाल की स्टफिंग वाली खस्ता और कुरकुरी तली हुई है। आलू की सब्जी इसके साथ मसालेदार

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल से, और आज का जो विषय रहेगा जीवन शैली और योग। दोस्तों, ये आपको हम बताना चाहेंगे कि श्रीमती शारदा अग्रवाल, जिन्होंने योग प्रशिक्षण मुंबई के 100 वर्ष पुराने योग प्रशिक्षण संस्थान से लिया है, वो संस्थान देश की जानी मानी योग गुरु श्रीमती हंसाजी जयदेव के मार्गदर्शन में संचालित होता है। तो श्रीमती शारदा अग्रवाल जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद राजेंद्र जी। सबसे पहले तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं विविध भारती का धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे दोबारा ये मौका विविध भारती ने दिया कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं एक प्रोग्राम में आप लोगों के बीच में आई हूँ और कुछ बातें हमने शेयर करी हैं, और आज दोबारा आमंत्रित करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
0: शारदा जी, जैसे कि आपने बताया कि आप पहले भी आ चुकी हैं, हमारे कुछ श्रोता जो गौर से उस प्रोग्राम को सुन चुके थे और याद होगा तो वो तो मुतासिर होंगे कि आज आप क्या क्या बताने वाली हैं। जैसे कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमारी चर्चा जारी थी कि आज का विषय क्या रहेगा, हम विषय सुनने वालों को बता चुके हैं। दोस्तों, आज का विषय है जीवन शैली और योग। तो शारदा जी, ये बताइए कि एक आम आदमी जब योग की बातें देखता है टेलीविजन पे और पढ़ता है उसके बारे में मीडिया के जरिए, तो उसके मन में ये बात उपजती है कि दरअसल ये योग है क्या? योग का जो एक वस्तुतः मीनिंग होता है जोड़, तो वो उसको समझने में एक आसानी हो, इसके लिए बताइए कि योग का योग दरअसल है क्या?
1: देखिए राजेंद्र जी, जैसे अभी आपने कहा कि योग का मतलब है जोड़, तो इसका सीधा जोड़ से बता दूं कि जोड़ होता है शरीर और मन का जोड़। पर हम यहाँ पर बहुत ही साधारण भाषा में योग को परिभाषित कर रहे हैं। तो योग का अर्थ होता है हमारा जीवन जीने का तरीका। आप किस तरह से अपनी रोज की दिनचर्या जीते हैं, कैसे आप खाते हैं, कैसे आप सोचते हैं, कैसे आपका मनोरंजन होता है, ये जो चीजें हैं हमारी दिनचर्या में, इसे हम साधारण भाषा में योग कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में रहना, कोई परिस्थिति यदि हमारे पास कठिन परिस्थिति भी आई है तो उस परिस्थिति में हमारा जीवन जीने का तरीका किस तरह है, वो भी योग के अंतर्गत आता है, उसे भी योग ही कहते हैं। आपका बिहेवियर क्या है उस समय, व्यवहार क्या है, इसे हम योग कहेंगे।
0: लेकिन योग का जब एक शब्द कोई सुनता है तो एक आम आदमी तो ये सोचता है कि भाई हाथ पांव की मुद्राओं को विशेष रूप से एकत्रित कर लेना, छोड़ देना, रिलैक्स कर देना, श्वास लेना, गहरी श्वास लेना, उसको फिर से छोड़ देना, वो तमाम चीजें योग में समाहित होती हैं। तो आपका क्या कहना है?
1: बिल्कुल सही, ये भी जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, पर ये योग का केवल एक चरण है जिसे हम आसन और प्राणायाम कहते हैं। पर योग का सबसे पहले जो मैंने अभी आपको

0: बताया कि जीवन जीने का तरीका योग है और इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, केवल आसन प्राणायाम नहीं।
1: जी, तो योग का दोस्तों जो दरअसल मीनिंग है ये देख लीजिए कि मानसिकता भी जुड़ी होती है शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ। तो हम आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले यहाँ संगीतमय वातावरण बनाना चाहेंगे, हम चाहेंगे आपकी पसंद का कोई अच्छा सा गाना यहाँ पर हो जाए।
0: तो देखिए जैसा कि आज का माहौल है उस माहौल में मुझे यही गाना गुनगुनाने का मन कर रहा है, जैसे मधुबन।

0: गाना शारदा जी वाकई आपने बहुत अच्छा सुनवाया। जो मधुबन खुशबू देता है यानी औरों के लिए जो खुशियां पैदा करता है दरअसल वही महान कहलाता है, और ये बात सहजता से हो तो ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन आपने कई बार सुना होगा कि दैनिक जीवन में हम योग को बार बार अपनाना तो चाहते हैं लेकिन उससे दूर भी भागते हैं क्योंकि अनभिज्ञता होती है, तो दैनिक जीवन में क्या महत्व आप पाती हैं योग का?
1: देखिए, सुबह से जब आपकी दिनचर्या शुरू होती है तभी से योग आप शुरुआत कर सकते हैं। पूरा 24 घंटे योग की स्थिति में रहना ही योग है। तो आप जैसे सुबह उठते हैं तो सुबह बिस्तर में उठने से पहले ही आप बेड पर कुछ स्ट्रेचिंग कीजिए, अपने हाथ पांव को थोड़ा सा सिकोड़िए, थोड़ा फैलाइए, थोड़ा पेट से सांस लेना, ये कुछ क्रियाएं जो आप बेड पर ही कर सकते हैं, और ये करके फिर आप भगवान को धन्यवाद देते हुए बिस्तर से उठें। और उस समय भी देखिए योग ही आता है, अचानक बिस्तर से उठना झटके से वो नहीं होना चाहिए। हमें एक बहुत ध्यान से शांत मन से उस समय भी उठना चाहिए, किसी जल्दबाजी में नहीं उठना चाहिए कि अभी मुझे बच्चों का टिफिन बनाना है या मुझे काम पे जाना है। तो एक झटके से उठते हैं जो हम, वो हमारे मन और शरीर दोनों पर उसका असर तुरंत पड़ता है,
0: प्रतिकूल होता है,
1: प्रतिकूल असर पड़ता है उसका। तो उस समय भी आपको ये ध्यान रखना कि एक शांत मन से भगवान को धन्यवाद करते हुए आप बिस्तर से उठिए। आप जब उठे हैं तो जाके आप पहले सबसे पहले थोड़ा गर्म पानी पीजिए, 2 ग्लास गर्म पानी आपने पिया, पानी पी के फिर आपने जो अपनी नित्य दैनिक हमारी क्रियाएं होती हैं वो करिए। उसको करने के बाद आप फिर जो भी अपना चाय वगैरह लेते हैं, यहाँ पर भी मैं आपको, जबकि स्वास्थ्य की बात हो रही तो मैं आपको जरूर कहूंगी कि सुबह जल्दी उठकर पहले चाय लेना हानिकारक होता है।
0: कहते हैं लोग बेड टी चाहिए।
1: जी हाँ, ये हानिकारक होती है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रात को हमने अपना जो रात का हमने डिनर लिया था उसके बाद अब जब हम खाना खा रहे हैं 7-8 घंटे का हमारा बीच में एक गैप

0: हो गया है,
1: फास्टिंग हो गया,
0: फास्टिंग हो गया है, तो उस समय इतनी देर में एकदम चाय लेना वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो अच्छा होगा कि आप कुछ हर्बल टी इस तरह का कुछ लें, या सुबह उठकर आप पहले कुछ 4-5 बादाम वगैरह ले लें या चने वगैरह ले लें पानी पी के, जो भी आपके माहौल में ठीक हो वो आप लेके फिर थोड़ी देर कुछ वॉक वगैरह करके आए, सुबह थोड़ी ताजी हवा लेके आए, उसके बाद आप हर्बल टी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपकी दिन की शुरुआत होना चाहिए।
1: जैसे कि आपने बताया था अभी कि हड़बड़ी में उठना नहीं चाहिए या किसी को जगाना भी नहीं चाहिए, तो कई बार हमने देखा है कि अचानक किसी का फोन बजा और वो व्यक्ति सोया हुआ है, अरे सुनो तुम्हारा फोन आया है, वो गहरी नींद में होता है, तो ये प्रक्रिया क्या उचित है?
0: जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ये उचित। उस समय भी हमारा, यदि हम धीरे धीरे योग को सीखते जा रहे हैं तो हमें उस समय भी संतुलित अवस्था में, शांत अवस्था में ही उठने की, कोई सामने वाला नहीं जानता है कि उसे कैसे उठाना है, पर आप जानते हैं कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो उस समय शांत मन से ही आपको सामने वाला एक्शन का रिएक्शन आपका होना चाहिए, शांत होना चाहिए आपको, शांति से आप उठिए, देखिए, हड़बड़ाहट आपके अंदर नहीं होना चाहिए।
1: जी जी जी। तो दैनिक जीवन में जो महत्व आपने बताया कि शुरुआत जो दिन की होती है वो इस तरह से करनी चाहिए कि मामला संतुलित भी रहे,
0: और इसके साथ ही जैसे मैंने बताया कि सूर्योदय के साथ ही हमारा दिन की शुरुआत हो जाना चाहिए। आजकल का जो समय चल रहा है उसमें लोग सूर्य उदय तो देखते ही नहीं है, पर दिन की शुरुआत सूर्योदय से ही शुरू हो जाती है, और यह चीज हमें प्रकृति से ही सीखने मिलती है। आपने देखा होगा पक्षियों को सुबह उठते ही उनकी चहचहाट आने लगती है, तो वो हमें इस बात को सिखाती है कि हमें भी इतनी ही जल्दी सुबह उठना चाहिए और सूर्योदय के साथ उठकर अपना दैनिक कार्य शुरू कर देना चाहिए। फिर जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आप सुबह कुछ हर्बल टी लीजिए, उसके बाद कुछ वॉक कीजिए, हमेशा एक नियम बनाइए कि आप जो भी कुछ खाने वाले हैं उससे पहले कुछ शारीरिक क्रियाएं आपकी होना चाहिए, शारीरिक या एक्सरसाइज आपकी होना चाहिए, कुछ आसन वगैरह करके आइए, या आप आसन नहीं कर सकते, आपके पास बहुत टाइम नहीं है तो आप थोड़ा सा वॉक करके आइए, घर पर ही चाहे तो आप वॉक कर लीजिए। उसके बाद आपका नाश्ता 8 बजे तक, तो सुबह का पहला आहार हमारा जो होता है वो 8 बजे हो ही जाना चाहिए।
1: अच्छा
0: जी,
1: देखिए आपने एक बात बताई कि सुबह उठने की जो प्रक्रिया है वो बहुत संतुलित होनी चाहिए, लेकिन ये हमने सुना है वो कितना सच है और कितने लोग उसका पालन करते हैं? अधिकतर जो शास्त्रीय पुट अपने जीवन में रखते हैं, क्लासिक अंदाज में जीना जानते हैं और शास्त्रों में यकीन रखते हैं, वो तो जानते हैं कि हमारा जो जगना होता है या जागना होता है, सूर्योदय के पूर्व यदि आप जग गए वही जागना कहलाता है।
0: जी हाँ।
1: तो आप कितनी सहमत हैं इस बात से?
0: देखिए, कोशिश तो हमारी हमेशा यही होना चाहिए और इसी जीवन को ही, इसी दिनचर्या को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि एक समय आता है जब आपने शरीर को, आप अपने इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं, आप इसे इग्नोर करते जाते हैं, पर एक स्थिति ऐसी आती है शरीर की जब आपको शरीर खुद आपसे जबरदस्ती इस चीज की डिमांड करता है कि आपको तो उठना ही है जल्दी, क्योंकि आप रोग आपके शरीर में पकड़ लेंगे यदि आप एक संतुलित जीवन नहीं जिएंगे, तो एक समय ऐसा आता है कि कुछ बीमारियां हमारे अंदर आ ही जाती हैं, फिर हमें डॉक्टर ही कुछ सलाह देते हैं और हम खुद उस तरफ आगे बढ़ते हैं, तो वो समय आने से पहले यदि हम इस दिनचर्या को अपनाएं,
1: जाग जाएं
0: हमारी सही मायनों में आंख खुल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी।
1: ये आपने अच्छा कहा कि संतुलन बना होना चाहिए। तो हमारे प्रोग्राम में भी जब बातचीत ज्यादा होने लगती है तो हम कोशिश करते हैं कि सुनने वालों को संगीत वातावरण की ओर ले चलें किसी गाने के साथ।
0: जी, तो मैं आपको फिर इसमें भी आपको एक दूसरा गाना सुनाना चाहूंगी, बहुत पुराना गाना है, फिल्म अनाड़ी का है, राज कपूर का, के ऊपर फिल्म आया था, आप सभी को ये गाना मुख पे था उस समय, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल

0: दोस्तों, गीत वाकई बहुत अच्छा था और प्रेरणादायी था कि किसी के लिए जीना ही जीना कहलाता है और जीना इसी का नाम होता है। हमारे साथ आज के सेहतनामा कार्यक्रम में इस समय मौजूद हैं योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल और इनसे बातचीत जारी है जीवन शैली और योग विषय पर। तो शारदा जी, गीत के पहले हमारा जिक्र चल रहा था कि आहार किस तरह का होना चाहिए और दैनिक जीवन में जो महत्व है उसी पर से ये बिंदु आकर निकलता है कि आहार ही हमारा एक मुख्य आधार होता है।
1: जी हाँ, आहार बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आहार केवल आपके शरीर पे नहीं, आपके मन पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है कि आप कैसा भोजन कर रहे हैं उससे आपकी मानसिक स्थिति भी उस पर निर्भर करती है। जैसे आप जितना सात्विक भोजन, जितना सादा आप खाना खाएंगे उतना आपका मन शांत रहेगा, जितना आप मिर्च मसाले तले हुए भोजन खाएंगे उतना आपका दिमाग उतना हाइपर रहता है, उतना हमारे माइंड को एनर्जी आती, तो माइंड में लगा रहता है कि आप क्या करें, शांत स्थिति में माइंड नहीं रह पाता है। तो योग में सात्विक भोजन को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है कि आप कोशिश करें कि सात्विक भोजन करें हम, और साथ ही ये हमारा भोजन का जो अवधि है वो हर चार चार घंटे की होना चाहिए।
0: जैसे आपने प्रातः काल का तो बताया था, 8 बजे नाश्ता,
1: 8 बजे तक आपका नाश्ता हो ही जाना चाहिए, फिर दोपहर के 12 बजे आपका दोपहर का खाना हो जाना चाहिए, शाम को 4 बजे का समय वापस आपके नाश्ते का टाइम होता है जब आपका नाश्ता होना चाहिए, और फिर से 7:30, 7:30, 7:30 या ज्यादा से ज्यादा 8 के अंदर तक आपका खाना, रात का खाना हो ही जाना चाहिए। पर यहाँ पर मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने कहा था कि सूर्योदय के साथ हमारा दिन शुरू होना चाहिए और सूर्यास्त के साथ हमारा दिन खत्म होना चाहिए, तो कोशिश यह होना चाहिए कि जैसे ही सूर्यास्त होता है आपका डिनर उस समय हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। पर होता यह है कि आजकल की जो हमारे
0: जनरेशन
1: है, जो हमारा काम करने का समय है, हर जगह पर अलग अलग है, तो हम नहीं कर पाते हैं, ये चीज नहीं हो पाती है। तो भी कोशिश कीजिए कि हम 8 बजे तक तो खा लें, और यदि आप 8 बजे तक खाना नहीं खा पा रहे हैं, आप बहुत लेट खाना खा रहे हैं, तब आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारा खाना पूरा एक फुल मील नहीं होना चाहिए वो खाने में।
0: अच्छा।
1: फिर हमारा एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए का, मान लीजिए आपने दोपहर के खाने में दाल रोटी खाई है तो रात के खाने में दाल चावल खा लीजिए, या सब्जी रोटी दोपहर को खाई है तो अभी दाल चावल खा लीजिए, या खिचड़ी खा लीजिए, या मौसम के अनुसार भी आप अपने खाने में थोड़ा हेर फेर कर सकते हैं। जैसे विंटर का टाइम है, ठंड का मौसम है, तो आप रात को बहुत लेट हो गया है तो आप सूप पी के सो सकते हैं, या गर्मी का टाइम है तो आप कढ़ी चावल बना सकते हैं, या कर्ड राइस जिसको कहते हैं हम, उस तरह का भोजन कुछ बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको पूरा फुल मील दाल चावल सब्जी रोटी, फिर हम कुछ चटनी पापड़ इस तरह का भी भोजन कर लेते हैं सबके साथ बैठ के, तो वो खाने पर हमको ध्यान रखना चाहिए।
0: लेकिन क्या दिन के खाने में ये उचित है?
1: दिन में हम खा सकते हैं।

0: हैं क्योंकि हम दिन के खाने के बाद हमको डाइजेशन के लिए, हमको पाचन के लिए बहुत समय मिलता है, पर रात को आप एक तो बहुत देर से खाना खा रहे हैं, फिर उसके बाद आप तुरंत सो जाएंगे, तो फिर वो डाइजेशन कैसे होगा, फिर नींद हमारी उस समय खराब, क्योंकि आपने तो शरीर को एक काम दे दिया है ना पाचन का, उसमें फिर आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी। तो फिर एक खाना कोशिश तो जल्दी खाने की है पर नहीं खा पा रहे हैं, तो आप एक कॉम्बिनेशन खाने का रखिए, और वो खाना बहुत हल्का होना चाहिए, वो खाना बहुत मिर्च मसालों से रहित होना चाहिए, उसमें तेल मिर्च मसाले नहीं होना चाहिए, और क्वांटिटी उसकी मात्रा भी कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने कहा कि कढ़ी चावल खा लीजिए या दाल चावल तो आप उसे भरपेट खा रहे हैं, जी नहीं, क्योंकि आप लेट खाना खा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में ये एहसास होना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो फिर आप सिर्फ थोड़ा सा इसलिए खा लीजिए कि मुझे नींद आ जाए, क्योंकि जनरली हम कहते हैं ना कि मैं नहीं खाऊंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, तो आप कोशिश करके थोड़ा सा खाइए, पर बहुत ज्यादा मात्रा में खाना देर रात को वो ठीक नहीं होगा।
1: जीवन शैली से जुड़ी कई बातें हैं जिसमें कई पेय पदार्थ जुड़े हैं, जैसे प्रमुख होता है पानी। अब पानी पीने की अवस्था ढुलमुल हो जाती है, खाना खाया पानी पी लिया, एक घूट खाया फिर पानी पी लिया, तो योग के माध्यम से आप क्या हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगी कि भोजन करते समय और पानी पीते समय क्या अंतर और किस तरह की शैली अपनानी चाहिए?
0: बहुत अच्छा सवाल किया राजन जी आपने, मैं भी चाहती थी कि खाने के साथ साथ मैं आपको पानी के बारे में भी बताऊं, क्योंकि आजकल लोग पानी के बारे में, लोगों का कुछ ऐसा हो गया कि कहा जाता है कि पानी पियो तो कुछ ज्यादा ही पानी पीते हैं, पर उसका हमारे किडनी पर भी असर पड़ता है, बहुत ज्यादा पानी पीना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमारा शरीर हमको हमेशा सिग्नल देता है कि हमको क्या चाहिए है, आपका शरीर आपको बताएगा, बस हमें अपने शरीर की भाषा को समझना आना चाहिए।
1: बिल्कुल सही।
0: तो जब आपको प्यास लगे आप पानी पीजिए, पानी पीने का भी बहुत सरल नियम है, आप खाना खा रहे हैं, खाने से आधा घंटे पहले आपका पानी एक बार आपको पीना चाहिए, थोड़ा पानी आप पीजिए, फिर खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के आधा घंटे बाद या हो सके तो एक घंटे बाद आप पानी पीजिए। उसके साथ ये ध्यान रखना चाहिए, जहाँ तक पानी की बात आई है तो मैं ये भी कहूंगी कि पानी जैसी कोई चीज हम खाने के साथ, जैसे आप सुबह का नाश्ता, मैंने कहा सुबह के नाश्ते में जैसे आपने नाश्ता लिया तो आप हर्बल टी ले सकते हैं, वो एक पानी का विकल्प है जो आपको उसका एहसास कराएगा, पर वो लीजिए आप। दोपहर के खाने में फिर आपको ऐसा लगता है मुझे तो पानी पीना है घुट भर, तो आप छाछ पी सकते हैं, आप छाछ लीजिए। फिर शाम के नाश्ते के समय फिर हमको लगता है कि नहीं खाने के बीच में कुछ पानी चाहिए, तो आप नींबू पानी ले सकते हैं या हर्बल टी वापस बना के पी सकते हैं। और रात के खाने में जैसे मैंने बताया आप सूप पी सकते हैं, इस तरह का कुछ भी पेय चीज हम ले सकते हैं, पर पानी जो चीज है वो हमें खाने के बीच में नहीं लेना है, खाने से आधा घंटे पहले और खाने के आधा घंटे बाद।
1: ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और अगर लग रहा है कि कोई गरिष्ठ भोजन ही खाना पड़ रहा है तो एक आध घूट पानी ले सकते हैं, लेकिन ग्लास भर के आप पी जा रहे हैं वो गलत बात है।
0: जी नहीं, बिल्कुल वो तो नहीं लेना चाहिए, इसीलिए कहा गया है कि हमें बहुत मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाना चाहिए,
1: ताकि बीच में पानी की आवश्यकता ही
0: पानी की आवश्यकता ही ना हो, इसीलिए हमारा भोजन जितना सात्विक होगा तो आप गलत चीज की तरफ जाएंगे ही नहीं। ये सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि क्यों हमें ये करना चाहिए तो क्यों ये किया जाता है।
1: और कहा यह भी जाता है कि भोजन करते समय केवल भोजन कर रहे हैं यही ध्यान में होना चाहिए, न कि मोबाइल टीवी वगैरह पे आपका ध्यान आकर्षित हो, तो आपकी क्या राय है?
0: बिल्कुल, आज के समय में तो यही देखा जाता है कि लोग खाना खाते समय या तो मोबाइल में व्हाट्सएप देखते रहते हैं या तो टीवी सामने चालू होता है, पर उन्हें ये मालूम ही नहीं रहता है कि वो क्या खा रहे हैं
1: और कितना खा रहे
0: हैं, कितना खा रहे हैं, उस खाने का स्वाद क्या है, बनाने वाले ने कितने ध्यान से प्रेम से उस खाने को बनाया है, तो उसी प्रेम से आपको उस खाने को खाना चाहिए, खाने के बाद खाने वाले की थोड़ी सी प्रशंसा कीजिए, ये कुछ नियम है। पर यदि हम टीवी और व्हाट्सएप पे लगे हैं तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा हमने क्या खाया, और इसीलिए पहले के समय में भी यही कहा जाता था कि खाना खाने के समय बोलना नहीं चाहिए, शांत भाव से खाना खाइए, यानी होना तो ये चाहिए कि हमें आपस में भी बात नहीं करना चाहिए, पर आज स्थिति ऐसी है कि लोग बात तो नहीं करते पर वो टीवी और उसमें इतने मस्त हो जाते हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि वो क्या खा रहे हैं।
1: बिल्कुल, वो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए भोजन के प्रति।
0: जी जी।
1: तो अब हम चाहेंगे कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन हो वो थोड़ी सी अपनी चर्चा को विराम पर हो, और हम विराम देते हुए आपसे गुजारिश करेंगे कि अपनी पसंद का कोई गाना यहाँ पर आप सुनवाइए हमारे सुनने वालों को।
0: इसका मुझे फिल्म का नाम तो नहीं मालूम है, पर फिर भी मैं गाने के बोल जरूर गुनगुनाऊंगी। तुम

0: शारदा जी, वाकई में गाना आपने अच्छा सुनवा दिया कि किसी और का सहारा बने तो हमें अपना महत्व भी पता चलता है और इंसान होने का एक जो संकल्प करते हैं वो इंसानियत भी पूरी होती है। दरअसल हमारी बातचीत चल रही थी आहार पर और अब कई इसमें मुख्य बिंदु जुड़ते हैं। दैनिक जीवन की हमारी जो दिनचर्या होती है उसमें योग का जो महत्व दर्शाते हैं। आहार के बाद विहार आता है, आचार आता है, विचार आता है, तो हम चाहेंगे कि विहार का पूरा विस्तार बताइए कि आहार के साथ साथ विहार कैसा होना चाहिए।
1: राजेंद्र जी, जैसे मैंने बताया कि योग कार्यक्रम की शुरुआत में प्रश्न किया था कि योग क्या है, तो योग इन्हीं चार बिंदुओं से होके जाता है, आहार, विहार, आचार, विचार। ये चार योग के स्तंभ हैं
0: जी जी,
1: जिन पर सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे जागरूकता की। मतलब इन चारों चीजों पर हमारा जागरूक होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपने खाने पे प्रश्न किए मुझसे, तो उस पे मैं यही कहूंगी कि हमारा हर चीज पे पूरे 24 घंटे हमको जागरूक होना बहुत जरूरी कि आप क्या खा रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये सब चीज पर हमारा ध्यान होना चाहिए। अभी आपने जैसे बात करी थी आहार की, अब इसके बाद आती है बात विहार की
0: जी।
1: विहार मतलब की रिक्रिएशन बोलते हैं या मनोरंजन कह सकते हैं या और भी इसे शिथिलीकरण, अपने आप को थोड़ी देर के लिए जो हमारी रोज की दिनचर्या से हट के कुछ रिलैक्सेशन, एंटरटेनमेंट करना थोड़ा सा। तो जनरली हम क्या करते हैं कि एंटरटेनमेंट यानी कि हम टीवी देखते हैं। यदि हम लोगों से ये पूछा जाए कि आप क्या करते हैं तो वो बोलते हैं हम तो नहीं तो टीवी देखा। बिल्कुल टीवी देखिए, कुछ अच्छा देखिए, कुछ सकारात्मक देखिए, पर उसके साथ साथ विहार में ऐसी बहुत सी कई चीजें भी आती हैं। जैसे सबसे पहले बच्चों के साथ खेलना, आप बच्चों के साथ खेलेंगे तो आपके अंदर बहुत सकारात्मक चीजें आती हैं।
0: अच्छा,
1: तो बच्चों के साथ खेलना, थोड़ा कभी बड़े बूढ़ों के साथ बातचीत करना
0: जी,
1: वो भी हमें बहुत रिलैक्स करता है। विहार में मैं बात करूंगी रिकेशन की, शिथिलीकरण की, कि कैसे हमें अपने आप को थोड़ा सा मनोरंजन करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बात करूंगी केवल टीवी देखना ही मनोरंजन नहीं होता है कि आपने टीवी में कुछ देखा तो हमारा एंटरटेनमेंट हो गया। बिल्कुल देखिए, सकारात्मक चीजें देखिए टीवी पर इसके साथ साथ यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ विहार के अंतर्गत, जैसे कि हमारा सबसे पहले हमारा एक शौक होना चाहिए। जिंदगी में हमारे एक शौक रखना बहुत जरूरी है। यदि हम शौक की बात करते हैं तो अधिकतर लोग यही बोलते हैं, हाँ मुझे पहले ये चीजें अच्छी लगती थी, अभी तो टाइम नहीं मिलता। पर सभी के पास ये रत्न, अभी तो समय नहीं, हाँ मुझे ये अच्छा लगता था। यदि आप घर पे भी महिलाओं से ये पूछो तो वो बोलते नहीं हम, पर देखिए यही समय है जब कई बार हमारे जो युवावस्था की चीजें जो हमें अच्छी लगती थी पर समय के साथ वो छूट जाती हैं, आप फिर से उसे शुरू कर सकते हैं। फिर से जो भी आपको, मान लीजिए आपको बागवानी पसंद है, आपको कोई चित्रकला पसंद है या आपको किसी भी प्रकार का शौक है, म्यूजिक का, किताब पढ़ना, कोई भी।

0: एक शौक होना ही चाहिए, और ऐसा नहीं कि वो शौक बस हम बोलने के लिए है कि हाँ मुझे इस चीज का शौक है, वो हर रोज आपके दैनिक दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। आपके पास उसके लिए आधा घंटे का या जो भी जितना भी आप टाइम निकाल सकते हैं उसके लिए आप एक टाइम निकालिए और उसमें वो अपने शौक को जरूर पूरा कीजिए, क्योंकि वो हमारे इमोशंस को बहुत हमारे इमोशंस को डाइवर्ट करने में बहुत मदद करता है। आप अपने काम के दौरान बहुत थक गए हैं या कुछ हमारे लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव होते हैं, कई बार हम बहुत किसी बीमारी से भी जूझ रहे होते हैं तो हम एक अवसाद की स्थिति में जाते रहते हैं, पर यदि आप एक शौक है आपको और उस शौक में थोड़ी देर आप उस चीज को करते हैं तो वो आपके लिए बहुत मददगार, आपके लिए एक दवाई का काम करता है।
1: ये आपने बहुत अच्छी बात बताई शारदा जी कि जैसे आपने कहा शौक होना चाहिए, यानी दोस्तों रचनात्मक आपका एक विहार होना चाहिए, रचनात्मक बातों की ओर आपकी जो हलचल होनी चाहिए वो अगर बंद पड़ गई है तो आप पास्ट में जाइए, अपने शौक को फिर से जिंदा कीजिए और वर्तमान में लाइए। और शारदा जी हम चाहेंगे कि आचार पर अगर बात करें तो तीसरा बिंदु होता है आचार, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए आचार में तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण आता है हमारा खुद के प्रति, हमारी फर्स्ट ड्यूटी जो है वो हमारा खुद के लिए है। यहाँ पर कई बार जब हम ये बोलते हैं खुद के बारे में सोचिए, खुद के लिए समय निकालिए, तो कई बार ये सुनने में ऐसा लगता है कि शायद हम बहुत स्वार्थी हो गए कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं, पर इसे आप स्वार्थी होना न समझिए, ये बहुत जरूरी है। यदि आप अपने परिवार का, अपने समाज का, किसी भी चीज का यदि ध्यान रखना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आप अपना ध्यान रखिए। तो सबसे पहले आपका अपनी प्रति जो भी कर्तव्य है उसे पूरा कीजिए, फिर उसके साथ हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार, ये सभी चीजें हमारे आचार के अंतर्गत आ जाती हैं। हमारी जो रोज की दिनचर्या है वो भी हमारे हमारे आचार में ही आती है कि हमारा कैसा दिनचर्या होना चाहिए। तो ये यहाँ पे यही मैं कहूंगी कि सबसे पहले तो हमारा एक टाइम टेबल होना चाहिए खुद के लिए,
1: अनुशासित
0: टाइम टेबल होना चाहिए, क्योंकि हम ये बोलते हैं जबकि हमें पास समय नहीं है, वो इसीलिए होता है क्योंकि हम कोई हमारे पास एक व्यवस्थित टाइम टेबल हम नहीं बनाते। तो ये बहुत जरूरी कि आप एक सबसे पहले एक दिनचर्या बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल में हर चीज के लिए समय निकालिए, उसमें अपने लिए भी समय रखिए और दूसरों के लिए भी समय रखिए। और साथ में जैसे मैंने बताया आपको कि हमें दूसरों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस पे भी इस चीज में ध्यान रखना चाहिए। दूसरों के साथ देखिए जब भी हमारे आपसी संबंध होते हैं तो हमें अपने अपेक्षाओं को दूर रख के वो संबंध बनाना चाहिए। जब भी हम कोई काम करते हैं किसी के साथ, दूसरे के साथ, किसी के लिए हम कुछ काम करते हैं तो हमारी कुछ अपेक्षाएं उससे तुरंत जुड़ जाती हैं और हम चाहते हैं कि मैंने ये किया है तो ये भी ये मेरे लिए करे। तो हमारा इस समय ये ध्यान होना चाहिए हमारे व्यवहार में कि आपका अपेक्षाएं उस किसी के प्रति नहीं होना चाहिए, आपको वो काम निस्वार्थ भाव से करने की आदत होना चाहिए।
1: जी जी जी।
0: और ये चीज आपको तनाव रहित भी रखेगी, जब आप किसी से अपेक्षा नहीं रखेंगे तो जो भी आप कार्य करेंगे वो बहुत तनाव रहित होकर कार्य होगा।
1: आपका कहने का तात्पर्य ये है कि निर्लिप्त भाव से यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं किसी के प्रति तो उसमें अपेक्षा नहीं ही होगी और काम भी पूरा होगा और आपका आचरण भी शुद्ध होगा।
0: शुद्ध होगा।
1: जी जी।
0: वही मैंने कहना चाहती हूँ कि आप

0: अपेक्षा नहीं रखेंगे तो जो भी आप कार्य करेंगे वो बहुत तनाव रहित होकर कार्य होगा।
1: आपका कहने का तात्पर्य ये है कि निर्लिप्त भाव से यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं किसी के प्रति तो उसमें अपेक्षा नहीं ही होगी और काम भी पूरा होगा और आपका आचरण भी शुद्ध होगा। जी जी,
0: वही मैंने कहना चाहती हूँ कि आपका दूसरे के प्रति व्यवहार भी अच्छा होगा और आप खुद भी बहुत शांत महसूस करेंगे जब इन सब चीजों को अपेक्षाएं या निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं।
1: तो अभी हम स्वार्थ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम अपेक्षा जो हमसे कर रहे हैं श्रोता कि भाई बातचीत के साथ साथ गीत कहाँ गया, तो उसी भाव को यहाँ पर उपस्थित करते हुए आपकी पसंद का अगला गाना जरूर सुनेंगे।
0: फिल्म का नाम अमृत है और गाना है जिंदगी।

0: एक बहरा, एक अंधा, एक लंगड़ा और एक भिखारी जंगल में जा रहे थे। चलते चलते बहरे ने कहा,
1: अरे दोस्तों रुक जाओ जरा, मुझे चोरों के आने की आवाज सुनाई दे रही है।
0: तो अंधे ने कहा,
2: अरे मूर्ख तुझे आवाज सुनाई दे रही है, मुझे तो चोर

0: आठवीं मंजिल पे रहते थे। मियां दफ्तर जाने के लिए घर से निकला, नीचे सड़क पर आकर उसे याद आया, अरे मेरा बटुआ तो ऊपर रह गया। उसने नीचे से आवाज लगाई, बेगम, अरे बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंकिए। बेगम ने कहा,
1: क्या कहा, जोर से बोलिए हुजूर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
0: मियां के गले में दूरबीन लटकी थी, उसे दूर की सूझी। उसने फौरन दूरबीन आंखों पे लगाई और अपनी बेगम का नूरानी चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर कहा, बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंक दीजिए।
2: तो दोस्तों, गीत कैसा लगा आपको? जिंदगी वाकई में एक लतीफा है, यानी हंसने हंसाने की बातें हैं, तभी तो जीवन शैली हमारी पूरी तरह से जागरूक बनेगी और तंदुरुस्त बनेगी। जीवन शैली और योग विषय पर हमारी चर्चा जारी है आज के सेहतनामा कार्यक्रम में, सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल के साथ। शारदा जी, अब हम चाहेंगे कि आहार विहार आचार के पश्चात अब विचारों की बारी है, तो हमारे विचार और योग का तालमेल कैसे होना चाहिए?
3: देखिए, विचार तो हमारे हर पल हमारे दिमाग में चलते ही रहते हैं,
2: प्रतिपल
3: विचार आते हैं, पर और यदि हम उन विचारों पर गौर करने लगे तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे। तो हर पल जो भी विचार आ रहे हैं उनको छोड़ते जाइए। हर एक विचार के बारे में सोचना जरूरी नहीं है कि आप हर एक विचार को सोच रहे हैं, क्योंकि अधिकतर विचार हमारे उसमें नकारात्मक ही होते हैं। तो अनावश्यक, यहाँ पर मैं आपको यही बोलूंगी, अनावश्यक विचारों को त्यागना, इसकी आदत हमको होनी चाहिए। उसे हर एक विचार का

0: विश्लेषण करना ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर जैसे हमने शुरू में बताया था कि आसन प्राणायाम बहुत महत्व करता है। यदि आप रोज आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो ये आपको बहुत मन में एक स्थिरता आती है और धीरे धीरे विचार जो है वो हमारे कम आने लगते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप नियमित आसन और प्राणायाम करें। इसके साथ ही सकारात्मक विचारों की तरफ ज्यादा ध्यान दें। इसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताऊंगी कि आप सुबह से लेके शाम, दिन भर जो आपका रूटीन होता है, आप कार्य करते हैं, घर पर रहते हैं या बाहर, जो भी आपका ऑफिस का रूटीन है, जो भी, तो आप जब रात को सोने जाते हैं, सोने से पहले आप एक डायरी बनाइए और एक बार आप बेड पर ही रिफ्लेक्शन कीजिए। ध्यान कीजिए कि सुबह जब आप उठे थे उसके बाद से लेके अभी तक आपका दिन कैसा बीता,
1: क्या क्या किया,
0: क्या क्या किया आपने। हर छोटी चीज पर आप ध्यान लेके जाइए और आप ध्यान करिए और उस समय आपको उसके बाद अपनी डायरी पे 10 कम से कम ऐसी चीजें लिखनी है जो पॉजिटिव हो, जो सकारात्मक हो, जो आपको अच्छी लगी हो दिन भर में। और ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं क्योंकि हम उस पर गौर नहीं करते हैं, हमारा ध्यान अधिकतर नकारात्मक चीजों पर जाता है। पर आप जब एक बार सुबह से लेकर रात तक के अपने दिनचर्या पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिल जाएंगी। उसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं, जैसे आपने खाना खाया, खाना कुछ आपका मनपसंद खाना आया, आपको कैसा फील हुआ, आप बहुत दिन बाद किसी अपने दोस्त से मिले हैं, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, या आपके बॉस ने आपको कुछ छोटी सी चीज ही बोली होगी, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। शायद सामने वाले के लिए उसके लिए कोई महत्व नहीं होगा, पर आपके लिए वो बात बहुत महत्व रखती होगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को आपको एक डायरी बनाना है और उसमें 10 चीजें आपको लिखने की आदत होना ही चाहिए। अच्छा। कि रोज हमें कोशिश करना, शुरुआत में हो सकता है आपको 10 चीजें ऐसी नहीं मिले, पर बाद में धीरे धीरे आपको वो चीजें 10 से ज्यादा हो जाएंगी जब आप एक डायरी बनाने लगेंगे। हर रोज लिखिए क्या आज मेरे साथ क्या अच्छा हुआ।
1: अच्छा, उसमें कई बार ऐसा विचार भी जो दिन में आ चुका है कि फला फला ने मेरे साथ ऐसा किया है, अब मैं उसे ऐसे सबक सिखाऊंगा, तो ये विचार भी तो उसमें शामिल है।
0: नहीं नहीं, हमें उसको इग्नोर करने की आदत डालना है, वही तो योग है। यही अवेयरनेस की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। हमें ये अवेयरनेस रखना है कि हमें सकारात्मक चीजों को सोचना है, हमें हर पल अपनी जागरूकता पर ध्यान रखना है। योग का दूसरा नाम ही जागरूकता है। तो अपने विचार पर आपको बहुत जागरूक होना है, नकारात्मक चीजों पर आपका ध्यान ही नहीं जाना चाहिए, उसे आपको इग्नोर करते हुए केवल अच्छे विचारों पर ध्यान रखना है, वही आपको सकारात्मकता की ओर लेके जाएंगे।
1: वो टेक्निक जो आप बता रही थी, उसमें डायरी में 10 बातों को नोट कर लिया।
0: जी हाँ, उसे हर रोज लिखते जाइए, धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व में वो चीज आ जाएगी, आपका माइंड इस तरह से सेट हो जाएगा कि कोई भी चीजें आपको परेशान करेंगी ही नहीं,
1: विचलित करेंगी नहीं।
0: आप किस, क्योंकि हमारा स्वभाव क्या होता है, हम कभी किसी से मिलते हैं तो हमें किसी की बात बुरी लग जाती है, या हम कहीं गए हमें वहां पर कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी तो हम कि नहीं वो चीज अच्छी नहीं थी किसी से मिलके, या कोई भी चीजें हमको विचलित कर देती हैं। पर जब हम इस तरह की एक आदत अपने आप में डाल लेते हैं तो हमें ये सब चीजें विचलित नहीं करती हैं जल्दी से।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि आपने अपने विचारों को वो आदत डाल दी है।
1: ये बात सही है, और उन्हीं विचारों को जब आप बार बार पढ़ेंगे, लिखते जाएंगे, फिर पढ़ेंगे, एक दिन वो आपके स्वभाव में शामिल हो जाते हैं।
0: जी हाँ बिल्कुल, वही मेरे भी कह रही हूँ कि आपके व्यक्तित्व में वो आ जाए, वो आपका स्वभाव बन जाएगा।
1: बिल्कुल, अभी हमारे स्वभाव की बात को हम और करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ लोग जो है योग को जो प्राथमिक अवस्था होती है उसको तो अपना लेते हैं किसी से सीख कर, कि भाई सुबह उठकर जैसे आपने बताया कि दिनचर्या में ऐसे उठना है, ऐसे काम करना है, तो योग के कुछ एडवांस चीजें अगर किसी को सीखना हो, जानना हो, जो स्वास्थ्य पर भी अनुकूल असर डालती हो, तो उसके लिए किसी प्रशिक्षक के पास जाना चाहिए या देखकर सुनकर ही सीख लेना चाहिए।
0: देखिए बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तो मैं आपको जरूर बहुत ध्यान से बोलूंगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल लोग किताबों में पढ़ के या टीवी में देखकर कुछ चीजें करना शुरू कर देते हैं, पर हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर एक व्यक्ति अलग अलग है और हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है। ये जरूरी नहीं है कि जो चीज, जो आसन आपके लिए महत्व रखता है वो दूसरे के लिए भी रखता हो। क्यों, आपका शरीर अलग है, आपको क्या बीमारी है, आपका शरीर की स्थिति कैसी है, इसलिए वो आसन आपके लिए भी करना ठीक होगा ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए यहाँ पर मैं बहुत ध्यान से कहूंगी कि जरूरी है कि जब आप किसी प्राथमिकताओं को के आगे तरफ जा रहे हैं योग के लिए, तो आप किसी प्रशिक्षक से, किसी योग टीचर से उसकी शिक्षा लीजिए, उसे सीखिए और फिर ही उसे अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए।
1: हो सकता है योग के कुछ प्रकार किसी व्यक्ति को सूट ही ना करे और करता जा रहा हो।
0: जी हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग है, हर एक व्यक्ति के लिए

0: सभी चीजें अलग अलग होती हैं, इसलिए हमें किसी का देख कर वही चीजें करना हमारे लिए सही होगा ये गलत है।
1: बिल्कुल, अब गलत बात को तो गलत कहेंगे और सुनने वाले सही बात को सराहेंगे। और सही बात तो ये है कि यहाँ पर हमारी बातचीत रुकेगी और आपकी पसंद का एक गाना होगा।
0: तो यहाँ पर भी मैं एक ऐसा ही गाना सुनाऊंगी जो आपको ताजगी से स्फूर्ति से भर दे। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, कभी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो।
1: तो बातों बातों में फिल्म का ये नगमा हम आपको सुनवाने जा रहे हैं।
0: उठे सबके कदम देखो रम

0: रम पम पम हंसो और हंसाया करो,
1: उठी सबके कदम देखो रम पम पम आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम रम पम पम।
2: शारदा जी, गीत वाकई बहुत ही उल्लासित कर देने वाला, कदमों को थिरका देने वाला आपने सुनवाया, स्फूर्ति वाकई आ गई है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि योग की कुछ ऐसी टिप्स जो सुबह उठने से लेकर, जैसे कई लोग ऑफिस में कार्यालय में काम करते हैं, थकान सी हो जाती है तो वो तो बार बार अपना कार्यालय छोड़ के योग सीखने नहीं जा सकते, लेकिन कार्यालय में रहते हुए क्या कर सकते हैं कि आधे पौन घंटे के बाद या दो घंटे के बाद उनमें एक ऊर्जा बनी रहे।
3: बहुत अच्छा प्रश्न किया राजेंद्र जी।

0: क्योंकि आज के समय में सभी ये लोग कहते हैं कि नहीं, मैं बहुत बिजी हूं, मुझे तो टाइम नहीं मिला। पर आप अपने घर पर यदि कोई महिला है या जो भी पुरुष हैं ऑफिस में हैं, तो आप वहां पर भी अपने काम के दौरान योग कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर भी हम जो योग की बात कर रहे हैं वो गृहस्थी योगा की बात कर रहे हैं, कोई हम साधु संन्यासियों वाले योगा की बात नहीं कर रहे हैं, हम गृहस्थ योग की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने राजेंद्र जी कहा कि ऑफिस में है तो क्या करें, तो देखिए ऑफिस में है तो आपको मैंने जैसे पहले बताया कि जागरूक होना जरूरी है। आप बैठे हैं अपने कुर्सी पर तो कुछ देर के लिए ये ध्यान रखें कि बहुत देर यदि आप 3-4 घंटे से लगातार कुर्सी पर बैठे हैं तो आप एक चक्कर लगा के आइए, क्योंकि लगातार बैठना या लगातार खड़े होना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। तो ये आपको जागरूक होना, अवेयरनेस रखनी होगी कि यदि आप बहुत देर बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, बहुत देर खड़े हैं तो बैठ जाइए। फिर आप यदि खाने का वक्त हो गया है, आप खाना लेने वाले हैं, तो आप यदि वहां पर, हमारे लिए आसन करना सही नहीं है, जैसे मैंने बताया कि खाने से पहले आसन करना चाहिए, पर हम ऑफिस में नहीं कर सकते। यदि ऑफिस में आपकी 4 मंजिल है तो आप 4 फ्लोर चढ़ के आ जाइए, उसके बाद अपना लंच लीजिए, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। और खाने के बाद जैसे अब हम वहां पे तो हम नहीं आराम तो नहीं कर सकते हैं, देखिए जैसे मैंने बताया शीतलीकरण होना चाहिए, तो शीतलीकरण में यहाँ पे यही बोलूंगी कि हमको थोड़ी देर के लिए कॉन्शियस रिलैक्सेशन, मतलब जागते हुए सोना चाहिए। आप अपने ही जो भी आपका उस समय लंच का ब्रेक टाइम है, आप उसमें आंख बंद करके जो भी आवाजें आपकी आ रही है, मान लीजिए दूर से किसी पक्षी की आवाज आ रही है या किसी वाहन की आवाज आ रही है या पंखे की आवाज आ रही है या कुछ म्यूजिक ही आपने लगाया, तो बहुत ध्यान से केवल उसको सुनना है आपको। आप उसमें ही रिलैक्स हो जाएंगे, आपके लिए वो 20 मिनट या 10 मिनट जो भी आप दे पाते हैं वो आपको एक कॉन्शियस रिलैक्सेशन देगा,
1: और फिर तो से अपना काम करें।
0: फिर से आप तरोताजा हो जाएंगे काम करने। आप इसे अनुभव करके देखिए, ये सारी चीजें जो है वो अनुभव करने की है, आप इसे अनुभव करके देखिए, आप वहाँ पर रिलैक्स हो जाएंगे और आप काम फिर से ताजगी के साथ काम करेंगे।
1: क्या बात है, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि थोड़ा सा ब्रेक हमें लेना ही जरूरी होता है, और वो ऐसा नहीं ब्रेक होगा कि वो घड़ी के हिसाब से ब्रेक होगा, काम करते करते कुर्सी से उठिए या कंप्यूटर पर बहुत ज्यादा देर तक टिके हैं, थोड़ा सा ध्यान हटा के ध्यान में करो,
0: वहीं पर आप थोड़ा सा पांव को थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए, गर्दन को थोड़ा सा राइट लेफ्ट ऊपर नीचे थोड़ा सा हिला लीजिए, आंखों की आप एक्सरसाइज कर दे, थोड़ा सा आंख बंद करिए खोलिए, जल्दी जल्दी पलकें झपक लीजिए, आंखों को राइट लेफ्ट घुमा लीजिए, क्योंकि आप लगातार कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, आपकी आंखों पे स्ट्रेन हो रहा है, तो आप थोड़ा सा तुरंत आप अपने आई मूवमेंट उस समय कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप ऑफिस में रह के भी कर सकते हैं, और इसी तरह की चीजें घर पे महिलाएं भी कर सकती हैं।
1: अच्छा, ये भी हमने सुना है कि कई बार लोग सोशल मीडिया पर बहुत ही सक्रिय होते हैं, ऑफिस में काम करते करते भी कोई टिप्स मिल गया, बिना किसी सोच समझ के उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं, तो वो कितना लाभदायक होता है।
0: मैं वापस आपको वही बात दोहराऊंगी कि देखिए किसी का भी देख के उसे हमको तुरंत फॉलो करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक अलग है, जिसके लिए ये टिप दिया गया है वो एक अलग व्यक्ति है और आप एक अलग हैं। ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए जो सही है वो आपके लिए भी सही होगा, तो मैं तो नहीं कहूंगी कि आप उसको अपनाइए, आप पहले सीखिए, आप अपने आप का देखिए आपके लिए जरूरी है कि नहीं है, है तो आप एक हफ्ते उस चीज को करके देखिए कि आप उसका क्या असर होता है, उसके बाद आप उसे अपनाइए।
1: यहाँ पर एक गाना तो बनता है फिर।
0: अभी मैं थोड़ा सा कुछ सब्जेक्ट से हमारे हट के आपको गाना सुनाऊंगी, मेरा मन पसंद गाना है जिसके बोल हैं जो तुम

0: गीत वाकई आपने अपनी पसंद का बहुत अच्छा सुनवाया, लीक से हटकर था और थोड़ा मूड भी बदल गया। शारदा जी, हम अब अपने प्रोग्राम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। हम चाहेंगे कि आज का जो विषय है जीवन शैली और योग, चलते चलते संदेशात्मक रूप में आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगी हमारे सुनने वालों को, जो बिजी भी रहते हैं और जो थोड़े से बहुत जिनके पास समय होता है, उन दोनों ही के लिए कि उनका भोजन कैसा होना चाहिए। आचार विचार तो आपने बता ही दिया है, और संतुलित जागरूक जीवन के लिए क्या लक्ष्य होना चाहिए।
1: आपने जिसे बात करी कि भोजन कैसा होना चाहिए, तो मैंने उसके बारे में आपको पहले भी बताया कि हमारा भोजन सात्विक ही होना चाहिए। तो
0: सात्विक का मतलब शाकाहारी?
1: जी हाँ, बिल्कुल शाकाहारी होना चाहिए भोजन, जिसमें मिर्च मसाले ना हो, ऐसा ही भोजन करना हमको चाहिए।
0: वो कहा भी जाता है कि जैसा भोजन वैसा
1: जी
0: मन।
1: हाँ, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा आपके काम होंगे, जैसा आप खाएंगे वैसे आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आप कार्य करेंगे।
0: जी जी जी।
1: और जैसे मैंने बताया कि, और यही मैं आपको कार्यक्रम के समापन पे भी यही कहना चाहेंगे, यदि आप योग के आचार विचार आहार विहार पर, जो मैंने आपको चार स्तंभ बताए हैं, इन पर आपको पूरे समय आप यदि इस चीज पे जागरूक रहते हैं, तो आप जीवन के जो भी उतार चढ़ाव हैं उसमें अपने आप को, स्वयं को संतुलित और संतोषमय स्थिति में प्राप्त कर पाएंगे।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छा कंक्लूजन आपने दिया है, और हम आपको धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आपने भाग लेकर हमारे सुनने वालों को लाभान्वित किया और जीवन शैली और योग विषय पर कठिनतम बातों को आसान से शब्दों में समझा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती की ओर से।
1: धन्यवाद राजेन जी, मैं भी आपका दोबारा से धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे ये मौका दिया, विविध भारती ने मुझे आमंत्रित करके मुझे ये मौका दिया, उसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करूंगी, विविध भारती का धन्यवाद करती हूँ।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल से। आज के कार्यक्रम में विषय था जीवन शैली और योग। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया HR पाटले ने, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए।
2: एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी सवाई माधोपुर के रणथंभौर चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं युवा साथी सुनने पसंद का कार्यक्रम शुभवाणी।

युववाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो दोस्त श्रुति का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, हाजिर हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी लेकर, जिसमें आज हम बात करेंगे रोजगार और स्वरोजगार पर। साथ ही ज्ञान मंजरी में आपको जानकारी देंगे विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर। इसके साथ ही वार्ता का विषय रहेगा सामाजिक समरसता और युवा। तो चलिए दोस्तों, हमारे कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

तो चलिए दोस्तों, आते हैं हमारे आज के बात पर, जिसका विषय है रोजगार और स्वरोजगार। दोस्तों, रोजगार और स्वरोजगार आय अर्जित करने के दो प्रमुख साधन हैं। रोजगार में आप किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के अधीन काम करते हैं और मासिक वेतन पाते हैं। इसके विपरीत स्वरोजगार में आप स्वयं के मालिक होते हैं और अपना खुद का व्यवसाय, दुकान या फ्रीलांस कार्य चलाते हैं। दोस्तों, रोजगार और स्वरोजगार दोनों ही आजीविका कमाने के बेहतरीन माध्यम हैं। कई युवा आज प्लूरियो एक्टिविटी के जरिए एक साथ दोनों अपनाते हैं, यानी दिन में नौकरी करना और शाम या सप्ताह में अपना खुद का काम करना। दोस्तों, आज के युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार आत्मनिर्भरता और आर्थिक मजबूती का प्रमुख आधार है। पारंपरिक नौकरियों की सीमित उपलब्धता और तकनीकी प्रगति के बीच सरकार और विभिन्न संस्थान युवाओं को कौशल विकास और आसान ऋण के माध्यम से अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।

कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4454 से प्राप्त की जा सकती है।

0: मतगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो चलिए दोस्तों, आते हैं हमारे आज की बात की तरफ, जिसका विषय था रोजगार और स्वरोजगार। दोस्तों, अगर रोजगार की स्वरोजगार की बात करें तो एक स्वरोजगार प्राप्त व्यक्ति आमतौर पर किसी विशेष प्रतिभा या कौशल का मालिक होता है या दूसरों को सेवाएं प्रदान करता है। इसी के साथ दोस्तों, एक स्वरोजगार करने वाले व्यक्ति के पास आमतौर पर कोई मजबूत प्रतिभा, कौशल या सेवा होती है जिसे वह दूसरों को बेच सकता है। स्वरोजगार करने वाले व्यक्ति

को नियोक्ता के बजाय उनके ग्राहकों द्वारा भुगतान किया जाता है। वस्तु ग्राहक या उपभोक्ता यह निर्धारित नहीं कर सकता कि कोई स्वरोजगार प्राप्त व्यक्ति अपने द्वारा भुगतान किए जाने वाले कार्य को कब और कैसे करता है। इसी के साथ एक स्वरोजगार व्यक्ति आमतौर पर अपनी भुगतान शर्तें स्वयं निर्धारित करता है। उसे भुगतान कब किया जाएगा और काम करने के लिए उसे कितनी राशि की आवश्यकता होगी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हमारे कार्यक्रम का अगला गीत।

तो चलिए दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारी वार्ता पर, जिसका विषय है सामाजिक समरसता और युवा। दोस्तों, सामाजिक समरसता यानी सोशल हार्मनी और युवा का आपस में गहरा संबंध है। युवा किसी राष्ट्र के निर्माता होते हैं, जिसकी असीम ऊर्जा, नवीन सोच और उत्साह समाज से भेदभाव, ऊंच नीच और असमानता को मिटाकर एक मजबूत, एकजुट और समरस समाज के निर्माण की नींव रखती हैं। युवा सोशल मीडिया और जमीनी अभियानों के माध्यम से जाति, धर्म और लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ ही शिक्षा के प्रसार और जरूरतमंदों को शिक्षित करके युवा सामाजिक और आर्थिक खाई को कम कर सकते हैं। इसके साथ ही युवा विभिन्न त्योहारों और आयोजनों में सभी वर्गों के लोगों को एक साथ लाकर भाईचारे बढ़ाने के कार्य किए जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी बीच सुनते हैं हमारे कार्यक्रम का अगला गीत।

तो दोस्तों हम बात कर रहे थे सामाजिक समरसता और युवा पर। दोस्तों सामाजिक समरसता का अर्थ है समाज के सभी वर्गों के बीच समानता, प्रेम और भाईचारा। आज के दौर में जब देश प्रगति पर है, युवाओं की ऊर्जा और नई सोच सामाजिक भेदभाव को मिटाने में सबसे बड़ी शक्ति है। युवा ही समरसता के प्रहरी बनकर सशक्त और एकजुट राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। समरसता किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में भी वसुदेव कुटुंबकम का संदेश दिया गया है। जब जाति, धर्म और वर्ग के बंधनों से ऊपर उठकर एक दूसरे का सम्मान करता है, तब वास्तविक विकास संभव होता है।

चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं ज्ञान मंजरी की तरफ, जिसका विषय है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। दोस्तों विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस यानी वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे हर साल 15 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों के साथ होने वाली शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दुर्व्यवहार, भेदभाव व उपेक्षा के खिलाफ समाज में जागरूकता फैलाना और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करना है। दोस्तों इस महत्वपूर्ण दिन की शुरुआत साल 2006 में संयुक्त राष्ट्र यूएन और इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज द्वारा की गई थी। इसके बाद दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव पारित कर इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी। दोस्तों एनजीओ हेल्प एज इंडिया के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 60% बुजुर्ग किसी न किसी रूप में दुर्व्यवहार या अपेक्षा का सामना करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी बीच सुनते हैं हमारे कार्यक्रम का अगला गीत।

तो चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर। दोस्तों, बुजुर्ग दुर्व्यवहार को एक एकल या बार बार होने वाली घटना या उचित कार्रवाई की कमी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो किसी भी उस रिश्ते में हो सकती है जहां विश्वास की उम्मीद होती है और किसी बुजुर्ग व्यक्ति के नुकसान या परेशानी का कारण बनती है। यह एक वैश्विक सामाजिक मुद्दा है जो दुनिया भर में लाखों वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य और मानवाधिकारों को प्रभावित करता है, तथा एक ऐसा मुद्दा जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करता है। वृद्ध दुर्व्यवहार एक ऐसी समस्या है जो विकासशील और विकसित दोनों देशों में मौजूद है, फिर भी आमतौर पर विश्व स्तर पर कम रिपोर्ट की जाती है। इस दिवस का प्राथमिक लक्ष्य सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिक कारकों के बारे में जागरूकता बढ़ाकर दुर्व्यवहार और उपेक्षा के संबंध में बेहतर समझ विकसित करना है। देश में वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हमारे कार्यक्रम का आखिरी गीत।

तो चलिए दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी हमें आपसे और बातें करने की इजाजत नहीं देती है। कल फिर हाजिर होंगे एक नई उमंग के साथ। नमस्कार।

एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी सवाई माधोपुर के रणथंभौर चैनल से बोल रहे हैं। सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम गोधूली।

नरेंद्र चंचल और साथियों के गाय इस भक्ति गीत के साथ ही गोधूली कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी सवाई माधोपुर के रणथंभौर चैनल से बोल रहे हैं। सुनते हैं कार्यक्रम नारी लोक।

स्वागत है श्रोताओं आपका अपने कार्यक्रम नारी लोक में। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी ललिता, लेकर आई हूं आपके साथ नई नई जानकारी साझा करने के लिए और फिल्मी गीत आपके मनोरंजन के लिए। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की जानकारी से, जिसमें हमारा विषय है रोजगार व्यवसाय ऋण। सखियों, आज के समय में रोजगार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की ऋण योजनाएं चलाई जा रही है। जिन लोगों के पास अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है, वे बैंक या फिर किसी भी सरकारी योजनाओं के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। विशेष रूप से महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति डेयरी, पशुपालन, सिलाई कढ़ाई, किराना की दुकान, ब्यूटी पार्लर, ई मित्र केंद्र या फिर किसी भी प्रकार का लघु उद्योग शुरू करने के लिए ऋण ले सकता है। सखियों, इसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं जैसे कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, राजीविका के माध्यम से भी लोन लिया जा सकता है, लखपति दीदी योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्टैंड अप इंडिया योजना चलाई जा रही है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी महिलाओं को कम ब्याज पर ऋण मिल सकता है। सखियों, ऋण प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक खाते की डायरी आदि आवश्यक दस्तावेज जो भी होते हैं वो जमा करवाने होते हैं। बैंक आवेदक की योग्यता और व्यवसाय की संभावनाओं को देखकर ऋण स्वीकृत करता है। कई प्रकार के जो ऋण होते हैं सखियों, उनमें ब्याज दर की छूट तो रहती ही है, साथ ही साथ सब्सिडी भी दी जाती है। लेकिन सखियों, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने सामर्थ्य के हिसाब से और जो हम व्यवसाय शुरू कर रहे हैं उसके हिसाब से ही हमें लोन लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमें बाद में उसे पूरा करना या फिर बैंक को लौटाना भारी पड़ जाए। सखियों, ये तो थी हमारी आज की बात। अब चलते हैं गीत संगीत की तरफ और सुनवाते हैं आपको ताल मूवी का ये गाना।

सखियों, अब से फिर से चलते हैं हमारी जानकारी की तरफ और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सभ्यताओं के बीच संवाद विषय पर बातचीत। सखियों, हमारा ये जो विश्व है इसमें विभिन्न प्रकार के देश हैं। सभी देशों की जो सभ्यताएं हैं वो अलग अलग है। सभ्यताओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय संवाद का उद्देश्य विभिन्न देशों, संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों के लोगों के बीच आपसी समझ, सम्मान और सहयोग को बढ़ावा देना है। सखियों, आज के वैश्विक युग में यह संवाद शांति, विकास और मानवता के लिए बहुत ही जरूरी है। व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो इसका अर्थ विभिन्न सभ्यताओं के लोग एक दूसरे की परंपराओं, रीति रिवाजों, विचारों और जीवन शैली को समझने का प्रयास करें, ऐसा है। क्योंकि सखियों, सभी देशों के जो संस्कृति होती है वो अलग अलग होती है। वहां के धर्म, रीति रिवाज, रहन सहन, यहां तक कि विचार और जीवन शैली भी अलग अलग होती है। जब विभिन्न देश एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो आपसी संबंध मजबूत होते हैं। सभ्यताओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय संवाद केवल विचारों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि विश्व में शांति, सद्भाव, समानता और सतत विकास स्थापित करने का एक प्रभावी माध्यम भी है। सखियों, प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों की संस्कृति का सम्मान करते हुए आपसी भाईचारे और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। सखियों, अब फिर से चलते हैं फिल्मी दुनिया में और सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत।

0: मतगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। So easy.
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

सखियों, आज विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस है। यह दिवस केवल एक औपचारिक दिवस नहीं है, बल्कि यह हमें अपने परिवार और समाज में बुजुर्गों के प्रति व्यवहार पर विचार करने का अवसर देता है। आज के समय में कई बुजुर्ग सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक उपेक्षाओं का सामना कर रहे हैं। कई बार परिवार के सदस्य व्यस्तता के कारण या फिर अन्य कारणों से उनकी भावनाओं और आवश्यकताओं को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन सखियों, कई बार ऐसे भी होता है कि हम जानबूझकर उन्हें नेग्लेक्ट कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपने परिवार के बुजुर्गों को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे परिवार की धुरी है। आज जो परिवार है वो सब उन्हीं की देन है। हमें उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उनके अनुभवों का लाभ उठाना चाहिए। उनके स्वास्थ्य, भोजन, दवाइयों और दैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना परिवार की जिम्मेदारी है। समाज स्तर पर भी वृद्धजनों की सहायता और सहयोग का माहौल बनाना आवश्यक है। पड़ोस, सामाजिक संस्थाएं, युवा वर्ग, आप और हम जैसे नागरिक मिलकर बुजुर्गों की सहायता कर सकते हैं। सखियों, वृद्धाश्रम और जो वरिष्ठ नागरिक केंद्र है उनके माध्यम से भी उनकी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। हमें इस बात को सोचना और समझना चाहिए कि आज के बुजुर्ग कभी हमारे परिवार और समाज की शक्ति रहे हैं। उनके प्रति सम्मान और संवेदनशीलता दिखाना हमारा नैतिक कर्तव्य है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार के वृद्धजनों की देखभाल और सम्मान का संकल्प लें, तो वृद्ध दुर्व्यवहार जैसी समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। बुजुर्गों का सम्मान करना, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना और उन्हें प्रेम और सुरक्षा प्रदान करना ही विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार दिवस का वास्तविक उद्देश्य है। एक सर्वश्रेष्ठ समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब हम बुजुर्गों को प्यार और सम्मान दें। सखियों, अब सुनवाते हैं आपको ये गीत।

साथ वक्त हो चला है आज की कार्यक्रम की समाप्ति का। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए कार्यक्रम नारी लोग, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 बजे। सखियों, अब आज्ञा चाहती हूँ कार्यक्रम को समाप्त करने की। नमस्कार।

एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी सवाई माधोपुर के रणथंभौर चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही बोलो आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा, राजस्थान के शूरवीरों ने प्राचीन काल से ही देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयुष मंत्रालय ने आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। और प्रदेश में बच्चों को दस्त से बचाव और उपचार के लिए कल से स्टॉप डायरिया कैंपेन चलाया जाएगा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि राजस्थान के शूरवीरों ने प्राचीन काल से ही देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री बागड़े आज सीकर के जसरासर में शहीद स्मारक में शहीद गोवर्धन सिंह ढाका की प्रतिमा अनावरण के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि सीकर, झुंझुनू और नागौर सहित शेखावाटी क्षेत्र के जवानों का देश की तीनों सेनाओं में विशेष योगदान है। राज्यपाल ने शहीद गोवर्धन सिंह ढाका के बलिदान को याद करते हुए कहा कि उनकी शहादत आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगी और नई पीढ़ी को राष्ट्र सेवा के लिए ऊर्जा प्रदान करेगी। कार्यक्रम में राज्यपाल ने शहीद के परिजनों को सम्मानित भी किया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि आज भारत दृढ़ विश्वास से परिपूर्ण राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। देश विश्व की अपेक्षाओं का केंद्र बन चुका है और वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज जोधपुर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ने विकास के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और पुनर्जागरण को भी समान महत्व दिया है। श्री शेखावत ने कहा कि पिछले 12 सालों में देश में रिकॉर्ड निवेश आया है और व्यापक बदलाव हुए हैं।
1: भारत की अर्थव्यवस्था जिस गति के साथ में बढ़ रही, हमारा एक्सपोर्ट सस्टेन कर, अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद भी आज हमारा हर क्षेत्र का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा है, हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ा है, हमारा जो है ट्रेड डेफिसिट कंपैरेटिवली कम हुआ है इतनी वैश्विक चुनौतियों के बाद में भी, और हमारा ट्रेड बैलेंस जो है वो भी पॉजिटिव साइड में 0.7% की अभिवृद्धि उसमें हुई है। आज भारत सबसे सशक्त अर्थव्यवस्था

0: में से एक है।
1: आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा।

0: कोलकाता की रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम के साथ ही हुगली नदी पर 500 नावों में योग सत्र आयोजित करने की योजना है।
1: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के सांगानेर में आयोजित शहरी सेवा शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से संवाद कर जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को पट्टे, प्रमाण पत्र और सहायता राशि के चेक तथा विशेष योग्यजन को सहायक उपकरण वितरित किए। वहीं मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने भी जयपुर विकास प्राधिकरण के नागरिक सेवा केन्द्र में लगाए गए शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह शिविर सरकार की सुशासन और जनसेवा की सोच को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुख्य सचिव ने शिविर में आवेदकों से संवाद भी किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों में आने वाले प्रत्येक नागरिक को सरल, सुगम, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।
2: माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें जमीनी स्तर पर, और उसी अनुसार शिविर लग रहे हैं। 12 जून से लेकर 15 जुलाई तक कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे जिला कलेक्टर स्तर पर, सब डिविजनल ऑफिसर स्तर पर, नगर निकायों के साथ विचार विमर्श किया। इसमें यही निर्देश दिए कि ग्राउंड स्तर पर पहुंचे और लास्ट माइल डिलीवरी को इम्प्रूव करें। सुशासन के प्रति राजस्थान सरकार का जो डीप कमिटमेंट है, इसको और ज्यादा मजबूत करें।
0: प्रदेश में विभिन्न जिलों में आयोजित हो रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से भी स्थानीय लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने आज भरतपुर और डीग में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। वहीं गृहमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने करौली में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सलूम्बर जिले में कल इन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शहरी सेवा शिविर नगर परिषद क्षेत्र में लगाया जाएगा, वहीं ग्रामीण सेवा शिविर कई ग्राम पंचायतों में आयोजित होंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर आज एक कार और डंपर के बीच हुई टक्कर में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं, 1 पुरुष और 3 बच्चे शामिल हैं। हादसे में एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका बीकानेर के PBM अस्पताल में इलाज जारी है। कार में सवार ये सभी लोग हरियाणा के फतेहाबाद के रहने वाले थे और बीकानेर के मुकाम से वापस हरियाणा जा रहे थे। असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान हादसे में वीरगति को प्राप्त हुए नागौर के अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत का आज उनके पैतृक गांव पांचोटा में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इससे पहले उनकी पार्थिव देह विशेष विमान से जयपुर एयरपोर्ट लाई गई। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, जयपुर सांसद मंजू शर्मा, जिला कलेक्टर संदेश नायक और सैनिक कल्याण अधिकारी जय राठौर ने खेमाराम कुमावत की देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। नशीले पदार्थों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन के तहत केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो चित्तौड़गढ़ और कोटा की टीम ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर देवरी गांव के पास एक कंटेनर ट्रक से 2000 किलोग्राम से ज्यादा डोडा चूरा बरामद किया। कंटेनर के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। डोडा चूरा की अंतर्राष्ट्रीय अनुमानित कीमत 25 करोड़ रूपये से ज्यादा आकी जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में ये मादक पदार्थ मध्य प्रदेश से पंजाब ले जाया जा रहा था। प्रदेश में बच्चों को दस्त रोग से बचाव और उपचार के लिए कल से राज्यव्यापी स्टॉप डायरिया कैंपेन चलाया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। अभियान के तहत विशेषकर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में डायरिया की रोकथाम, समय पर उपचार, स्वच्छता, साफ पीने का पानी और जन जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

0: चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि देश में डायरिया आज भी बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी एक गंभीर चुनौती है। गर्मियों और बारिश के मौसम में बच्चे दस्त रोग से अधिक ग्रसित होते हैं और उपचार नहीं होने पर ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग में परियोजना निदेशक बाल स्वास्थ्य डॉ प्रदीप चौधरी ने बताया कि अभियान के दौरान स्वच्छ जल, समुचित उपचार, डायरिया से बचे हर बार की थीम पर गतिविधियां आयोजित होंगी।
1: इस अभियान के दौरान जैसे दस्त की रोकथाम के संबंध में जो गतिविधियां होती है, शुद्ध पेयजल का सेवन, साफ सफाई, स्वच्छता, इनके संबंध में जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जो हमारे वेरियस लाइन डिपार्टमेंट है, जैसे इसमें UDH हो गया, PHED हो गया और पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट और हमारा WCD डिपार्टमेंट, इन सबके साथ मिलकर एक जन जागरूकता का अभियान चलाया जाना है। इसके अलावा आशा कार्यकर्ता द्वारा घर घर जाकर प्रति बच्चा, अगर घर में 5 साल का छोटा एक बच्चा है तो 2 ORS के पैकेट और 14 दिन की जिंक की गोली, ये हम घर पर उपलब्ध कराएंगे।
0: प्रदेश भर के आंगनबाड़ी केंद्रों पर आज अभिभावक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बैठक PAM का आयोजन किया गया। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित इस माह की बैठक का मुख्य विषय पोषण, संतुलित आहार और स्वास्थ्य तथा बच्चे के जीवन में पिता की भूमिका रहा। विभाग की शासन सचिव पूनम ने बताया कि इन बैठकों के माध्यम से बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र विकास के लिए जन जागरूकता को नई गति देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके लिए परिवारों की सहभागिता को और खासतौर पर पिता की भूमिका को अधिक मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। प्रदेश के उत्तरी पूर्वी जिलों में आज कहीं आंधी चली तो कहीं हल्की सी मध्यम बारिश हुई। हनुमानगढ़ में सुबह अंधड़ के बाद तेज बरसात हुई जिससे सड़कों पर पानी जमा हो गया। झुंझुनू में भी दोपहर बाद मौसम बदला और कई जगह तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात हुई। चूरू और डीग में आंधी के बाद हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया। राज्य के कई अन्य पूर्वी जिलों में भी आंधी और तेज हवाएं चलने तथा कहीं कहीं बारिश के समाचार हैं। इन गतिविधियों से पूर्वी हिस्सों में पारा गिरा है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में आज भी उमस और गर्मी का असर रहा। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और जोधपुर संभागों में अगले 4-5 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। देशभर में 1 जुलाई से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण लागू हो जाएगा। राजस्थान के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना में 7,581 करोड़ रुपए से अधिक का अंतरिम आवंटन निर्धारित किया है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा 4,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया जाएगा जिसे आवश्यकता और मांग के अनुसार बढ़ाया भी जा सकेगा। इस तरह राजस्थान में इस योजना के लिए कुल 11,581 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उपलब्ध होगी जो प्रदेश में ग्रामीण रोजगार गारंटी के लिए अब तक का सर्वाधिक आवंटन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा, राजस्थान के शूरवीरों ने प्राचीन काल से ही देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयुष मंत्रालय ने आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। और प्रदेश में बच्चों को दस्त से बचाव और उपचार के लिए कल से स्टॉप डायरिया कैंपेन चलाया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से उदयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख हरीश पालीवाल ने तैयार किया है। उदयपुर जिले में इन दिनों मानसून की आहट के साथ पर्यटन गतिविधियां बढ़ने लगी है। वहीं जिले में जल संरक्षण, शिक्षा, वन्यजीव संरक्षण, प्रशासनिक गतिविधियां और जनसरोकारों से जुड़े अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया गया। उदयपुर में जिला स्तरीय कार्यक्रम दूध तलाई क्षेत्र में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, प्रभारी सचिव टी रविकांत, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल तथा अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत पौधारोपण से हुई। इसके बाद प्रभात फेरी और कलश यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने जल स्रोतों को स्वच्छ रखने, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा

0: देने और अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया। उदयपुर में राजस्व और उपनिवेशन विभाग के शासन सचिव और जिले के प्रभारी सचिव टी रविकांत ने विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने आगामी मानसून को देखते हुए सभी विभागों को आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। पेयजल प्रबंधन, चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार, खाद और बिजली आपूर्ति सहित विभिन्न विषयों पर समीक्षा की गई। संपर्क पोर्टल पर लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। साथ ही शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आधारभूत सुविधाओं के विकास पर जोर दिया गया। मॉनसून के आगमन से पहले उदयपुर को पर्यटन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। एक प्रमुख ट्रेवल पोर्टल द्वारा जारी भारत के शीर्ष 15 मॉनसून पर्यटन स्थलों की सूची में उदयपुर को देश में तीसरा स्थान हासिल हुआ है। राजस्थान से केवल उदयपुर और माउंट आबू ही इस सूची में शामिल हुए हैं। सूची में केरल का मुन्नार पहले और गोवा दूसरे स्थान पर है। मानसून के दौरान पिछोला, फतेह सागर, उदय सागर और स्वरूप सागर झीलों के भरने के साथ अरावली क्षेत्र का वातावरण पर्यटकों को आकर्षित करता है। सज्जनगढ़ स्थित मॉनसून पैलेस से झीलों, पहाड़ियों और बादलों का दृश्य देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में उदयपुर ने मॉनसून पर्यटन के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। उदयपुर संभाग मुख्यालय पर हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति और बार एसोसिएशन उदयपुर का प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली में केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने उदयपुर संभाग में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने पर चर्चा की। प्रतिनिधियों ने बताया कि आदिवासी बहुल क्षेत्र होने और बड़ी आबादी को न्यायिक सुविधा उपलब्ध कराने के मद्देनजर उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की मांग रखी गई है। उदयपुर की बेटी खुशी ने भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग अफसर बनकर मेवाड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति मिली है। फ्लाइंग ऑफिसर खुशी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उदयपुर में प्राप्त की और बाद में बीएन विश्वविद्यालय से बीसीए की पढ़ाई की। खुशी ने एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट पास कर एसएसबी चयन प्रक्रिया पूरी की और हैदराबाद में पायलट प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनका गणतंत्र दिवस परेड के लिए भी चयन हो चुका है। उमरड़ा स्थित साई तिरुपति विश्वविद्यालय का चौथा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में एमबीबीएस, एमडीएमएस तथा विभिन्न संकायों के विद्यार्थियों को उपलब्धियां प्रदान की गई। विश्वविद्यालय के शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि भी प्रदान की गई। विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में अब जिराफ लाने की तैयारियां अंतिम चरण में है। वन विभाग द्वारा जिराफ के लिए विशेष एनक्लोजर बनाए जा रहे हैं। सेंचुरी क्षेत्र में बनाए जा रहे इस परिसर में पर्यटकों के लिए पाथवे और जिराफ के लिए अलग होल्डिंग तथा डिस्प्ले एरिया विकसित किया जा रहा है। परियोजना पर करीब 2,70,00,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वन विभाग के अनुसार एनिमल एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत नर और मादा जिराफ का जोड़ा उदयपुर लाया जाएगा। जिराफ के आने के बाद वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उदयपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कहो प्रदेश रा शूरवीर देश री हिफाजत माए खास काम कीनो। आयुष मंत्रालय 12वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनावन सारू आज औपचारिक कार्यक्रम री शुरुआत कीनी। बीकानेर जिला री श्री डूंगरगढ़ माए भया सड़क हादसा रे कारण एक ही परिवार रा 6 जना री मौत। अर प्रदेश माए बच्चा ने 10 तू बचावन अर इलाज सारू काल स्टॉप डायरिया कैंपेन शुरू करियो चावेला। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज सीकर जिला रा जसरा शर्माए शहीद गोवर्धन सिंह ढाकारी मूर्त रो अनावरण कीनो। इ मौके श्री बागड़े शहीद गोवर्धन सिंह ढाकारा बलिदान ने याद करता थका कहो कि हमारी शहादत आउ

0: ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਖ ਦੇ ਵੇਲਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਕਹਿਓ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸ਼ੂਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਹ ਕਹਿਓ ਕਿ ਨਾਗੌਰ, ਸੀਕਰ ਅਰ ਝੁੰਝੁਨੂ ਸਮੇਤ ਸ਼ੇਖਾਵਾਟੀ ਹਲਕਾ ਰਾ ਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਰਾ ਕਾਮ ਮਾਏ ਮੋਟੋ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਨੋ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਮਾਏ ਸ਼ਹੀਦ ਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਰੋਈ ਮਾਨ ਕੀਨੋ ਅਰ ਸਮਾਰਕ ਪਰਿਸਰ ਮਾਏ ਪੌਦਾ ਰੋਪਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਰ ਪਰਯਟਨ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਕਹਿਓ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਰੋਸਾ ਭਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਰਾ ਤੌਰੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇ ਅੱਜ ਜੋਧਪੁਰ ਮਾਏ ਖਬਰ ਨਵੀਸਾਂ ਸਾਗੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਤਾ ਥਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾ 12 ਸਾਲ ਰਾ ਕਾਮਕਾਜ ਰੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਰੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਨੋ। ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਕਹਿਓ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਰੋ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਓ ਹੈ ਅਰ ਸਾਲ 2047 ਤਾਈਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਵਾਉੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਬਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਹ ਕਹਿਓ ਕਿ ਲਾਡਲਾ 12 ਸਾਲ ਮਾਏ ਦੇਸ਼ ਮਾਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਓ ਹੈ ਅਰ ਮੋਟਾ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਹੈ।
1: भारत की अर्थव्यवस्था जिस गति के साथ में बढ़ रही, हमारा एक्सपोर्ट सस्टेन कर, अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद भी आज हमारा हर क्षेत्र का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा है, हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ा है, हमारा जो है ट्रेड डेफिसिट कंपैरेटिवली कम हुआ है इतनी वैश्विक चुनौतियों के बाद में भी, और हमारा ट्रेड बैलेंस जो है वो भी पॉजिटिव साइड में 0.7% की अभिवृद्धि उसमें हुई है। आज भारत सबसे सशक्त अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
0: 21 जून ने मनाया जावन वाला 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रा सिलसिला माए आयुष मंत्रालय री ओर आज नई दिल्ली माए औपचारिक कार्यक्रम शुरू करी चिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रो इन साल रो मुद्दो स्वस्थ जीवन के लिए योग राखी चियो है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव नई दिल्ली माए खबर नवीसा ने बतायो कि योग दिवस रो खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई माए कोलकाता रा रेड रोड माथे रखियो जावेला। वे बतायो के इन मौके 45 मिनट रो योग प्रोटोकॉल रखियो जावेला। खास कार्यक्रम सा गई हुगली नदी माए 500 नावा माए योग सत्र रखण री योजना है।
2: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर रा सांगानेर माए लगाई जा शहरी सेवा शिविर रो दौरो कीनो। वे शिविर माए मौजूद लोगों सागे बातचीत कर सरकार कानियों जनता रा भला सारू चलाई जा रही योजनावां रा बारा माए जानकारी हासिल कीनी। मुख्यमंत्री पात्र लोगों ने पट्टा, सर्टिफिकेट, मदद री रकम रा चेक और विशेष योग्यजन ने जिंदगी आसान बनावन रा साजो सामान दीना। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ई जयपुर विकास प्राधिकरण रा नागरिक सेवा केंद्र माए लगाया जा रहा शहरी सेवा शिविर रो दौरो कर व्यवस्थाओं रो जायजो लीनो। ये मौके वे कहो के ए शिविर सरकार री सुशासन और जन सेवा री सोच ने सांचीकरण माए खास काम कर रहा है। मुख्य सचिव शिविर माए मौजूद लोगों सागे बातचीत कीनी। वे अहलकारा ने शिविर माए आवन वाला लोगों ने साफ कोई सागे आसान तरीका टेम सर सेवा मुहैया करावन रा हुकम दीना।
3: माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें जमीनी स्तर पर, और उसी अनुसार शिविर लग रहे हैं 12 जून से लेकर 15 जुलाई तक। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे जिला कलेक्टर स्तर पर, सब डिविजनल ऑफिसर स्तर पर, नगर निकायों के साथ विचार विमर्श किया। इसमें यही निर्देश दिए कि ग्राउंड स्तर पर पहुंचे और लास्ट माइल डिलीवरी को इम्प्रूव करें। सुशासन के प्रति राजस्थान सरकार का जो डीप कमिटमेंट है इसको और ज्यादा मजबूत करें।
0: जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत आज भरतपुर और डीग माई लगाई जा शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर रो जायजो लीनो। वह जनताओं सरकार री न्यारी न्यारी योजनाओं रो फायदो लेवन री अरज कीनी। गृह मंत्री जवाहर सिंह बेढमी करौली माई व्यवस्थाओं रो जायजो लीनो। सलुम्बर जिला रा नगर परिषद हल्का माए काल शिविर लगाया जावेला, जदके गांवाई हल्का माए मैथुड़ी, झल्लारा की माता सुला, जय समंदरी पीलादर, सेमारी री सड़कड़ी, सराड़ा री चावंडर, लसाड़िया री सती की चोरी ग्राम पंचायत माए शिविर लगाया जावेला। ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो।

0: बीकानेर जिला रा श्री डूंगरगढ़ माए नेशनल हाईवे नंबर 11 माथे आज एक कार रे डंपर री फेंट माए आजावन रे कारण व्या हादसाओं एक ही परिवार रा 6 जना री मौत वे की। मरण वाला माए 2 महिलावां एक लोग और 3 बच्चा शामिल है, जदका एक टावरी घनी जख्मी वेगी जिनरो बीकानेर रा PBM अस्पताल माए इलाज चाल रियो है। कार माए सवार ए लोग हरियाणा रा माए फतेहाबाद रा रहवासी हा। असम रा जोरहाट माए भारतीय वायुसेना रा AN-32 विमान हादसा माए वीर गति हासिल करन वाला नागौर रा वायु अग्निवीर खेमा राम कुमावत रो आज मारा गांव पांचोटा माए फौजी मानसा गए दाग करती हो चियो। वानी पार्थिव देह खास विमानो जयपुर हवाई अड्डा माथे लाई ची। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, जयपुर री सांसद मंजू शर्मा, जिला कलेक्टर संदेश नायक और सैनिक कल्याण अधिकारी जय राठौड़ खेमा राम कुमावत री देह माथे फूल चढ़ार वाना श्रद्धा भाव सागे याद की ना। प्रदेश माए बच्चा ने दस्त लागण बचावण हर दस्त मंदा भया बच्चा रा इलाज सारू चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग री ओर काल स्टॉप डायरिया अभियान शुरू करियो जावेला। 31 जुलाई ताई चालन वाला ई अभियान रा तहत 5 साल री उम्र छोटा बच्चा माए डायरिया री रोकथाम टेम सर इलाज साफ सफाई पीवन रा साफ पानी और जन जागरूकता सारू न्यारा न्यारा कार्यक्रम रख्या जावेला। चिकित्सा विभाग री प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ बतायो कि डायरिया आज ही बच्चा रा स्वास्थ्य उंजुड़ी गंभीर चुनौती है। वह कहो कि उनाला और चौमासा माए बच्चा ने दस्त लागण री बत्ती शंका रहवे है और एड़ो भेवन री सूरत माए इलाज नी मिलन पर मौत रो खतरो ही वह है। स्वास्थ्य विभाग माए बाल स्वास्थ्य रो काम देख रहा परियोजना निदेशक डॉक्टर प्रदीप चौधरी बतायो कि अभियान रे दौरान स्वच्छ जल समुचित उपचार डायरिया से बचें हर बार मुद्दा मत है कार्यक्रम रखा जावेला।
1: इस अभियान के दौरान जैसे दस्त की रोकथाम के संबंध में जो गतिविधियां होती है शुद्ध पेयजल का सेवन साफ सफाई स्वच्छता इनके संबंध में जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जो हमारे वेरियस लाइन डिपार्टमेंट है जैसे इसमें UDH हो गया PHED हो गया और पंचायती राज रूरल डेवलपमेंट और हमारा WCD डिपार्टमेंट इन सबके साथ मिलकर एक जन जागरूकता का अभियान चलाया जाना है। इसके अलावा आशा कार्यकर्ता द्वारा घर घर जाकर प्रति बच्चा अगर घर में 5 साल का छोटा एक बच्चा है तो 2 ORS के पैकेट और 14 दिन की जिंक की गोली ये हम घर पर उपलब्ध कराएंगे।
0: प्रदेश रा आंगनबाड़ी केंद्र माए आज महिला और बाल विकास विभाग री ओर अभिभावक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बैठक राखी ची। इनरो खास मुद्दों पोषण संतुलित आहार और स्वास्थ्य तथा बच्चे के जीवन में पिता की भूमिका राखी चियो। विभागीय शासन सचिव पूनम बतायो कि मीटिंग रे दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विद्यार्थियां रमाए तांसागर केंद्र री आगली कार्य योजना बच्चा री आंगनबाड़ी केंद्र माए रोजीना हाजिरी शाला पूर्व शिक्षा कार्यक्रम और पोषण जुड़िया व्यवहार माए बदलाव रे बारा माए चर्चा कीनी। मौसम प्रदेश रा उत्तराद उगनी जिला माए आज ही कठे कठे आंधी बारिश हुई। हनुमानगढ़ माए आज हमारा तेज अंधड़ सागे हुई बरसात सड़क माथे पानी भर गयो। झुंझुनू माए दोपहर पाछे कई ठोणा जोरदार बायरो बाजण सागे बिरखा हुई। चूरू और डीग माए आंधी पाछे बारिश हुई वाणु मौसम ठंडो भे गयो। राज्य रा कई उगनी जिला माए आंधी बारिश रा समाचार है। दूजी कानी आतुणी हल्का माए हाल ही उमस और गर्मी रो जोर है। मौसम केंद्र जयपुर रे मुजब बीकानेर जयपुर भरतपुर अजमेर कोटा और जोधपुर संभाग माए आवता 4-5 दिन ताई आंधी बारिश चालता रहे वन रा आसार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 28 जून ने विचार बतावेला। ई कार्यक्रम री 135वीं कड़ी फैला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800-117800 मथे 26 जून ताई राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम रे जरिए ये विचार भेजा जा सके है। आखिर माए खास समाचार एक और फेर सुन ली रहो। राज्यपाल हरिभाव बागड़े कहो प्रदेश रा शूरवीर देश री हिफाजत माए खास काम कीनो। आयुष मंत्रालय 12वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनावन सारू

0: आज औपचारिक कार्यक्रम की शुरुआत की। बीकानेर जिला री श्री डूंगरगढ़ में आया सड़क हादसा रे कारण एक ही परिवार रा 6 जना री मौत। और प्रदेश में बच्चा ने 10 तो बचावन और इलाज शुरू। काल स्टॉप डायरिया कैंपेन शुरू करियो चावेला। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
1: एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सवाई माधोपुर के रणथंभौर चैनल से बोल रहे हैं। पेशकदम है कार्यक्रम सुगम संगीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

जगजीत सिंह की इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी सवाई माधोपुर के रणथंभौर चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही पल में आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम केंद्र सरकार के 12 वर्ष। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं निखिल सिंह।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूँ निखिल सिंह। 12 वर्ष इतिहास के पन्नों में ये एक छोटा सा अध्याय लग सकता है, लेकिन अगर आप किसी राष्ट्र की जीवन यात्रा की बात करेंगे और खासतौर पर अगर भारत की आजादी के बाद से जीवन यात्रा की बात करें, तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव में तब्दील हो चुका है। एक ऐसा पड़ाव जहां सपने संकल्प में बदलते हैं और संकल्प बदलाव का वाहक बनता है, बदलाव की एक नई तस्वीर गढ़ता है। पिछले एक दशक में या उससे थोड़े से ज्यादा वक्त में अगर हम बात करें, तो ये जो बदलाव है इसको बहुत तेज गति से हमने देखा है, महसूस किया है और बदलाव के मायने बदलते भी देखे हैं। और अब हम इन बदलाव के अगर महत्वपूर्ण तत्वों की बात करें, तो घर, शहर और ऊर्जा, ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आम नागरिक के जीवन की धड़कन, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, और इस धड़कन को संभालने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के पास है, वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आज हमारे साथ सीधा बेबाक संवाद करेंगे। स्वागत करते हैं हम केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जी। बहुत स्वागत है सर।
2: धन्यवाद।
1: बहुत लंबा आपका सर सफर रहा है मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का, तो सबसे ज्यादा फोन आजकल कहां से आते हैं, ज्यादा वक्त किस में गुजरता है, ये बिजली वाले विभाग में या फिर शहर वाले में?
2: देखिए, मेरे लिए दोनों विभाग इक्वली इम्पोर्टेंट हैं और उसमें कभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया कि मुझे कौन से विभाग को समय ज्यादा देना, कौन सा कम देना। जितनी जांच की आवश्यकता होती है वो विभाग के लोग हमको बताते हैं, हमारे मन में विचार आता है हम उनको बताते हैं, और मेरे पास समय की कमी होती नहीं है। अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे उठता हूँ, 1-2-3 घंटे अपने व्यक्तिगत काम के लिए आवश्यक होते हैं, 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मेरा सारा समय डिपार्टमेंट्स के लिए है, सारा जनता के लिए है, सारा समाज के लिए है, देश के लिए है, प्रदेशों के लिए है, इसलिए मुझे समय की कमी नहीं होती है। इसलिए जो जितना आवश्यक होता है मैं उन दोनों विभागों को देता हूं, और मुझे लगता है कि दोनों विभागों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। उसमें मैं किसी एक को कहूं कि ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, आवासीय व्यवस्था नहीं है, वो ठीक नहीं है।
1: ठीक बात है। अच्छा, अगर एक एक मंत्रालय की बात करें, तो जो आवासन और शहरी कार्य, इसमें मोदी 3.0 की बात करें, क्या मेन थ्रस्ट है, क्या प्राथमिकताएं, अगर हम आपसे समझना चाहें किन किन चीजों पर आपका फोकस है?
2: देखिए, फोकस के लिए अगर मैं कहूं तो जो सामान्य व्यक्ति है, खास करके जो गरीब व्यक्ति है, उसको हाउसिंग की, अफोर्डेबल हाउसिंग की एक जो जरूरत है उसके लिए हम उपलब्ध कराने में बहुत से काम कर रहे हैं और आगे करेंगे। पीएमएवाई प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, पहले पीएमएवाई 1 था, पीएमएवाई 2 हो गया, उसके माध्यम से हमने 2 करोड़ मकान देने हैं, 1 करोड़ 13 लाख हम दे चुके हैं, तो बाकी मकान भी इस अगले वर्षों के अंदर जिनकी सारी प्रक्रिया चल रही है, उनका चयन हो रहा है, उन सबको मकान उपलब्ध हो देंगे। अभी हमने यहाँ पर जो जजे कॉलोनीज हैं, यहाँ ड्यूसिम के माध्यम से, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता वो, ड्यूसिम के माध्यम से उनको मकान दिए जाए, इसका हम प्रयत्न कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नई जो स्कीम बनाई है वो टीओडी बनाई है।

0: ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ताकि उसके कारण से एक तीर से दो निशाने हो जाए। क्या मेट्रो के ट्रैक के इर्द गिर्द 500 मीटर में लोगों को मल्टी स्टोरी फ्लैट बनाकर के दिए जाए और उसमें कम से कम जो ट्रेवल करने का मूड है उनके जो रोड ट्रैफिक है वो खत्म होगा, मेट्रो से ट्रेवल कर सकेंगे। तो एक तरफ रोड का ट्रैफिक जाम खत्म करना, दूसरे उनको अफोर्डेबल हाउसिंग का लाभ मिल जाना, दोनों चीजें टीओडी पॉलिसी से होंगी। तो कई प्रकार की पॉलिसीज बन रही है और चूंकि दिल्ली सीधा सीधा हमारे मुंबई डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है इसलिए सीधी योजना हम कर रहे हैं। बाकी सब जगह प्रदेश को हम गाइडलाइंस देते हैं कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग में इस काम को करिए। पीएमएवाई में चार वर्टिकल्स हैं, गरीबों के लिए भी है, मध्यम वर्ग के लिए भी है और इससे ज्यादा पैसा लेकर के अपना बिल्डिंग बनाने वाले उनको लोन लेने की सुविधा दी हुई है कि उसमें भी हम इंटरेस्ट जो है उसका सबवेंशन करेंगे। ऐसा नहीं कि उनके लिए योजनाएं नहीं है, तो सबके लिए अलग अलग योजनाएं हैं। एक समय हम चाहते हैं कि देश में कोई परिवार ऐसा न रहे जिसके सिर पर छत न हो। हाउसिंग फॉर ऑल, ये प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन जो दिया हुआ है, इसको हम पूरा करें।
1: जी, एक बात आपने कही हाउसिंग फॉर ऑल, ये जो आपने कहा ना कि मध्यम वर्ग के लिए भी करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो हाउसिंग फॉर ऑल की आपने बात कही, एक तो सबको घर मुहैया कराना है लेकिन सबके जीवन स्तर भी ऊपर रहे और सिर्फ घर की बात नहीं बल्कि वो सुविधाएं जिसको कहते हैं ईज ऑफ लिविंग के साथ में, उसके लिए फोकस है।
0: बहुत चीजें हैं, केवल घर का छत के साथ काम नहीं चलता है, उसमें पानी भी चाहिए, उसमें गैस की चूल्हा भी चाहिए, उसके अंदर लाइट भी चाहिए, उसमें शौचालय भी चाहिए, उसमें ऐसी सब सुविधाएं जो एक घर में परिवार में चलाने के लिए आवश्यक हैं, वो सब मुहैया कराने के लिए योजनाएं बनाई हुई हैं। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 12 साल में इतनी योजनाएं इतनी व्यवस्थाएं दी हैं उज्ज्वला योजना के नाम से। अब मुझे लगता है कि परिवारों के अंदर प्राय प्राय सब घरों में गैस का चूल्हा कनेक्शन पहुंच गया है। इसी प्रकार पानी, लगभग करोड़ों के रूप में जो शायद 3.25 करोड़ नए कनेक्शन हमने जो अमृत में दिए हैं, पानी के कनेक्शन दिए हैं, तो स्वच्छ जल ये सबके घरों में पहुंचे, पानी पहुंच गया, अन्न सबके घरों में राशन हो। 80 करोड़ लोगों को ये जो मुफ्त अन्न योजना जो दी है, खास करके कोविड में बहुत ध्यान किया गया, वो हम दे रहे हैं। अब उसको पानी भी पहुंच गया, उसको अन्न भी पहुंच गया, अब उसके यहाँ रसोई भी व्यवस्था हो गई, बिजली पहुंच गई, लेकिन शौचालय उसकी भी आवश्यकता उतनी महती आवश्यकता है। तो इसमें भी लगभग 12 करोड़ ये शौचालय बनाए गए हैं, उसकी व्यवस्था 2014 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि घर घर में शौचालय चाहिए, जहां घरों में जगह नहीं है वहां कम्युनिटी टॉयलेट चाहिए, कम्युनिटी टॉयलेट की व्यवस्था की, बाजारों के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स इसकी व्यवस्था की। तो ऐसे एक से एक बढ़कर के काम, ये घर की आवश्यकताओं के हिसाब से सब योजनाएं दी गई हैं और उन सब योजनाओं में अब अगली योजना आती है कि उस परिवार की आमदन कैसे बढ़े। लाइवलीहुड की व्यवस्थाएं भी की, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, ड्रोन दीदी की व्यवस्था की, लखपति दीदी, हर परिवार का जो रोजगार बढ़े उसकी स्किलिंग की व्यवस्था, आमदन हो, सरकारी गरीब आदमी को सुविधाएं जितनी आवश्यक है वो दी जाए ताकि उसका जीवन सुखी हो। ईज ऑफ लिविंग के नाते से एक आदमी का सेटिस्फेक्शन लेवल, ये तभी ठीक हो सकता है जब उसकी सारी आवश्यकताओं की चिंता सरकार करे।
1: बिल्कुल ठीक बात है, और विकसित भारत जिसका हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं 2047 तक, वहां तक पहुंचना है तो जाहिर तौर पर अगर इन्हीं में आदमी उलझा रहेगा। लेकिन एक बात और सामने आती है, कई बार मध्यम वर्ग से जुड़े हुए लोग, आम आदमी जिसको हम कहते हैं, वो कहता है कि मकान खरीदना तो धीरे धीरे पहुंच से बाहर होता जा रहा है। कैसे, जो आपने अभी बताया, ये चीजें कैसे प्रसारित करें लोगों को कि सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिलती है या ये आपकी रीच में है?
0: ये अलग अलग शहरों की अलग अलग स्थानों की व्यवस्थाएं हैं, सब जगह एक जैसा नहीं है। जहां चीजें खास करके जमीन बहुत महंगी हो गई है, क्योंकि वो तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है, जमीन तो लिमिटेड है, कैन नॉट बी एक्सपेंडेड, इट्स नॉट द रबर, तो जमीन जितनी है उसी का उपयोग करना है। शहरों के अंदर विकास बहुत हो रहे हैं, शहरों के अंदर देश और दुनिया के इन्वेस्टर आ रहे हैं, उनके कार्यालय बन रहे हैं देश के अंदर, चाहे वो प्रदेश सरकारें हैं, चाहे हमारे केंद्र सरकार है, चाहे लोकल बॉडीज हैं, उनके काम बढ़ रहे हैं, तो उनकी आबादी बढ़ रही है। अब दिल्ली को लीजिए, दिल्ली की आबादी 2011 में 1.6 करोड़ थी, आज वो आबादी लगभग 3 करोड़ होने को पहुंच रही है। तो 15 साल में दुगुने से भी ज्यादा, लगभग 2.5 गुना ये आबादी हो गई है और हमें अनुमान ये है कि 2047 तक ये आबादी 5 करोड़ से पार करने वाली है। तो जब आबादी बढ़ेगी, जमीन उतनी है, ये समस्या आएगी। उसके लिए जो हमारी हाउसिंग पॉलिसी है, कंट्री टाउन टाउन कंट्री प्लानिंग की पॉलिसीज हैं, उसमें ऐसे बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी बनाया जाए, उनको दिया जाए, कॉस्ट जमीन की कम पड़े, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट लगभग बराबर रहती है। तो ऐसे वो प्लानिंग जितनी ज्यादा हम बना पाएंगे उतना ही लोगों को सुविधा मिलेगी। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को बहुत नजदीक महंगा मकान मिलता है, वो थोड़ा दूरी पर भी जाता है, तो उसके लिए हमने फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको लागू किया, RTSC बन रही है, मेट्रो खूब बन रही है। आज 1150 किलोमीटर मेट्रो पूरे देश में है, दिल्ली में भी लगभग 400 किलोमीटर से ऊपर अकेले एक शहर में ये पहुंच गई है। और मैं समझता हूं कि दुनिया के बड़े शहरों में न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा मेट्रो है, उसके बाद दिल्ली है। अगर देशों में बात करें तो सबसे ज्यादा चाइना।

0: में, उसके बाद यूएसए में, उसके बाद हमें थर्ड नंबर पर मेट्रो में है। तो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था आगे बढ़े, आरटीएस यानी अब मेरठ, जो हमारे यहाँ से 2-2.5 घंटे का सफर लगता था, आज 55 मिनट में दिल्ली से मेरठ आदमी पहुंच जाता है। तो रास्ते में बहुत स्थान है जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए उनको स्थान मिल जाते हैं। अगली रेलवे लाइन बहुत जल्दी अब दिल्ली से और करनाल, फिर दिल्ली से नीम राणा, ये सारी लाइनें बन रही हैं। तो 100-100 किलोमीटर के जो हमारे रास्ते हैं एनसीआर के एरिया में, इस समय वहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग के अच्छे स्कोप है। वहाँ लोगों को रहेंगे तो रोजाना आधे घंटे का ट्रेवलिंग करके दिल्ली में आएंगे। तो कैसा स्थान है, कैसी जगह है, ये 4-5 बड़े शहरों की समस्या है, बाकी बहुत शहरों की ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलुरु है, मोटे रूप से तो 3 शहर है। अदरवाइज फिर चेन्नई कलकत्ता में थोड़ी कम समस्या है, बाकी स्थानों पर सब अफोर्डेबल में कोई समस्या नहीं आती है। मध्यम
1: ठीक बात है। एक चीज और, इन शहरों को डेवलप करने की, और इतनी सारी चीज मेट्रो और बहुत बड़ा चेंज है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी हम जब बात करते हैं सीवर की, जब हम बात करते हैं जैसे बरसात के दिनों में आप देखते हैं शहरों पे, इन चीजों को बेहतर बनाने के लिए, इन चीजों से निजात पाने के लिए कितना काम किया जा रहा है, कितनी तेजी से किया जा रहा है, या ये कहें कब तक इस पे एक कंप्लीट परिवर्तन सा दिखेगा, कैसे समझे इसको?
0: देखिए, शहरों की जब शुरू होते हैं, शहर बनना या शहर को धीरे धीरे बढ़ना, उस समय किसी को कल्पना नहीं होती कि यहाँ कितना बड़ा लोड शहर पर पड़ेगा। ये स्टार्टिंग में जो प्लानिंग बनाई जाती है, उस
1: जैसे भी आपने दिल्ली का उदाहरण दिया कि 3 गुना 2.5 गुना बढ़ गए,
0: किसी को जब दिल्ली बसी होगी या दिल्ली को जब फैला हुआ होगा, किसी ने ध्यान ही नहीं किया होगा कि इतनी आबादी हो जाएगी। आज फिर भी आंकलन किए जा रहे हैं कि जिस गति से पहले बढ़ा इसी गति से और बढ़ेगा, तो आज से ही हम व्यवस्थाएं बनाना शुरू करें। मुझे गुरुग्राम का ध्यान में है, 80s में मैंने गुरुग्राम देखा था, एक गांव था, थोड़ा सा 7 कस्बा था, तो मुझे लगता है हार्डली वहां की 2 भी नहीं होगी 1.5 लाख की आबादी थी। ये 80s की बात है, आज वही आबादी वहां 40 लाख हो गई है। और उस समय जब ये शहर मॉडर्न सिटी जिसको गुड़गांव कहें, न्यू गुड़गांव कह लें, ये बना था 2004-5 के आसपास, उस समय भी किसी ने नहीं सोचा था गुरुग्राम इतना बढ़ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए प्लानिंग ठीक बनी नहीं, लेवल्स ठीक नहीं हुए, उसका जो एरिया है कैचमेंट एरिया कितना होगा, पानी कितना आएगा, उसको निकासी कितनी चाहिए। जब खाली होता तो पानी कहीं से भी निकल जाता, लेकिन जब विकास हो जाता तो पानी को पैसेज का नैरो साइज हो जाता है, तो नैरो साइज में उतना पानी निकलता नहीं है, फिर समस्याएं आती हैं। आज हमने उसके लिए कहा कि जो ऐसे स्थान समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए सीवेज सिस्टम द्वारा बनाया जाए, उसमें पानी निकासी की व्यवस्थाएं वो द्वारा बनाई जाए, उसमें जो केंद्र को सहायता करनी है केंद्र सहायता करेगा, स्टेट को अपना पैसा लगाना वो लगाएगा, यूएलवीज को भी फाइनेंशियली स्ट्रांग किया जाए ताकि वो भी उसमें शेयर करें। अब हमने पीछे अमृत वन अमृत टू योजना चलाई, इसीलिए चलाई, पीने का पानी भी और जो पानी की निकासी है वो भी। स्वच्छ भारत मिशन में हमने बनाया कि जो सीवेज सिस्टम है उसमें पानी को ट्रीट किया जाए और ट्रीटेड वाटर को रीयूज किया जाए, क्योंकि पानी की अपने में समस्या वैसे भी बहुत आने वाली है, उससे समस्या का हल होगा। इन सब चीजों पर भारत सरकार भी काम कर रही है, प्रदेश भी कर रहे हैं, मिल करके बड़े अच्छे कोऑर्डिनेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: अच्छा, छोटे जो शहर जिनकी हम बात करते हैं, टियर 2 टियर 3 शहरों, क्या इस तरह की योजनाएं, या ये हम पूछें आपसे सीधे कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ वर्षों में वहां के नागरिक क्या बदलाव महसूस करेंगे, क्योंकि हम लगातार बदलाव की बात कर रहे हैं, 12 वर्षों में देश के नागरिकों ने वो महसूस किया है।
0: अभी जैसे हमने एक नई स्कीम बनाई है, वो है अर्बन चैलेंज फंड। तो अर्बन चैलेंज फंड में 1 लाख करोड़ रुपया तो केंद्र सरकार की ओर से होगा, 1 लाख करोड़ रुपया प्रदेश सरकारें अपने पास लगाएंगी, 2 करोड़ रुपया आउटर एजेंसी से फाइनेंसिंग कराई जाएगी। तो 4 लाख करोड़ रुपया 5 साल में लगाना हमको, और इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए लगाना है। इसकी स्कीम सारी मंगवाई जा रही है, सब प्रदेश अपने अपनी स्कीम भेज रहे हैं, प्रदेशों को हमने बता दिया कि आपका इतना टारगेट है, इतनी स्कीम्स बना के लाओ, उसमें जो समस्याएं उनको दिखती हैं वो लाएंगे। इसी में साथ में हमने कंडीशन लगा दी कि जो छोटे कस्बे हैं, म्यूनिसपैलिटीज हैं, उनमें कम से कम 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें बना के आप लाओ। 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें अगर बनेंगी तो ऐसे 5 करोड़ में छोटे कस्बे का पानी की निकासी, पानी की सप्लाई, सीवरेज के, स्वच्छ भारत मिशन के, छोटे बड़े प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ रुपए में बहुत ज्यादा बन सकते हैं।
1: जी,
0: 5 करोड़ रुपए एक शहर के लिए
1: निश्चित तौर पर ये तब्दीली आएगी। एक बात और, जब हम बड़े बदलाव की बात करते हैं, हमने मेट्रो शहर की बात करी, स्मार्ट सिटीज, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, लेकिन स्वनिधि योजना जिसको कहते हैं कि रेहड़ी वाला, पटरी वाला, खोमचे वाला, उसकी लाइफ में परिवर्तन कैसे इसको कर रहे हैं, कितना बदलाव आया है आपको लग रहा है, और कितना आए हैं, कितना आगे जाना है?
0: मैं इस काम के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन को सलाम करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ कि कैसे उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं तो सब आ जाती है मस्तिष्क में, जो शासक होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, छोटी योजना और वो भी एक स्ट्रीट वेंडर, उसकी चिंता करना। तो उन्होंने स्पेशल योजना बनवाई, आज उस योजना को चलते हुए 6 साल हो गए हैं
1: जी।
0: और उस योजना में उन्होंने कहा कि जो ऐसा रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जिसके पास कोई गारंटी नहीं है देने के लिए, और वो जो बाजार से लोगों से साहूकार से पैसा लाता है, तो जितना पैसा लेता है साल भर में उसको डबल देना पड़ता है, तो वो अपनी कमाई तो वहां सारी निकल जाती है उसकी, फिर उसकी सहायता कौन करेगा? तो ये विषय

0: बताया कि ऐसा कोई भी रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जो शहर के अंदर काम करता है, किसी भी रूप में काम करता है, उसकी सिलेक्शन करिए, उनको सबको 10,000 रूपये की सहायता प्रदान करिए, बैंकों से दिलवाएंगे और उसको कहेंगे एक साल में इसको वापस करना है। यानी 10,000 रूपये लेता है तो महीने का अगर 1,000 रूपये भी देना शुरू करेगा तो उसके 10,000 दस महीने में समाप्त हो जाएंगे और उसका जो इंटरेस्ट है वो भारत सरकार देगी। केवल 1,000 के बदले में 1,000 ही देना है। साथ में फिर अगले साल में जोड़ा गया कि डिजिटल पेमेंट अगर वो लोगों से लेता है, उसकी व्यवस्था करता है, फिर उसका इंसेंटिव दिया जाएगा तो और उसमें लाभ हो जाएगा। फिर ये कहा कि एक साल में अगर 10,000 का फर्स्ट ट्रेंच का वो लोन वापस करता है तो अगले साल में वो 20,000 रूपये का ले सकता है, 20,000 का वापस करता है तो वो 30,000 का ले सकता है। बाद में स्कीम को हमने मॉडिफाई किया, 10,000 की जगह 15,000 कर दिया, 20,000 की जगह 25,000 कर दिया और 30,000 की जगह सीधा 50,000 कर दिया कि वो तीसरे बार में अगर 2 बार पैसा वापस करता है तो उसका हमारा भरोसा हो सकता है कि वो 50,000 रूपये ले ले, उसी तरीके से वो वापस करे। और यहीं तक नहीं, हमने कहा कि 50,000 के बाद उसको 30,000 रूपये का UPI कार्ड भी देंगे जो क्रेडिट कार्ड होगा, जितना पैसा चाहे बैंक से ले आए उतना जाके जमा कराए, उसका रेगुलर 2 महीने के अंदर जमा कराता रहेगा, नो इंटरेस्ट। 2 महीने से डिले करेगा तब थोड़ा इंटरेस्ट के ऊपर रखा है। बहुत रुचि जागी और रुचि जागने के बाद आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मोर देन 75 लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया है। 1,05,00,000 लोन्स यानी 75,000 को ऐसा कि 75 एक हो गए, कुछ लोगों ने फिर सेकंड ट्रेंच का लोन लिया, कुछ लोगों ने थर्ड ट्रेंच का लोन लिया, तो टोटल 1,05,00,000 लोन लिए जा चुके हैं। 75 लाख लोगों को लाभ हुआ है, जिसमें से 40 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पेमेंट अपना वापस भी किया है, बाकी अभी रनिंग में है और धीरे धीरे थर्ड ट्रेंच भी लेकर के वापस करने वाले भी 6-7 लाख हो गए हैं और वो 6-7 लाख लोग 50,000 का लेकर के उसको वापस कर चुके हैं। अगली योजना उनको दी गई मुद्रा योजना। मुद्रा योजना में भी आपको 1 घंटे में और आप बैंक में अप्लाई करिए, अपना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए और बैंक अगर सहमत हो जाता तो आपको 1-2 करोड़ जितना लोन चाहिए उतना मिल जाता। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स 10,000 का महीना से शुरू करके करोड़ रुपए तक कुछ लोग उदाहरण है ऐसे पहुंच गए हैं जिनके जीवन में बहुत खुशहाली आई है। उनको ये लगा कि हमारा सारा पैसा जो साहूकार को ब्याज देने में चला जाता था वो हमारे घर में बचता है। बहुत लोग इसमें लाभान्वित हुए और गुण गा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल। एक चीज जिसको कहते हैं मच टॉक्ड अबाउट आजकल वो है और वो थोड़ा सा मैं आम नागरिकों के दृष्टिकोण से भी समझना चाहूंगा कि ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम की बहुत सारी बात हुई है, अभी दिल्ली में हाल में ही ये कंप्लीट हुआ है, तो इसमें आउटकम डॉक्यूमेंट क्या रहा है? एक बात तो मैं ये समझना चाहता हूँ क्या उसकी विशेषताएं हैं। दूसरी चीज ये, जब हम ब्रिक्स की और इस तरह के फोरम्स की बात करते हैं तो लगता है कि जैसे बड़ी बड़ी बातें और कूटनीति की बातें होती होंगी इसमें, इसमें अर्बनाइजेशन और आम नागरिक के लिए क्या कुछ हो सकता है, मतलब कैसे इसको समझें?
0: पहले तो ये विषय समझने का है कि ब्रिक्स की स्थापना जब हुई थी तो ऐसे 5 देशों ने मिलकर के हमारे जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, ये एक प्रकार का आपस में परामर्श करने के लिए टू कंसल्ट ईच अदर टू कॉमन वन सॉल्यूशन फॉर ए प्रॉब्लम, इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था और इसके इस समय तक 13 अधिवेशन 12 हो चुके हैं, 13वां अब चल रहा है। हर वर्ष उन 5 देशों के साथ कुछ और देश भी जुड़ गए तो उन देशों को मिला करके अब 11 देश हो गए ब्रिक्स में। तो ऐसे हर वर्ष कोई ना कोई एक चेयरशिप किसी देश को मिलती है, उसके वहाँ ऐसे ब्रिक्स की मीटिंग्स होती हैं, एक नहीं होती है, हर डिपार्टमेंट की होती है। जैसे हमारी मोबा की हुई है, 2 दिन खत्म हुआ, अभी 25 तारीख को पावर की हो रही है, एग्रीकल्चर की हो रही है इंदौर में। तो जितने डिपार्टमेंट्स हैं सभी डिपार्टमेंट्स ब्रिक्स की मीटिंग्स अपनी कर रहे हैं, एक दिन दो दिन। बाद में सितंबर में शायद 11-12 सितंबर है, उस समय पूरे देश के इकट्ठे सभी इन 11 देशों के जो हेड्स आएंगे, प्रधानमंत्री जी उसको चेयर करेंगे और वो फिर बैठक का सब की निचोड़ निकाल करके फाइनल आउटपुट उसमें डॉक्यूमेंट निकलेगा। जहां तक अर्बन का ये 2 दिन का हमारा समाप्त हुआ ब्रिक्स का सम्मेलन, इसके अंदर सब लोगों ने खुल करके अपने अपने देशों में शहरीकरण में क्या क्या उनको समस्याएं आ रही हैं और क्या क्या उन्होंने अचीव किया है, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, एक एक करके हमने उनको सबको समय दिया, सबने बताया है और फिर बाद में सबकी समस्याओं को कैसे हल किया जाए तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जिन चीजों पर बनी उसका एक फिर हमने आज जो है कॉमन डिक्लेरेशन उसको अनाउंस किया है, जिस पर सब सहमत हुए। उसमें कोई पर्टिकुलर देश की समस्या को नहीं विचार किया जाता, लेकिन किस प्रकार किस दिशा में आगे बढ़ना है। रेजिलियंट हाउसिंग होना चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग होना चाहिए, एक वातावरण के नाते एनवायरमेंट के नाते से अच्छा होना चाहिए, एक शहर में किस प्रकार नागरिक को सुविधाएं ज्यादा मिले, उन नागरिकों का स्वभाव कैसे बदला जाए, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी लोगों के संस्कार और स्वच्छता कैसे उसको बनाए रखा जाए, लोगों को जो जो कठिनाइयां आ रही है उसको हल करने के लिए जैसे मानो वहां का एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, उसकी प्लानिंग कैसे हो, ये सारे विषय विचार किए जाते हैं। कोई इसमें ऐसा निर्णय नहीं है कि सबके ऊपर थोपा जाता, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एक डिक्लेरेशन के ऊपर साइन किया जाता है।

0: अच्छी बात यह है कि अर्बन के इस प्रकार के ब्रिक्स में आज तक जितने भी सम्मेलन हुए हैं मिनिस्ट्रियल लेवल पर यह पहली बार हुआ है, अदरवाइज अधिकारियों के स्तर पर होता रहा है। पहली बार स्टेट के कुछ मिनिस्टर्स वो कंट्रीज के वो आए, क्योंकि यहां मिनिस्टर के नाते मेरे पास दायित्व है, तो उस चेयरशिप में जी मीटिंग हुई। और अच्छी बात यह है कि जिसको बहुत कम लोग सोचते थे कि हम किसी कॉमन इशू के ऊपर कोई डिक्लेरेशन अपना डिक्लेयर कर पाएंगे कि मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन, इस पर कुछ शंकाएं जाहिर की गई। हमने कहा फिर भी प्रयत्न करेंगे। आखिर में कल और आज में सब विषयों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाया, हमारे अधिकारी ने बनाया, और आखिर में सबकी सहमति उसमें हुई, और उसके बाद शाम को उसको हमने डिक्लेयर किया कि भाई ये कॉमन डिक्लेरेशन हम जारी कर रहे हैं। लेकिन उसका फाइनल जो ड्राफ्ट है, अभी ड्राफ्ट बना है, फाइनल उसकी जो शेप आएगी वो सितंबर की जो ऑल इंडिया का हमारे सब डिपार्टमेंट का मिला के होगा उसमें डिक्लेयर किया जाएगा।
1: एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगा, बिजली बिल की भी बात लोग करते हैं लेकिन अब उससे ज्यादा सोलर सब्सिडी की बात। पीएम सूर्य घर कितना बड़ा गेम चेंजर आप मानते हैं?
0: बहुत बड़ा विषय है। कारण उसका ये है कि जो छोटा कंज्यूमर है उसकी उतनी शक्ति नहीं होती कि वो अपने बिल को भी पे कर सके
1: जी,
0: और जब बिल पे नहीं कर सकता, इच्छा सबकी रहती है पावर हमको मिले, क्योंकि आज पावर जो है हर गतिविधि की आवश्यकता बन गई है। घर में पे नहीं कर सकता उसको कठिनाई होती है, कभी कभी गलत संस्कार पड़ जाते हैं कि वो बिजली की चोरी भी करने लग जाता है। और जब ये सारी चीजें होती है तो इसका नुकसान जो होता है वो डिस्कॉम्स को होता है, घाटा स्टेट को भरना पड़ता है, फिर वो यूनिवर्सलाइज एक प्रकार से सोशलाइज फाइन हो जाता है सबको
1: जी,
0: चोरी कोई करे भरे सब। उसी में से स्कीम ये निकली कि क्यों नहीं हम पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना, कुछ स्टेट्स ने अपने फ्री बिजली के भी नारे लगाने शुरू किए, 600 यूनिट तक फ्री, 200 यूनिट तक फ्री। तो उस समय से ये विचार निकला कि हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट उनको दें कि बिजली उनको फ्री मिले, न केवल फ्री मिले बल्कि हम सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि अगर उनके पास सरप्लस हो जाए उस सौर ऊर्जा, तो सरप्लस वो ग्रिड में देकर के उसमें से पैसे भी कमाए, तो ऊर्जा दाता बन सकता वो। तो उसमें से 3 किलोवाट तक एक स्कीम बनाई गई, 1 किलोवाट तक 30,000, 2 किलोवाट तक 60,000, तीसरे किलोवाट का और 18,000 मिला के 78,000 भारत सरकार देती है। टॉप अप जो है स्टेट गवर्नमेंट्स करती है, कुछ थोड़ा पैसा कंज्यूमर अपने पास से लगाता है ताकि उसकी ओनरशिप बनी रहे, ओनरशिप के लिए थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना जरूरी होता है, तो वो उससे कराया। और आज जहां तक मैं आंकड़ा ठीक समझता हूं, हमारा टारगेट तो है 1 करोड़ सूर्य घर बिजली योजना का, लेकिन लगभग 20 लाख तक हम पहुंच चुके हैं। बाकी अंडर पाइपलाइन है, कुछ कठिनाइयां जिन प्रदेशों में आ रही हैं उनको दूर करने के लिए उन प्रदेशों को बताया है। कठिनाइयां वहीं ज्यादा आ रही हैं जहां घोषणाएं हो गई कि हम जीरो बिल लेंगे, तो उसमें जो कंज्यूमर है वो तो मेरा पहले ही जीरो आ रहा है, मुझे और एक नया इस पीएम सूर्य घर अपने घर में लगा करके क्यों परेशानी बोल लेनी। तो उनको कहा कि उनको और थोड़ा इंसेंटिव दीजिए ताकि अभी तो जीरो है, ये लगाएंगे तो उसमें इनकम भी हो जाएगी,
1: इनकम होने लगेगी।
0: इसी प्रकार अगर सौर ऊर्जा की बात करता हूं, किसानों की बिजली भी प्राय प्राय फ्री जाती है सब किसानों को, उनके ट्यूबवेल्स के ऊपर जो पंप्स हैं वो सौर ऊर्जा से वो पंप चलाए जाए ताकि उनका खर्चा भी ना हो, सरकार का खर्चा भी ना हो। वो भी कुसुम योजना के अंतर्गत, बहुत बड़ी मात्रा में कुसुम योजना के अंतर्गत सौर पंप लगाए जा रहे हैं
1: जी। पिछले 12 वर्षों में अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ा रीलोड आप किसको मानते हैं, कैसे आप देखते हैं?
0: आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा कि पता नहीं बाकी लोग मेरे उत्तर से सहमत होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो मुझे लगता है 12 साल पहले व्यक्ति अपने आप को महत्व देता था, परिवार अपने आप को देता था, और इंस्टीट्यूशन अपने आप को महत्व देती थी, राज्य भी अपने आप को महत्व देते थे, देश को महत्व कोई नहीं देता था। लेकिन 12 वर्षों में जो अंतर मैं देख रहा हूं, अब जैसे मोदी जी ने कहा कि इंडिया फर्स्ट, देश है तो सब ठीक, देश पहले सब बाद में, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के मन में देश के प्रति सोचने का स्वभाव बना है, देशभक्ति का भाव जागृत हुआ है, और इसी में से देश की एकता ये बनी है। ये हमारे विपक्षी मित्रों को समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने हमेशा व्यक्ति का स्वार्थ जगाया है, मोदी जी ने व्यक्ति को देश के साथ जोड़ा है, और देश के साथ जुड़ने के बाद समाज इकट्ठा होता जा रहा है, और अब धीरे धीरे वो दिशा इतनी ज्यादा बड़ी बन गई है, इतनी बड़ी लाइन हो गई है कि उस बड़ी लाइन को करने के लिए और कोई मुद्दा इससे बड़ा विपक्ष ढूंढे वो ढूंढ नहीं पाएगा। जब वो ढूंढ नहीं पाएगा तो अल्टीमेटली ये लाइन इतनी बड़ी बन गई है कि अब टूटने वाली नहीं है। बहुत परेशान हो रहे हैं, मैं उनको बेचारा तो क्या कहूंगा, क्योंकि पार्टी चलाते हैं, सब लोग अपने अपने लक्ष्य को लेकर चलते हैं। अब उनको यही लगता है कि मोदी जी को गालियां दे लो शायद जनता उसमें से आगे बढ़ जाए, लेकिन कुल मिलाकर के मेरे मन में है कि जैसे मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबकी एकता बनाने में मोदी जी हमारी सरकार ये कामयाब रही है, और यही सबसे बड़ा रीलोड मैं समझता हूं कि देश पहले बाकी सब बाद में, इससे बड़ा और कोई रीलोड अभी तक मैं महसूस नहीं करता।
1: जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो मनोहर लाल जी ने जो बातें कही, निश्चित तौर पर विकास के नए सोपान गढ़ने के सपने भी हैं, उसको बेहतर बनाने के और सपने भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात कही कि पिछले 12 वर्षों में लोगों का भाव बदला है, लोगों का नजरिया बदला है देश के प्रति, और देश के लिए काम करने का जो नजरिया बदला है वो शायद पिछले

0: 18 वर्षों का सबसे बड़ा टेक अवे है, ऐसा मानना है मनोहर लाल जी का। तो हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे निखिल सिंह। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, नाउ वी ब्रिंग यू एन इंटरव्यू विद मनीष सबरवाल, को फाउंडर ऑफ टीम लीज सर्विसेज।

इनाम 10,000 फिल्म में अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और साथियों को मजरूह के बोलों का संगीत के सुरम ढाला था आरडी वर्मन ने। साथियों फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं रणथंभौर चैनल से।

जाने मन फिल्म के गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी सवाई माधोपुर के रणथंभौर चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं किसान भाई सुनेंगे पसंद का कार्यक्रम कृषकों के लिए।

कार्यक्रम कृषकों के लिए सुनवाला सगड़ा बहन भाईयां को थांकी बहन कमली रो घणो घणो राम राम। किसान बहन भाईयां, आज आप चर्चा करांगा खेतों की मेड़बंदी निर्माण को काई महत्व होवे है और साथ ही सुनांगा आप मनोरंजन के लिए प्यारो सो लोक गीत। और किसान बहन भाईयां, आप साथ ही करांगा एक जरूरी भेंटवार्ता जी को विषय है आज को आप जैविक खेती अपनावा को। तो किसान बहन भाईयां और आप साथ में एक और सुनूंगा मनोरंजन के लिए प्यारो सो लोकगीत। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करा आपा ई लोकगीत से।

0: सॉन्ग फिल्म भयो बार सुनी था ने सीमा मिश्रा की आवाज में ये प्यारो से लोकगीत और अब कर आपा जरूरी चर्चा जी को आप करनी आज की चर्चा को विषय है मेड़बंदी निर्माण का महत्व कब काई हुए है और एक बारा में आज आपा जानकारी लेंगा। किसान बहन भाई आपा को मेड़बंदी सु घना ही लाभ हुए है। किसान बहन भाईयो खेत की मेड़बंदी वर्षा का जल को खेत में रोकवा उपजाऊ मिट्टी का कटाव को रोकवा और नमी का स्तर बढ़ाए राखवा के लिए अत्यंत ही प्रभावीशाली तरीको है। किसान बहन भाइयों ये कम लागत में कृषि उत्पादकता में सुधार और आय में वृद्धि करवाड़ी एक बुनियादी कृषि तकनीक है। किसान भाइयों मेड़बंदी का कृषि और पर्यावरण में बहुत ही महत्व है। किसान भाइयों यह महत्व इस प्रकार से है जल संरक्षण। किसान भाइयों मेड़ जल रोधक दीवार को काम करे छे जे बारिश का पानी को खेत सुभार बहवासु रोके है और किसान भाइयों पानी का खेत में रुकवासु भूमिगत जल स्तर बने रहे छे और मिट्टी का लंबे समय तक नमी बनी रहे है। मिट्टी का कटाव रोकवा के लिए भी यह आपके लिए बहुत ही जरूरी है। भारी बारिश या तेज हवाओं के दौरान खेतों की उपजाऊ मिट्टी और कम डाले गया पोषक तत्व बेकर बर्बाद न होवे मेड़ मिट्टी को अपनी जगह पर सुरक्षित रखे छे। और किसान बहन भाइयों आपने जो आपा खेता में जो भी आपा आवश्यक पोषक तत्व डाला छा तो वे आपड़ा खेत में ही बने रहे कोई और का खेत में न जाओ। उसके लिए भी आपा को मेड़बंदी करवो बहुत ही जरूरी है। उर्वरता में वृद्धि मिट्टी और खाद उर्वरक का खेत में ही रुकिया रेवासु भूमि की उर्वरता शक्ति नष्ट न होवे ईसु फसल अच्छी हो छे और उत्पादन में भी भारी बढ़ोतरी होवे है। और किसान बहन भाइयों सीमा का स्पष्ट निर्धारण मेड़बंदी सु खेतों की सीमाएं स्पष्ट दिखाई देव छे आपा को। अगर आपड़ा खेत की छोटी छोटी मेड़ होगी तो आपा को दिखाई न देगी और ऊंची ऊंची मेड़ आपड़ा खेत में होगी तो आपा को वे स्पष्ट दिखाई दे जाओगी जिसो आपड़ा पड़ोसी के साथ मेड़ सीमा को लेकर होबाड़ा विवाद सु भी बचो जा सके छे। घनी घनी जगह आजकल ज्यादातर मेड़ पे ही ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता रहो छे तो वासु आपा को बचाव हो जाओ छे। सरकारी योजनाओं का लाभ राज्य सरकारों द्वारा किसानों को खेत की मेड़बंदी और तारबंदी के लिए भारी सब्सिडी अनुदान भी दियो जावे है। इसके लिए स्थानीय कृषि विभाग या ई मित्र या जन सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन किया जा सके छे। किसान भाइयों फसलों की पैदावार बढ़ावा और मिट्टी का संरक्षण के लिए मेड़बंदी बहुत ही जरूरी है। तो किसान भाइयों जी भी किसान का आपड़ा जिया का भी मेड़ छोटी है आपड़ा खेत को पानी दूसरा खेत में जा रहे हो भेरर तो आपा को हड़ चलार मिट्टी की चाठी चलार कायसु भी आपड़ा जीसु भी आपा मेड़ बांध सका उसे आपा को मेड़ बांध देनी चाहिए ताकि आपड़ा खेत को पानी आपड़ा खेत में ही बने रहे और आपड़ा खेत को पानी आपड़ा खेत में बने रहोगे तो आपड़ा खेत की नमी ज्यादा दिन तक रहेगी। तो किसान बहन भाई यह अपने लिए बहुत ही जरूरी है। तो आपा को अवार ई टाइम पर बारिश आवाड़ी चे तो अवार ई टाइम पर आपा को मेड़बंदी कर लेनी चाहिए। तो किसान बहन भाई कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ सुना आपा यह जरूरी भेंटवार्ता आज का अपना भेंटवार्ता को विशेष है जैविक खेती को अपनावे आज की आवश्यकता छे। आपा को जैविक खेती अपना स्वस्थ धरा खेत हरा हो छे तो आपा को एक जानकारी दे रहा छे विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश बेरवा। तो किसान बहन भाई आपा एक ही जानकारी ले
1: आज बात करते हैं आज जैविक खेती आज की आवश्यकता और उसके लिए आपके साथ में है एक विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश बेरवा जी और इनका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार साहब।
2: नमस्कार जी।
1: आज की आवश्यकता जैविक खेती, ये जैविक खेती होती क्या, इसका क्या महत्व है बताएं।
2: सर जो हम रासायनिक उर्वरक यूज कर रहे हैं
1: जी
2: वो रासायनिक उर्वरक हमारे स्वास्थ्य को और हमारी मृदा के स्वास्थ्य को धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। स्वास्थ्य को देखते हुए हमारी जो बीमारियां हैं वो इतनी पनप रही

0: है बहुत ही ज्यादा। और पौधों में भी देखा जाए तो रासायनिक जो दवाइयां हम उपयोग कर रहे हैं उन दवाइयों से पौधों में भी कई सारी बीमारियां आ रही है, और उनका जो रसायन मिलता बचा हुआ जो रेजिड्यू है उनके अंदर, वो रेजिड्यू हमारे कैंसर कोजिंग एजेंट है,
1: जी
0: कैंसर का कारण बन रहे हैं। कि हम जितना केमिकल यूज करेंगे कैंसर के बीमार जो रोगी हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो जैविक खेती आज की जरूरत हो गई है हमारे स्वास्थ्य को, मृदा के स्वास्थ्य को, प्लस वातावरण को देखते हुए।
1: बिल्कुल
0: जैविक
1: सर,
0: खेती में एक महत्वपूर्ण चीज है कि हमारी पैदावार घट जाती है शुरू में, लेकिन उसके भी विकल्प है। उसका एक विकल्प में आता है कचरा अपघटक। कचरा अपघटक है, ये जीवाणु है जो गाय की आंत से निकाला हुआ है। इस जीवाणु को ये 20 रुपए की मात्र दवाई आती है, और उस दवाई में ये जीवाणु होता है, उस दवाई से जामवन का काम करती है। उस दवाई से हमें कई सारे विकल्प जो है हमारे जैविक उर्वरक है उनको बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, इस दवाई को बनाने का तरीका है इसका। 200 लीटर का प्लास्टिक का ड्रम ले, छायादार स्थान पर रखें, 200 लीटर पानी, 2 किलो गुड़, उसमें घोलने के बाद में छड़ी की सहायता से फिर इस दवाई को उसमें उड़ेल दें। उड़ेलने के बाद में बोरी से ढक दें, या जो अपना कार्टन का आता है उससे अपन इसको ढक दें, और दिन में 1 से 2 बार हम इसको हिलाते रहें। 7 दिन में जब हमारा घोल मटमैला कलर का हो जाता है, उस टाइम पे हमारा ये घोल काम में लेने को तैयार हो जाता है। इस घोल को कैसे उपयोग करते हैं, एक उपयोग है कि हमारी जो गोबर की खाद है या कचरा है उसको सड़ाने में काम में लिया जाता है।
1: जी
0: उसके लिए हम उस कचरे के ऊपर जैसे गड्ढा खोद के जो कचरा या गोबर की खाद डाल रहे हैं, तो इस घोल को अपन उसमें डालें और 60% नमी बनाए रखें।
1: जी
0: तो
1: पानी का
0: 40
1: छिड़काव करते रहे।
0: पानी का छिड़काव करते रहें, 60% नमी बनाए रखें,
1: जी
0: उसे 40 दिन में हमारी जो गोबर की खाद है और कचरा है वो सड़के कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और कंपोस्ट में बदलने के बाद में उसमें जो पोषक तत्व है जो हमारी गोबर की खाद से 2 से 2.5 गुना बढ़ जाते हैं,
1: जी जी
0: और वो बहुत अच्छा है। एक इसको हम जमीन में काम में पानी के साथ में इसको काम में लेते हैं। अगर 1 एकड़ जमीन में
1: जी
0: इसको 1,000 लीटर घोल को अगर 1 साल में अपन चला देते हैं, तो जिस जमीन में अगर जूते पहनने के बाद भी
1: हाँ
0: हमारे चिन्ह नजर नहीं आते उसमें पैर दसना चालू हो जाते हैं, और जो किसान का मित्र है केचुआ वो
1: जी
0: पनपना चालू हो जाते हैं।
1: जी
0: तीसरा
1: जी
0: इसका उपयोग है कि हम इसका फसलों पे सीधा स्प्रे कर सकते हैं। इसका 50% घोल का अगर फसलों पे स्प्रे करते हैं,
1: हाँ
0: छिड़काव करते हैं, तो हमारी जो बीमारियां आ रही है कीट और बीमारियां उनसे
1: जी
0: 70 से 80% हम बचत कर सकते हैं पैसों की। जो रासायनिक दवाइयां काम में ले रहे हैं उन दवाइयों में हम इसकी बचत कर सकते हैं।
1: जी
0: इससे हम जैविक कीटनाशक बना सकते हैं, जैसे
1: फिर
0: नीम है, आंक है, धतूरे हैं, जितने भी कड़वे और कई सारे पत्तियां, जैसे अपने पास यहाँ पर अमरूद की है, करंज की पत्तियां अवेलेबल है, इन पत्तियों को 2-2 किलो पत्तियों की मात्रा ले, 50 किलो इसका घोल ले और
1: जी
0: उसमें कुट्टा बना के काट के और उसमें डाल दे। 20 से 25 दिन में उनका जो अर्क है वो पूरा बाहर निकल जाएगा, यानी कि अमाइनो एसिड जो प्रोटीन ग्रोथ रेगुलेटर होता है वो सारा बाहर निकल जाएगा। वो ग्रोथ रेगुलेटर और कीटनाशक दोनों का काम करेगा। अगर इसमें कॉपर की छड़ और मिला जाते हैं तो
1: जी जी
0: कॉपर फंजीसाइड का भी वो काम
1: काम
0: करेगा, तो
1: करेगा,
0: कीट बीमारी और प्लस पौधे की वृद्धि से अच्छी
1: अच्छी
0: हो
1: होती
0: जाती
1: है।
0: है। हम दालों से भी ग्रोथ रेगुलेटर बना सकते हैं। दालों
1: हाँ
0: से 50 लीटर का इसको घोल ले, और 50 लीटर के घोल में 5 प्रकार की दालें दरदरी पीस के इसमें डाल ले। 25 से 30 दिन
1: जी
0: का समय में उन दालों में जितना भी प्रोटीन है वो बाहर आ जाएगा और हमारा अच्छा ग्रोथ रेगुलेटर बन जाएगा। ये जो कीटनाशक और ये दालों का जो ग्रोथ रेगुलेटर है इसका छिड़काव करने का इसमें 20 गुना पानी मिला के लेते हैं, छान लें
1: जी
0: और फिर 20 गुना पानी मिलाएं और छिड़काव करें इसमें।
1: जी जी
0: हम जैसे कीटनाशक जो बनाते हैं, नीम ऑयल है
1: जी
0: जो
1: हाँ
0: हमें प्योर नीम ऑयल नहीं मिलता है,
1: हाँ
0: तो प्योर नीम ऑयल अपन घर पर बना सकते हैं।
1: वो कैसे?
0: जो नीम की निम्बोलियां होती है उन निम्बोलियों को इकट्ठी करके और उनको दरदरी पीस के
1: जी
0: इस घोल में डाल दें, तो
1: जी
0: डालने के बाद में 20 से 25 दिन बाद में
1: हाँ
0: जितना भी अपने निम्बोलियों में तेल है वो
1: हाँ
0: तेल बाहर निकल जाएगा, और
1: हाँ
0: उस तेल को अपन अलग पात्र में कलेक्ट करके साल भर तक उसको काम में ले सकते हैं।
1: जी, वो कौन कौन सी कीट बीमारी में काम देता है?
0: वो सकिंग पेस्ट के लिए सबसे बढ़िया, जो चूसने वाले कीड़े, सबसे
1: हाँ
0: ज्यादा बीमारी हमारी चूसने वाले कीड़ों की ज्यादा आ रही है
1: सभी फसलों में
0: सभी फसलों में।
1: तो बहुत अच्छा है, तो सब
0: जैसे हम मिर्ची को लेते हैं तो
1: जी
0: मिर्ची में माथा बनने की समस्या आती है,
1: आती है,
0: टमाटर में भी आती है, अपने पपीता में भी आ रही है,
1: आ रही है।
0: और कई सारे दूसरी फसलों में भी, अपने सरसों में भी आ रही है।

0: तो इन फसलों में इसको अपन काम में ले सकते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है ये तो डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। आपने जिसे आज की आवश्यकता है जैविक खेती, इसके साथ में आपने वो कहते हैं ना जीरो बजट खेती,
0: जीरो
1: और इसमें कम लागत में अच्छी आमदनी और गुणवत्ता वाली जो फसल पैदा करते हैं वो होती है जैविक खेती के अंतर्गत, जो मिट्टी के स्वास्थ्य को भी अच्छा रखे, मानव स्वास्थ्य को भी वो अच्छा रखती है। तो इसके लिए किसान भाइयों, रासायनिक उर्वरकों को धीरे धीरे कम करते जाओ और जैविक खाद, जैविक खेती की ओर ध्यान देंगे तो आप और हम सभी स्वस्थ भी रहेंगे और अपने मिट्टी जो है उसका स्वास्थ्य भी सही रखेंगे। और क्या आप सुझाव देना चाहोगे इसके बारे में किसान भाइयों को, क्या किस तरह से सलाह दोगे कि इसकी ओर अब उनका रुझान, कई किसान भाइयों को तो है लेकिन फिर भी और
0: बढ़े। एक विकल्प और है
1: जी,
0: कौन सा? कचरा अपघटक के अलावा
1: जी
0: वर्मी वाश,
1: हाँ,
0: जो हमारी जो केचुए की खाद बनाते हैं, तो केचुए की खाद पे जो पानी डालते हैं
1: जी,
0: वो पानी से जो मलमूत्र और पसीना जो केचुए का है वो निकल के अगर उसको कलेक्ट कर लें अपन और उसका अगर फसलों पे स्प्रे करें तो हमें पोषक तत्व जो है वो देने की ज्यादा जरूरत, हमारी पैदावार घटती नहीं है।
1: अच्छा।
0: उससे क्या है, अगर हम 15 दिन के अंतराल पे अगर इसका और प्लस वेस्ट डिकम्पोजर का इन दोनों को मिला के देते हैं तो हमारे उस वर्मी वाश जो है उसमें सारे के सारे पोषक तत्व होते हैं,
1: हाँ,
0: जो 16 पोषक तत्व पौधे को चाहिए
1: जी,
0: और
1: जी।
0: उन पोषक तत्व पौधे को मिल जाएंगे तो उसको पोषक तत्वों की जरूरत नहीं पड़ेगी, पौधा स्वस्थ रहेगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उसमें ज्यादा रहेगी। वर्मी वाश बनाने के लिए या तो हमारी जो बेड है उसको हल्का ढलान पे रखें
1: जी
0: पानी पे दे और लास्ट में एक नल लगा दे, उससे हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं।
1: जी जी जी जी
0: या फिर हम ड्रम ले लें 50 लीटर का, उस ड्रम में नीचे जो ईंट वाले पत्थर हैं चार चार पांच पांच इंच वाले, पहले वो जमा दे आधा फीट, उसके बाद में रोड़ी, फिर उसके बाद में बजरी, बजरी जमाने के बाद में फिर हमारा ठंडा गोबर जो अपन वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं
1: जी,
0: उसके ऊपर डालने के बाद में हम उसमें केचुए छोड़ दें और ऊपर एक मटकी रख दें थोड़ा सा स्टैंड लगा के और उस पे एक छेद कर दें जो बूंद बूंद पानी हो टपकता रहेगा, वो नीचे इकट्ठा होता रहेगा, वो नीचे जो मोटे मोटे पत्थर हैं वहां पर अपना वर्मी वाश इकट्ठा हो जाएगा और उसको फिर अपन फसलों में 5% का घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं।
1: कर सकते हैं, ये विधि बहुत बढ़िया आपने बताई है डॉक्टर साहब। और इस तरह से किसान भाई करें तो उनकी लागत भी कम होगी और आमदनी ज्यादा बढ़ेगी, अच्छी फसल होगी। कई तरह के कीटनाशक जो खरीदते हैं दवाइयां, उनमें फालतू का जो पैसा जाता है और फिर भी नुकसान उठाते हैं, तो इससे बचाव होगा। किसान भाइयों, आज की बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी है और आवश्यकता भी है।
0: ये दो विकल्प तो है ही है
1: जी,
0: इसके साथ में जैव उर्वरक भी आ रहे हैं
1: जी, वो किस
0: कई सारे
1: जी,
0: जैसे अपना ये राइजोबियम है,
1: हाँ,
0: कल्चर है
1: जी, जी।
0: इनका इस्तेमाल करने से राइजोबियम जो कल्चर है
1: हाँ,
0: वो हमारा वासमान में जो वातावरण में जो नाइट्रोजन है उसको पौधों को उपलब्ध करवाते हैं, तो हमें इसका भी उपयोग करना चाहिए। और जैविक जैसे ट्राइकोडर्मा है
1: जी,
0: जड़ से संबंधित या बीमारी से संबंधित जो बीमारी होती है ट्राइकोडर्मा है, सुडोमोनास है, एसिलोमाइसीज है, इनको भी किसान को उपयोग करना चाहिए। ये एक विकल्प है और जैविक की तरफ बढ़ने से जितना जल्दी इन चीजों को सबको शामिल करते हैं तो बहुत ही जल्दी हम जैविक की तरफ और स्वास्थ्य को, मृदा के स्वास्थ्य को प्लस उनका स्वाद जो हम बाहर से मार्केट से जिसमें केमिकल यूज किया हुआ है उन सब्जी को लाते हैं तो उसको ना तो स्वाद आता है और बनने में भी पकने में भी बहुत समय लगता है उसको।
1: जी बिल्कुल सही
0: तो
1: बता रहे हैं,
0: अगर अपन जैविक की तरफ लेते हैं तो स्वाद तो अच्छा होता ही होता है और साथ में तुरंत पक जाती है,
1: स्वास्थ्यवर्धक भी होता है,
0: स्वास्थ्यवर्धक होता है, तो इन चीजों को भी हमें शामिल करना चाहिए
1: जी।
0: और कचरा अपघटक को तो बहुत ही बढ़िया चीज है, इसको तो उपयोग में लेना ही चाहिए
1: जी। बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी है किसान भाइयों को, इस ओर ध्यान दे किसान भाइयों। और आज के अब धीरे धीरे जैसे परिवर्तन हो रहा है, नवाचार अपना रहे हैं खेतीबाड़ी में, तो जैविक सबसे बड़ा एक आधार है जो लंबे समय तक आपके और हमारे स्वास्थ्य को और मिट्टी के स्वास्थ्य

105.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सवाई माधोपुर के रणथंभौर चैनल से बोल रहे हैं। पेश खिदमत है कार्यक्रम यादों के स्वर।

किशोर कुमार और साथियों का भी आप सुन रहे थे खामोशी फिल्म में। गुलजार के बोलों का संगीत को सुरम ढाला था हेमंत कुमार ने। साथियों यादों के स्वर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रणथंभौर चैनल से।

किशोर कुमार और साथियों का भी आप सुन रहे थे बिन फेरे हम तेरे फिल्म में। इंदिवर के बोलों को संगीत को शर्म ढाला था उषा खन्ना ने। साथियों

कुदरत फिल्म गिजगिद के साथ ही फिर यादों के स्वर कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी सवाई माधोपुर के रणथंभौर चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही पल में आप सुनेंगे समाचार संध्या। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, AI चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथि एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
1: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवोटेक जैसे बड़े आयोजन में भारत AI पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
0: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
3: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए

0: मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
1: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ के रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
2: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक हैं। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे या पूरे देश में ट्रेन चले।
1: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
4: एलएनजी कैरियर दिशा
5: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
3: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य, रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: FM 101.5 MHz पर हम आकाशवाणी सवाई माधोपुर के रणथंभौर चैनल से बोल रहे हैं। पेशेगत

है कार्यक्रम फोन करेंगे सुने, फोन करेंगे सुने कार्यक्रम। सबसे पहला फोन हमें किया है टिपरिया सागर एमपी से उमाशंकर पटेल, शांति, प्रियांशी, नंदनी, माधव और इनके सभी परिवार वालों ने। आपने सुना चाहे अंदाज फिल्म का गीत, तो पटेल परिवार सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

साथियों फोन करेंगे सुने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रणथंभौर चैनल से। अगला फोन हमें किया है मथुरा यूपी से शारदा प्रसाद प्रजापति, नवीन, कविता, गोविंद, सिमरन, व्योमिनी, पुरुंजय और इनके सभी परिवार वालों ने आपने सुना चाहे नरसिम्हा फिल्म का गीत। तो प्रजापति परिवार सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

साथी हम फोन करेंगे सोने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रणथंभौर चैनल से। अगला फोन हमें किया है पटेल नगर मलोड पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया ने। आपने सुनना चाहे अमर फिल्म का गीत, तो जाजोरिया जी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

साथियों फोन करेंगे सुने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रणथंभौर चैनल से। अगला फोन हमें किया है कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से हरीश देश पांडे ने। आपने सुना चाहे घर फिल्म का गीत, तो देश पांडे जी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

साथियों फोन करेंगे सुने कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं रणथंभौर चैनल से। अगला फोन हमें किया शक्तिनगर उदयपुर से जगदीश ने। आपने सुना चाहे कलयुग फिल्म का गीत, तो जगदीश जी सुनिए अपनी पसंद का यह गीत।

साथियों फोन करेंगे सुने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रणथंभौर चैनल से। अगला फोन हमें किया है शहर सवाई माधोपुर से सतवीर सिंह ने। आपने सुनना चाहे सुल्तान फिल्म का गीत, सतवीर जी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

साथियों फोन करेंगे सुने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रणथंभौर चैनल से। अगला फोन हमें किया है चौथ का बरवाड़ा से लक्ष्मीकांत ने। आपने सुनना चाहे किस फिल्म का गीत, लक्ष्मीकांत जी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: एक फिल्म के गीत के साथ ही फोन करेंगी सुने कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी सवाई माधोपुर के रणथंभौर चैनल से बोल रहे हैं। सुनते हैं कार्यक्रम आज के फनकार।
1: बख्शी का लिखा ये गीत आपने सुना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। चरस फिल्म का यह नगमा था। लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही आपके लिए ये प्रोग्राम अब संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आप

नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार, जिनकी अदाओं में नजाकत, जिनकी गायकी में नफासत है, जिन्होंने अपने हुस्न और हुनर के जरिए फिल्मी पर्दे पर एक नई इबारत लिखी है, वो हैं आज के फनकार।

0: करते हैं।
1: वो पास रहे या दूर रहे, उनकी आवाज़ जब हो पास तो बस मन सुकून और चैन से भर जाता है।
0: दिल नादान तुझे हुआ क्या है?
1: गम की दवा बन जाती है उनकी आवाज़ और उनकी अदायगी। आज के फनकार कार्यक्रम में चर्चा गायिका और अदाकारा सुरैया की।

सुरैया बचपन में बड़े नाज नखरे के साथ पली बढ़ी। वे अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। 15 जून 1929 को गुजरांवाला पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है, वे जन्मी थी। बचपन में उनका नाम था सुरैया जमाल शेख। बाद में अभिनय और गायन की दुनिया में वे सुरैया के नाम से मशहूर हुई।

सुरैया के फिल्मी करियर के शुरू होने की बड़ी दिलचस्प कहानी है। गुजरे जमाने के मशहूर खलनायक जहूर सुरैया के चाचा थे और उनकी वजह से 1937 में उन्हें फिल्म उसने क्या सोचा में पहली बार बाल कलाकार के रूप में भूमिका मिली। वो स्कूल की छुट्टियों के दिन थे जब वे मोहन स्टूडियो में फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने गईं। तब निर्देशक नाना भाई वकील की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने सुरैया को एक ही नजर में मुमताज महल के बचपन के रोल के लिए चुन लिया। ये बात सन 1941 की है। इसी तरह संगीतकार नौशाद ने भी जब

1937 में उन्हें फिल्म उसने क्या सोचा में पहली बार बाल कलाकार के रूप में भूमिका मिली। वो स्कूल की छुट्टियों के दिन थे जब वे मोहन स्टूडियो में फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने गईं। तब निर्देशक नाना भाई वकील की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने सुरैया को एक ही नज़र में मुमताज महल के बचपन के रोल के लिए चुन लिया। ये बात सन 1941 की है। इसी तरह संगीतकार नौशाद ने भी जब पहली बार ऑल इंडिया रेडियो पर सुरैया की आवाज़ सुनी तो उन्हें फिल्म शारदा में गाने का मौका दिया।

एक वक्त था जब रोमांटिक हीरो देवानंद सुरैया के दीवाने हुआ करते थे और सुरैया थी हीरो ग्रेगरी पैक की दीवानी। देवानंद को ये बात अच्छी तरह से पता थी। लोगों का ये मानना है कि सुरैया के प्रिय हीरो ग्रेगरी पैक की एक्टिंग के स्टाइल को देवानंद ने कॉपी की और देवानंद के अभिनय का दीवाना हुआ सारा जमाना। तमाम अभिनेताओं ने देवानंद के अभिनय के अनोखे अंदाज को अपना अंदाज बनाया। धीरे धीरे देवानंद और सुरैया के बीच मोहब्बत की एक डोर बंध गई, लेकिन अंततः ये जोड़ी वास्तविक जीवन में जोड़ी नहीं बन पाई। वजह थी सुरैया की दादी, जिन्हें देव साहब पसंद नहीं थे, मगर सुरैया ने भी अपने जीवन में देव साहब की जगह किसी और को नहीं आने दिया। ताउम्र उन्होंने शादी नहीं की और मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित अपने फ्लैट में अकेले ही जिंदगी जीती रहीं।

फिल्म जीत के सेट पर देवानंद ने सुरैया से अपनी मोहब्बत का इजहार हीरे की अंगूठी देकर किया था। सुरैया के लिए भी ये फिल्म

जाता है देवानंद ने सुरैया को टूट कर प्रेम किया था। रोमांसिक विद लाइफ संस्मरण में देवानंद ने लिखा था, सुरैया की आंखें बड़ी खूबसूरत हैं। हाँ, मैंने उन्हें प्यार किया था, इसे मैं अपने जीवन का मासूम प्यार

जब देवानंद की फिल्म अफसर बन रही थी तो सचिन देव बर्मन ने सुरैया के लिए एक गीत तैयार किया, जबकि एस डी बर्मन साहब खुद बड़ा अच्छा गाना गाते थे। सुरैया ने देवानंद से कहा कि सिचुएशन बदल कर ये गीत बर्मन साहब से ही गवाया जाए, लेकिन बर्मन साहब राजी नहीं हुए। वे बोले, ये गीत खास तौर पर सुरैया के लिए ही बनाया गया है, सो ये गाना सुरैया ही गाएंगी। और फिर ये गीत सुरैया ने गाया और हम सब के लिए वो गाना मन का मोर बन गया।

0: सुरैया विदेशी एक्टर ग्रेगरी पैक की दीवानी थी, ये बात उनके चाहने वालों को बखूबी मालूम है। लेकिन इस बात को वे किस खास अंदाज में कहती थी, सुनिए।
1: 1952 के फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड के डायरेक्टर मिस्टर फ्रैंक कापरा आए थे। बातचीत के दौरान मैंने उनसे कहा, ग्रेगरी पैक की फिल्में मुझे बहुत पसंद हैं, आप उनसे ये जरूर कह दीजिएगा। और फिर मिस्टर कापरा ने मेरा फोटो और मेरा पता ले जाकर जब ग्रेगरी पैक को दिया तो उन्होंने मुझे एक खत लिखा कि कभी मौका हुआ तो हिंदुस्तान आकर आपसे जरूर मुलाकात करूंगा। लेकिन मैं तो यही समझी थी कि वो क्या आएंगे और क्या मुलाकात करेंगे। फिर करीब 2 साल बाद एक दिन फिल्म बिल्वा मंगल की शूटिंग से मैं थकी हुई आई और सो गई। रात को करीब 12 बजे मुझे मम्मी जगाने लगी, उठो उठो देखो बाहर कौन आया है, ग्रेगरी पैक तुमसे मिलने आए हैं। पहले मैं ख्वाब समझी मगर जब नींद टूटी तो ये हकीकत थी।

सुरैया गायिका और अभिनेत्रियों की आखिरी पीढ़ी थी। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो नूरजहां और खुर्शीद सरहद के उस पार चली गईं, पर सुरैया हिंदुस्तान में ही रहीं। लगभग 20 बरस लंबे अपने करियर में उन्होंने बतौर हीरोइन काम किया। अपने गाने उन्होंने खुद गाए। उन्होंने मोहम्मद रफी, तलत महमूद जैसे दिग्गज गायकों के साथ गाने गाए।

50 के दशक में एक दौर ऐसा आया जब सुरैया की फिल्में चल नहीं रही थीं। इसी दौर में सोहराब मोदी के लिए उन्होंने फिल्म मिर्जा गालिब में काम किया। ये एक तरह से उनकी आखिरी कामयाब फिल्म थी। कमाल की बात ये है, मधुबाला और नरगिस जैसी अभिनेत्रियों ने इस फिल्म में अभिनय के लिए कोशिश की, पर ये रोल सुरैया को मिला। ये उनके गायन के सफर के लिए खूबसूरत तोहफा था। प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल पाने वाली ये

0: दोस्तों, क्या आपको मोती महल फिल्म का ये गाना याद है, मोटर बिगड़ने का?
1: कभी न बिगड़े किसी की मोटर रस्ते में, कभी न बिगड़े किसी की मोटर रस्ते में, खड़े रहो बस बेबस।

सन 1958 फिल्म मालिक में आया सुरैया का एक नायाब गाना, साथ में तलत महमूद की आवाज, संगीतकार गुलाम मोहम्मद।

सुरैया ने उस समय फिल्मों को अलविदा कहा जब वे और फिल्में कर सकती थीं। उनकी आखिरी जिंदगी अकेलेपन के साए में गुजरी और फिर 31 जनवरी सन 2004 में उन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गई उनकी आवाज, उनकी तस्वीरें और जिंदगी का उनका दर्द।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी गायिका और अदाकारा सुरैया पर। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: FM 101.5 MHz पर हम आकाशवाणी सवाई माधोपुर के रणथंभौर चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही पल में आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल जगत। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: खेल जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं दो भेंट वार्ताएं, जिनमें सबसे पहली भेंट वार्ता है हैंडबॉल खिलाड़ी एवं कोच श्यामवीर सिंह राजावत और चंद्रवीर सिंह राजावत से रविकेश मीणा की बातचीत। ये आकाशवाणी सवाई माधोपुर केंद्र का अंशदान है।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में आए हैं मेहमान के रूप में श्याम सिंह राजावत जी, निवासी न्यू जवाहर कॉलोनी ठींगला सवाई माधोपुर से। दूसरे मेहमान के रूप में पधार रहे हैं हमारे पास खिलाड़ी चंद्रवीर सिंह राजावत जी, निवासी बाल मंदिर सवाई माधोपुर से। कार्यक्रम में आप दोनों का स्वागत है, नमस्कार जी।
2: नमस्कार सर।
1: तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्याम सिंह राजावत जी से। श्याम सिंह जी, आपकी खेल जगत की शुरुआत कहाँ से हुई है?
2: सर, जब मैं 12 साल का था तब से हैंडबॉल खेलना शुरू किया
1: जी।
2: स्टार्टिंग से सब जूनियर टूर्नामेंट खेले, कई सारी जूनियर भी खेले, हम लगभग 30 से 35 चैंपियनशिप खेली मैंने। अभी तक ठीक है, हम खिलाड़ी के साथ साथ कोचिंग भी दे रहे हैं बच्चों को
1: जी।
2: तो हम छोटे बच्चों को भी तैयार कर रहे हैं, वो भी हर साल यहाँ से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, मेडल ला रहे हैं, अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं और निरंतर प्रतिभा बाहर निकल रही है सवाई माधोपुर से।
1: बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा चंद्रवीर जी, आपकी शुरुआत कब और कहाँ से आरंभ किया आपने खेलना?
3: सभी को नमस्कार। खेलने का तो ये है साहब, बचपन में जब एक बार गलियों में कॉलोनियों में खेलना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे वही कोई किसी को देखते हैं और उनको अपना आइडियल बनाते हैं, ऐसे समय पे कुछ सलाह देने वाले मिल जाते हैं, कोचेज मिल जाते हैं, तो वो खेल को निखारते हैं। तो अमूमन छठी सातवीं आठवीं क्लास से जो टीचर थे हमारे सीडीएल जी भार साहब, मनटाउन स्कूल में जो पीटीआई थे, उन्होंने मुझे पहली बार देखा और मेरे को टीम में लिया
1: जी।
3: उसके बाद ये सफर चलता रहा, बिल्कुल आज तक चल रहा है।
1: बिल्कुल अच्छा, हैंडबॉल आने से पहले आपको कहीं से प्रेरणा मिली श्याम सिंह राजावत जी?
2: सर, स्टार्टिंग जब सवाई माधोपुर में हम खेलना शुरू किया था तब चंद्रवीर सर ही कोच थे हैंडबॉल के।
1: अच्छा, आज गुरु चेला दोनों साथ
2: हैं। उन्होंने स्टार्ट किया था, तब से हम आज तक हैंडबॉल खेल रहे हैं और खिला भी रहे हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं। उसके बाद राजस्थान लेवल पे बात करें तो आपके प्रदीप सिंह जी है जो अभी काउंसिल में कोच लगे हुए हैंडबॉल के, उन्होंने भी काफी सहयोग मिला, उनसे सीखने को काफी कुछ मिला। और सबसे पहले उनकी आज ही काउंसिल में वो कोच लगे, सबसे पहली पोस्टिंग सवाई माधोपुर ही थी।
1: अच्छा,
2: तो उन्होंने यहाँ 3-4 साल तकरीबन रहे, काफी कुछ बच्चों को सिखाया, ग्राउंड चलाया, उनसे काफी कुछ सीखने को मिला।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा चंद्रवीर जी, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, आपके गुरु कौन है आरंभिक, और इस खेल में कैसे आपकी रुचि बढ़ी है?
3: खेल में क्योंकि जब मैं कॉलेज में था, वहाँ कॉलेज में जब ग्रेजुएशन में था, तो वहाँ हमारे सर थे और दोस्त लोग थे जो उन्होंने कहा हैंडबॉल में बुलाया। बेसिकली मैं खेलता फुटबॉल था और उन्होंने मुझे बुलाया हैंडबॉल में। तो हैंडबॉल की स्पीड और हैंडबॉल का मतलब एक कह सकते हैं बड़ा फास्ट गेम है
1: जी,
3: तो उसको देख के मैं थोड़ा अट्रैक्ट हुआ और फिर मैंने कहा यार खेलते हैं, खेलने लगे। फिर उसमें बूस्टअप कर दिया कोच प्रियदेव सिंह जी ने, जिनकी पहली पोस्टिंग 2011-12 में राजस्थान काउंसिल में कोच की भर्ती, उसमें चयन हुआ उनका, उनकी पहली पोस्टिंग सवाई माधोपुर मिली उनको
1: जी।
3: तो वो उनको देख के, उनका चार्म और वो खुद इतना अच्छा लेवल के प्लेयर थे, तो उनको देख के हम भी सोचा कि ऐसा तो बनी जाए, ऐसा नहीं तो कुछ तो बनी सही इनके जैसा। तो वहां पे फिर हम इस गेम की तरफ मूव करने लग गए।
1: बिल्कुल, सफर तो चलता रहा। चंद्रवीर जी, आज हम देखते हैं कि आपका बचपन से लेकर अब तक का जो भी मैच था, उनमें सबसे यादगार कोई पल अगर आपका रहा हो तो वो थोड़ा सा हमें बताएं।
2: हाल ही में सर सीनियर चैंपियनशिप खेलने गए थे हुगली वेस्ट बंगाल
1: जी,
2: वहां सर क्वार्टर फाइनल एक मैच चल रहा था हमारा
1: जी,
2: यूपी वर्सेस राजस्थान का चल रहा था। वो मैच में एक एक सेकंड सांसें रोकने वाला मैच था। एक यूपी के कोच थे तोहित सर, जब लास्ट 3 सेकंड बच रहे थे तब तोहित सर ने टाइम आउट लेके
1: जी
2: और एक गोल राजस्थान पे करवा के मैच बराबर कर दिया। मतलब एक बेहतरीन लेवल की कोचिंग देखने को मिली, बेहतरीन लेवल का मैच देखने को मिला, मतलब बैक टू बैक नेक टू नेक फाइट चल रही थी लास्ट
1: जी।
2: तक
1: जी।
2: फिर 3 सेकंड खत्म होने के बाद मैच टाई हो गया, फिर 2-2 सेकंड का वापस टाइम दिया एक्स्ट्रा टाइम
1: जी,
2: उसमें 2 गोल की लीड करके राजस्थान जीती। तो सर मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन मैच वो था।
1: अच्छा अनुभव आप लेके बैठे हैं
2: जी।
1: अच्छा चंद्रवीर जी, आप बताएंगे कि अब जो एक सफल हैंडबॉल के खिलाड़ी बनने के लिए मतलब बालकों

0: में कौन कौन से गुण होना आवश्यक है, क्या क्या योग्यताएं उसमें होनी चाहिए?
1: बिल्कुल साहब, सफल खिलाड़ी बनने के लिए आपको पंक्चुअल
0: समय का,
1: बिल्कुल आप पंक्चुअल रहे ग्राउंड पे, और डेडिकेशन आपका होना चाहिए, और खेल के प्रति प्यार होना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है,
1: जब तक आप उस चीज से प्यार नहीं करोगे वो आपको चीज नहीं मिलेगी,
0: हासिल ही नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल, और कोच आपके भले के लिए ही बोलता है, आप उसको अदरवाइज लेते हैं। जिसने कोच की बात को आंख बंद करके फॉलो किया वो बच्चा रुक ही नहीं सकता। ऐसे 50 उदाहरण है, जो माधोपुर के भी 10-20 उदाहरण है और बाहर के भी है, जो आज बहुत अच्छे लेवल पे हैंडबॉल खेल रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे, सिर्फ इसलिए कोच की बात को उन्होंने फॉलो किया। कोच हमेशा बच्चे को सही सलाह और सही गाइडेंस ही देता है।
0: बिल्कुल सही है शाम सिंह राजावत जी, आप बताएं कि मैच के पहले आप अपनी शारीरिक और मानसिक तैयारी किस रूप में करते हैं?
2: सर, मैच से पहले हम मेंटली फिट होना जरूरी है। प्रेशर में मैच खेलेंगे तो खेल ही नहीं पाएगा खिलाड़ी, तो पहले मेंटली फिट होना चाहिए, फिजिकली। उसके बाद ठीक है, मैच के पहले हम थोड़ा सा शारीरिक व्यायाम करते हैं, स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं और वार्म अपिंग करते हैं, तो उससे टीम के साथ एक साथ टीम भावना के साथ खेलते हैं
0: जी,
2: तब जाके एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए मैच में।
0: राजा जी, आप राष्ट्रीय स्तर के और मेडलिस्ट खिलाड़ी है, तो आप मेरे को ये बताएं कि जो आपको जो प्रेरणा दी है वो किस किस टीम के माध्यम से मिली है?
2: प्रेरणा सर, हमको हमारे एचआई के फेडरेशन के भी जनरल सेक्रेटरी है तेजरा सिंह जी, उन्होंने राजस्थान लेवल पर हैंडबॉल गेम को बढ़ाने के लिए काफी संघर्ष किया सर, और अभी भी कर ही रहे, और उन्हीं के साथ हमारे जो राजस्थान सेक्रेटरी हैं यश प्रताप सिंह जी, वो भी काफी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने राजस्थान के कई बच्चों का भला किया और आज भी कर रहे हैं, ठीक है, उनको प्रेरणा दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग हर जगह, और हर साल इसी वजह से मेडल लेके आ रहे हैं बच्चे।
0: अच्छा, हैंडबॉल खेल में कितने खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है, किस प्रकार से, थोड़ा सा इसके बारे में भी हमारे सुनने वालों को समझाएं।
2: हैंडबॉल में सर टीम तो 16 खिलाड़ियों की होती है, बाकी मैच में 7 खिलाड़ी खेलते हैं
0: जी।
2: राइट पोजीशन की बात करें तो एक गोलकीपर है, लेफ्ट बैक, राइट बैक, और लेफ्ट विंग, राइट विंग, और पिवट प्लेयर, ऐसे करके 7 पोजीशन होती है, और बहुत फास्ट मैच चलता है सर, हर पोजीशन का अलग अलग अपनी भूमिका रहती है।
0: राम सिंह जी, बात करें अपन, जो आपके खेल जीवन में कौन कौन सी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा है, थोड़ा सा वो भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: खिलाड़ियों का सर संघर्ष, जीवन में संघर्ष तो सभी के होता है, हर गेम वालों को
0: जी।
2: बाकी हमारे हैंडबॉल में ज्यादा इसलिए क्योंकि लोग पॉपुलरिटी कम है, ठीक है, क्रिकेट जैसा पॉपुलर गेम है नहीं
0: जी,
2: तो गवर्नमेंट से जो भी सहायता सपोर्ट या और भी सोशल तो वो मिल नहीं पाती है सर। एक्चुअली फाइनेंशियली काफी संघर्ष करना पड़ता है हर एक स्पोर्ट्समैन को
0: जी।
2: जैसे कई क्रिकेट वाले हैं, उनमें पैसा है सर, वहां तो ठीक है, सब जगह सपोर्ट करती है, बाकी निचले स्तर पे खिलाड़ी को गवर्नमेंट सपोर्ट करती नहीं है, तो कहीं टूर्नामेंट आयोजित करवाना, टूर्नामेंट में जाना आना, तो कई चीजें जो दिक्कत करती है, आज भी वो चीजें बच्चों के साथ देखने को मिलती है
0: जी। जी चंद्रवीर जी, मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जो एक सफल खिलाड़ी होता है एक शारीरिक ताकत के साथ और मानसिक संतुलन के साथ, तो इनका खिलाड़ियों का खान पान कैसा होना चाहिए अभी से, अगर बचपन से बच्चों को हम ये चाहें कि ये खेल में जाए, हैंडबॉल में जाए, ये किसी भी खेल में जा सके, तो उसका खान पान कैसा होना चाहिए?
1: सर, ये हैंडबॉल गेम क्या बड़ा रफ एंड टफ गेम है, और ये टोटल 100% बॉडी कॉन्टेक्ट गेम है
0: जी।
1: इसमें आपस में आपको रश करना ही पड़ेगा अपोनेंट के साथ
0: जी।
1: खाने पीने का इसके अंदर सबसे ज्यादा अहम रोल है, आपको देसी खाना
0: जी,
1: दूध, दही, छाछ, घी, क्यों हैंडबॉल में हनुमानगढ़, गंगानगर या ग्रामीण परिवेश के बच्चे सबसे हैंडबॉल में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं
0: जी।
1: जैसे करौली महावीर जी,
0: जी
1: के बच्चे,
0: क्या बात है,
1: वो इसलिए हो रहे हैं कि उनको खान पान उनको अच्छा मिल रहा है गांव के अंदर, और शुद्ध और देसी मिल रहा है, दूध भी खा रहे हैं, छाछ भी पी रहे हैं, घी भी खा रहे हैं, बढ़िया घर पे खा रहे हैं, बाहर का कोई मिलावटी नहीं खा रहे, इसलिए उनका बॉडी शेप, बॉडी स्ट्रक्चर और ये और पावर स्ट्रेंथ
0: जी।
1: फिर वो मेहनत करते हैं ग्राउंड पे तो उनका स्ट्रेंथ डेवलप होता है। खाने पीने के बाद अगर आप ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं तो आपके स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और कोऑर्डिनेशन ये अपने आप डेवलप हो जाता है।
0: बिल्कुल। अच्छा श्याम सिंह जी, आप बताएं कि जो टीम भावना का हैंडबॉल में कितना महत्व होता है?
2: टीम भावना, कोऑर्डिनेशन जरूरी है सर, बिना कोऑर्डिनेशन के हैंडबॉल मैच क्या है, टीम मैचेस, जब तक हर प्लेयर संघर्ष नहीं करेगा तो टीम जीत नहीं पाएगी।
0: चंद्रवीर जी, सवाई माधोपुर जिले में देखें तो अभी जो सवाई माधोपुर

0: गुरु की जो प्रतिभा है, थोड़ा सा उनके बारे में भी बताया कि तरासा है सवाई माधोपुर जिले में।
1: राजस्थान हैंडबॉल की तरफ से, जिला हैंडबॉल संघ की तरफ से जो बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने भाग लिया, जिसमें छवि सिंह चौहान है जो अभी गुड़गांव में डॉक्टर है, और तेजस्वी चुंडावत है जो खुद अभी केंद्रीय विद्यालय में अध्ययनरत है यहाँ सवाई माधोपुर, अरुण यादव है जो अभी जयपुर में है आरएस की तैयारी कर रहे हैं, जितेंद्र सिंह है ये खुद आरएस की तैयारी कर रहे हैं, ये जूनियर मेडलिस्ट है ये
0: जी।
1: तेजस्वी चुंडावत भी सीनियर नहीं प्लेइंग है, और हितेंद्र सिंह जूनियर मेडलिस्ट है, एरंता है, ज्योति मीना है, ये इंटरनेशनल प्लेयर है, दो बच्चे रावण की
0: जी।
1: सीमा मीना है जो रिसेंटली अभी लास्ट ईयर ही नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल है
0: जी,
1: और भव्या राजावत है ये भी स्कूल नेशनल है, आकांक्षा सैनी ये बच्ची भी स्कूल ओपन नेशनल है, अजय सैनी ये बच्चा अभी रिसेंटली वेस्ट जोन में इसकी टीम में सिल्वर मेडल, फिर इसका इनका ऑल इंडिया के लिए चयन हुआ, तो ऑल इंडिया में भी इन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो 2025-26-27 में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जो प्रतियोगिता है उसके अंदर सिल्वर मेडल प्राप्त किया
0: जी। ये तो बहुत अच्छी बात है, देखो आप लगातार काम कर रहे हैं, तो बच्चों की प्रतिभाएं निखरना एक आम और स्वाभाविक बात है। चंद्रवीर सिंह जी, युवा खिलाड़ियों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: सर, युवा खिलाड़ियों के लिए सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट
0: जी,
1: ये और आपकी सुबह उठना है तो उठना है, ग्राउंड जाना है तो जाना है, ये चीज जब तक ये भावना खिलाड़ी में नहीं आई, पंक्चुअलिटी मेन चीज, पंक्चुअलिटी
0: जी,
1: आप सही टाइम पे सही काम करें
0: जी,
1: टाइम से ग्राउंड जाओ, टाइम से ग्राउंड आओ, टाइम से खाना खाओ, टाइम से सो, टाइम से पढ़ो भी सही
0: जी, बिल्कुल पढ़ाई भी जरूरी है खेल के साथ साथ। अच्छा बात करें श्याम सिंह जी, आप बताएं कि जो भविष्य में आपके खेल संबंधी क्या लक्ष्य हैं?
2: सर, खेल संबंधी भविष्य में यही लक्ष्य है कि हमारे जो जिले के जो बच्चे हैं वो हैंडबॉल गेम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे बढ़े, ज्यादा से ज्यादा तैयारी करें, ग्राउंड पे ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति दें और जिले का और देश का नाम रोशन करें, यही लक्ष्य आगे हम बना के चल रहे हैं, और अभी भी निरंतर बच्चों को कोचिंग कर रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं निरंतर वो कुछ बेनिफिट भी मिल रहा है उनको।
0: बिल्कुल चंद्रवीर जी, नए जो बच्चे खेलने के उत्सुक होते हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे रेडियो के माध्यम से?
1: नए बच्चों को संदेश यही है कि आप मोबाइल छोड़ें, टीवी छोड़ें और घर का बिस्तर छोड़ें, टाइम से उठें, ग्राउंड आएं, मेहनत करें, जरूरी नहीं है किसी का साथ हो, टाइम पास नहीं करें, सीरियसली मेहनत करना है तो ग्राउंड आएं, बाकी टाइम पास करने के लिए तो आपका मोबाइल भी है और टीवी भी रखा है घर।
0: बिल्कुल, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, हमारे सुनने वालों को बहुत अच्छी अच्छी जानकारी और सटीक जानकारी दी, कार्यक्रम में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे हैंडबॉल खिलाड़ी और कोच श्यामवीर सिंह राजावत और चंद्रवीर सिंह राजावत से रवि केश मीणा की बातचीत, यह आकाशवाणी सवाई माधोपुर केंद्र का अंशदान था। श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं फिटनेस कोच आमिर खान से की गई बातचीत, यह आकाशवाणी सूरतगढ़ केंद्र का अंशदान है।
4: श्रोताओं नमस्कार, आज फिटनेस और हेल्थ के बारे में जो बारीकियां हैं उनको जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं आमिर खान। आप फिटनेस कोच हैं, नेशनल लेवल सर्टिफिकेशन आपने फिटनेस में जो है हासिल किया हुआ है, और आप बॉडी बिल्डिंग भी आपने लोगों को सिखाई है या उनके साथ काम किया है, और ऐसा कह सकते हैं कि आप पिछले 10 सालों से इसी फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, आप एक फिटनेस संस्था भी अपने चलाते हैं और इस क्षेत्र में लोगों को काफी मोटिवेट कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। आमिर खान, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद।
4: आमिर जी, हम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि फिटनेस जो है, फिटनेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या चीज है फिटनेस?
5: सर देखिए, फिटनेस एक ऐसी चीज है जो कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप जिम जाते हैं, घर पे कोई वर्कआउट करते हैं, योगा करते हैं, अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए एक फिटनेस अपने वर्कआउट में ला सकते हैं ताकि आपका शरीर एक फिट रहे, ना कि आप अगर कोई भी रोजमर्रा का काम कर रहे हैं तो आपकी जो लाइफस्टाइल है, जो रोजमर्रा के काम है उसमें कोई भी अड़चन ना आए।
4: सामान्य लाइफस्टाइल बीमारियां हैं जैसे किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाना, हार्ट बीट बढ़ जाती है लोगों की, सांस लेने में दिक्कत होती है, या फिर सीढ़ियां चढ़ते वक्त हांफ जाना, सीढ़ियां चढ़ते वक्त घुटनों में दर्द होना, ये सब क्या अपने फिटनेस लेवल को दर्शाते हैं?
5: बिल्कुल सर, अगर आपकी बॉडी में अगर फैट परसेंट की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है, आपका बॉडी वेट बहुत ज्यादा हो गया है, तो आपका फिटनेस लेवल आज के टाइम के लिए बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि आपकी बॉडी में आपके फैट ने इतनी ज्यादा मात्रा घेर कर ली है कि आपके बॉडी का जो वेन्स है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, के कारण अपना जो हार्ट है वो भी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता और अपना बीपी ही प्रॉब्लम काफी क्रिएट करता है, और आजकल आप देख रहे हो कि काफी हार्ट स्ट्रोक आ रहे हैं लोगों को, आज के टाइम में बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि लोग खान पीन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, जिसके कारण ये काफी प्रॉब्लम्स आती है, और अपनी इस प्रॉब्लम से आपको निवारण करने के लिए आपको फिटनेस ज्वाइन करनी चाहिए।
4: मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने नाम लिया अभी कि हमारी बॉडी में जो है फैट बढ़ जाता है।

0: फैट का जो आइडियल परसेंटेज है वो बॉडी में कितना होना चाहिए?
1: देखिए सर, एक जनरल जो आइडिया होता है वो 11 से 15% के बीच में अपना बॉडी फैट होना चाहिए।
0: तो मेल और फीमेल के लिए एक जैसा है?
1: फीमेल के लिए आप मान सकते हैं कि 18% तक आप बॉडी फैट उनका रख सकते हैं।
0: तो आज जो हम देख रहे हैं जनरल जो लाइफ स्टाइल है हमारा, तो वो तो मेरे हिसाब से 20% से ऊपर सबका फैट आपको देखने को मिलेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, आज अगर आप देखेंगे एक अनुपात निकालेंगे तो 100 में से सिर्फ 4 से 5 लोग ही एक जो आइडियल बॉडी फैट परसेंटेज है 11 से 15 उसके अंदर रहते हैं, बाकी 95% जो लोग हैं वो बिल्कुल अपनी बॉडी की जो संरचना है वो बिल्कुल खराब कर चुके हैं, क्योंकि खान पीन उन्होंने अपना ऐसा कर लिया है कि हर चीज में तेल डालना है, बाहर का खाना, फास्ट फूड इतना ज्यादा हो गया है आज के टाइम में कि वो बॉडी की संरचना को पूरा खराब कर रहा है। बॉडी के अंदर फैट की मात्रा 20 से 25 या 30% भी आने चली वो भी आज के टाइम में कम है।
0: तो ये जो फैट जब हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो इसका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के साथ कोई कनेक्शन?
1: जी बिल्कुल सर, अगर आपकी बॉडी में फैट की मात्रा इतनी ज्यादा हो गई है कि 25% या 30% से भी अगर ज्यादा हो गई है, तो अपना क्या होता है, जो अपने फेफड़े होते हैं सांस लेने के लिए, वो अपने हार्ट और अपनी ब्लड जो सर्कुलेशन जो संरचना है वो सब तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। उसमें क्या होता है, जब भी अपना हार्ट पंप करता है तो अपनी वेन्स के अंदर जब ब्लड निकलता है
0: जी,
1: ठीक है, तो उसके अंदर क्या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है अपने फैट के बढ़ने से, जिसके कारण क्या, जब भी अपना हार्ट पंप करेगा तो उसको प्रॉपर मात्रा में ब्लड ना मिलने के कारण, ठीक है, ये प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हो जाती है।
0: जी सही कहा आपने कि जब फैट अगर बॉडी में बढ़ेगा तो वो अंततः हमारी जो नाड़ियां हैं, जो रक्त वाहिनियां हैं, उनमें जाकर कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमेगा और बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशन जो उसके देखने को मिलते हैं।
1: बिल्कुल सर,
0: हम आपसे जो मुख्य हमारा टॉपिक है आज का फिटनेस पे बात करना चाहेंगे कि अगर किसी को फिटनेस अपनी अच्छी रखनी है, हेल्थ अपनी अच्छी रखनी है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ हो या फिर हम कहें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, तो कहां से वो शुरू करे फिटनेस?
1: देखिए सर, मैं आपको बताता हूं, एक कोई भी इंसान वो कम से कम 14 या 15 साल का एक होना चाहिए बच्चा
0: जी,
1: ठीक है, तब से वो अपनी फिटनेस लाइफस्टाइल को स्टार्ट कर सकता है। अब फिटनेस लाइफस्टाइल को स्टार्ट करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको जिम जाना ही अनिवार्य है। अगर आपके आसपास अगर आपके पास जिम है कि जहां पे आप जा सकते हो तो बिल्कुल आपको जिम ज्वाइन करनी चाहिए। अगर आपके पास जिम नहीं है तो आप अपना वर्कआउट भी घर पे कर सकते हो,
0: ठीक है। घर पर क्या वर्कआउट किया जा सकता है?
1: बिल्कुल सर, देखिए घर पे वर्कआउट करना बहुत ही आसान है। अगर आप सुबह भी पूरे 24 घंटे में से अगर 1 घंटा अपनी बॉडी को दे सकते हैं तो आप अपने घर पे भी वर्कआउट कीजिए, जिसके लिए आपको ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत भी नहीं होती।
0: तो वो तो हम लोग वॉकिंग कर ही लेते हैं।
1: नहीं सर, देखिए वॉकिंग करने से और फिटनेस का ध्यान रखने से ये पूरा अलग है, क्योंकि वॉकिंग में क्या होता है, जस्ट अपने जो जॉइंट्स हैं वो मूव करते हैं और अपनी पाचन क्रिया ही वही अच्छी रहती है। आपके फिटनेस लाइफस्टाइल को आप अच्छा नहीं कर सकते वॉकिंग करने से, ना ही अपनी जो बॉडी कंडीशन है वो चेंज कर पाओगे। बस ये है कि हाँ, जब भी आप वॉकिंग करते हो तो आपकी जो पाचन क्रिया है वो सही रहेगी, क्योंकि अंततः आप थोड़ी बहुत अपनी बॉडी की कैलोरीज बर्न करते हो, लेकिन अपनी फिटनेस को अच्छा रखने के लिए आप।
0: लेकिन कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो वॉकिंग से सुधरती है ये भी तो कहा जाता है।
1: नहीं सर, देखिए अगर आपको बॉडी का कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो आपको फिटनेस के अंदर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी 5,000 या 7,000 स्टेप चल पाओगे
0: जी।
1: आप 20-25 हजार आप स्टेप नहीं चल पाओगे, क्योंकि वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है उसमें।
0: ठीक है, हम बात करेंगे, आपने बताया घर पर अगर कोई वर्कआउट करना चाहता है तो अगर कोई इक्विपमेंट्स के साथ करना चाहे और बिना इक्विपमेंट के करना चाहे, हम सबसे पहले ये जानेंगे अगर कोई आदमी बिना इक्विपमेंट के घर पर ही शुरू करना चाह रहा है कि मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहूंगा, वॉकिंग तो वो पहले से कर रहा है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ भी ध्यान देना चाहता है, तो वो कैसे शुरू करे?
1: देखिए सर, मैं आपको बेसिक 2-3 एक्सरसाइज बताता हूँ, जैसे कि आप पुशअप्स लगा सकते हो घर पे,
0: ठीक है,
1: ठीक है, आप स्क्वाट्स लगा सकते हो, आप कोर एरिया को कम करने के लिए आप क्रंचेस लगा सकते हो, लेग रेजेस लगा सकते हो, लंजेस लगा सकते हो और प्लैंक लगा सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी जो जनरल फिटनेस है वो मेंटेन रहेगी थोड़ी बहुत, लेकिन आपको अच्छी फिटनेस रखने के लिए आपको जिम जाना अनिवार्य है, या आप अपने घर में कुछ इक्विपमेंट्स मंगा लीजिए जिससे आप अपनी फिटनेस को अच्छा रख पाए।
0: बेसिक इक्विपमेंट्स?
1: बिल्कुल सर, बेसिक इक्विपमेंट्स में आपको रखने के लिए आप एटलीस्ट 2.5 के 2 डंबल ले सकते हो, 5 केजी के 2 डंबल ले सकते हो और एक रेजिस्टेंट बैंड भी अपने यूज कर सकते हो
0: जी,
1: जिसमें आप अपना जो बॉडी का ऑल ओवर वर्कआउट है वो आप पूरा कर पाओगे।
0: तो जो डंबल है उनसे आप हमें थोड़ा डिटेल में बताइए, हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं, कि डंबल्स और रेजिस्टेंस बैंड से कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो एक बिगिनर जो करना चाहे वो घर पर एक्सरसाइज शुरू कर पाए?
1: देखिए, अगर आप कोई भी वर्कआउट अपना प्लान घर पे चलाना चाहते हैं तो सबसे पहले 2.5 के डंबल से आपको स्टार्ट करना चाहिए। जैसे आपने शोल्डर की कोई एक्सरसाइज करनी है तो शोल्डर प्रेस लगा सकते हो, साइड रेजेस लगा सकते हो, फ्रंट रेजेस लगा सकते हो और आप ट्रैप्स लगा सकते हो, ठीक है, ये आपका शोल्डर का वर्कआउट हो गया। अगर आपको चेस्ट का वर्कआउट करना है तो आप सिंपल जमीन पे लेट जाइए, ठीक है, तो आप सिंपल जमीन पे लेट के 5-5 केजी के डंबल उठा के देन चेस्ट प्रेस लगाइए, देन डंबल फ्लाई भी आप वहां पे कर सकते हैं और पुशअप्स भी लगा सकते हैं। ये नॉर्मल बेसिक जो आप वर्कआउट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं आप अपनी बॉडी को। ऐसा नहीं है, अगर आपके माइंड में है कि मेरे को बॉडी बिल्डिंग करना है, मेरे को बॉडी बहुत ज्यादा अच्छी बनानी है, तो उसके लिए आपको जिम में जाना अनिवार्य है, क्योंकि सिर्फ 2 डंबल से आप अपनी ऑल ओवर जो मसल बिल्डिंग को आप इतना इनहेंस नहीं कर पाओगे।
0: जैसे आपने अभी जो डंबल के एक्सरसाइजेस बताए वो तो हमारे जो अपर बॉडी है
1: जी,
0: उसमें आप बैक हो गया या फिर शोल्डर और आर्म्स जो है हमारे उनको मजबूत हम कर रहे हैं, बाकी जो लोअर बॉडी पार्ट है जैसे लेग्स है हमारे या फिर हमारी जो कमर है,
1: लोअर बैक।

0: बैक है या फिर अपर बैक है, इनको मजबूत करने के लिए भी एक्सरसाइज है?
1: जी बिल्कुल, आप अपर बैक को मजबूत करने के लिए आप डेडलिफ्ट जैसी वर्कआउट कर सकते हैं
0: घर पर,
1: घर पे कर सकते हैं दो डंबल से भी। ऐसा नहीं है कि डेडलिफ्ट के लिए आपको हैवी डंबल्स की जरूरत पड़ती है। आप एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे आप उनका रेप्स ज्यादा बढ़ा लीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको 5 से 6 रेप लगाने, आप अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप रेप्स भी ज्यादा लगा सकते हैं, 25 से 30 रेप्स लगा सकते हैं, जिसमें आपको एक फटीग महसूस होगा उस लेवल पे, और उस टाइम में आपकी जो मसल बिल्डिंग है वो थोड़ी बहुत बनने लग जाएगी। लेकिन आप एक टाइम में आपको फिटनेस लेवल बढ़ाने के लिए आप थोड़े और हैवी डंबल घर पे मंगवा सकते हो, आपकी जो फिटनेस लाइफस्टाइल है वो और अच्छी हो जाएगी। जिसमें अगर अपन कुछ एक्सरसाइज और ऐड करें, जिसमें अपन स्क्वाट्स ऐड कर सकते हैं लेग्स के लिए, लंजेस लगा सकते हैं, सुमो स्क्वाट्स लगा सकते हैं और हिप थ्रस्ट भी लगा सकते हैं, ये आपकी लोअर बॉडी को मजबूत करेगा।
0: आमिर जी, अब हम बात करेंगे बिगिनर से थोड़ा ऊपर, जो आदमी, जो भी महिला है या फिर पुरुष है जो जिम जाना चाहता है, अगर वो जिम जा रहा है तो वो किन बातों का ख्याल रखे? क्या कोई भी व्यक्ति जिम जा सकता है?
1: देखिए, हर कोई व्यक्ति जिम जा सकता है, ठीक है, बस थोड़ा सा ये हो कि उसका कार्डियोवास्कुलर इतना ज्यादा भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे कि वो थोड़ा भी अगर सांस ले,
0: अगर एक बार पहले डॉक्टर को दिखा ले, अगर कोई पहले इश्यू है तो।
1: जी जी, अगर उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं
0: जी,
1: तो वो पहले स्टार्टिंग यही करे कि वो अपना घर पे वर्कआउट करे एक अच्छे कोच के अंडर में, ठीक है, ताकि उनकी जो भी प्रॉब्लम कंडीशन आ रखी है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो दवाइयां चल रही है, उनसे पहले राहत पाए, उसके बाद में वो एक जिम ज्वाइन करे। और जिम जाने से पहले एक खास दिन का ध्यान रखें, जो भी आजकल के जो युवा पीढ़ी है वो ध्यान नहीं रखते, जो जीन्स में आ जाते हैं, वो स्लीपर्स के अंदर आ जाते हैं, इनमें बिल्कुल वर्कआउट ना करें। आप एक जिम में जाने के लिए प्रॉपर लोअर टी शर्ट और अपना शूज और एक वाटर बॉटल और एक टॉवल वो अपने साथ रखें, क्योंकि जिम एक ऐसी जगह है जहाँ पे काफी बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर कोई इंसान अपना पसीना बहाता है, जिससे अपने को काफी बीमारियां भी अपने आ सकती है, ठीक है, स्किन प्रॉब्लम काफी क्रिएट हो सकती है, जिसके लिए आप अपना खुद का टॉवल यूज करें, जो भी आप बेंच यूज कर रहे हो, कहीं पे भी आप वर्कआउट कर रहे हो, कोई भी डंबल कर रहे हो, तो उसको अपने स्वेट से दूर रखें,
0: जगह को साफ रखना चाहिए।
1: जी बिल्कुल।
0: हम ये जानना चाहेंगे कि क्या उम्र इसमें मैटर करती है? जैसा आपने पहले बताया था कि 14-15 साल से ऊपर का, किस उम्र तक के लोग हमारे भारत में हम देखते हैं कि जो 40 या 50 की उम्र को पार कर जाते हैं, वो जनरली ये सोचते हैं कि हमें तो बस अब इन जो हमारी बॉडी पेन कर रही है उसके साथ ही जीना है और धीरे धीरे ऐसे ही मर जाना है।
1: देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ, 15 साल के बाद में आप जिम ज्वाइन कीजिए, और जब तक आप जीवित हैं तब तक आप अपना जिम के लाइफस्टाइल को कंटिन्यू रखें, क्योंकि जिम एक ऐसी जगह है जिसे आप अपने को हेल्दी रख सकते हैं। जैसे कि आप शारीरिक तौर पे, जैसे अभी आप देखते हो कि 50 से 60 साल के बाद में लोगों के घुटनों में दर्द हो रहा है, एड़ियों में दर्द हो रहा है, लोअर बैक में दर्द है, चलने के लिए उनको सहारा चाहिए। और जनरली आप देखो 50 साल वाले लोगों के ये काफी प्रॉब्लम आ रही है, वो इसीलिए प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो अपनी फिटनेस पे पूरा ध्यान नहीं रखते।
0: क्योंकि ऐसा होता है कि 30 की उम्र के बाद में हमारा जो मसल्स है वो घटने लगते हैं बॉडी में, और उनको बनाए रखने के लिए हमें प्रॉपर एक्सरसाइज और डाइट, ये दोनों जो है बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: डाइट की हम बात करेंगे कि जो जिम जा रहा है वो जिम जाने से पहले क्या खा के जाए?
1: जिम जाने से पहले आप सिंपल एक बनाना खा सकते हैं, आधा घंटा पहले एक बनाना या एक एप्पल। और जिम जाने से पहले अगर आप कॉफी का सेवन कर सकते हैं, ब्लैक कॉफी का, मिल्क वाली नहीं, ओनली ब्लैक कॉफी, एक कप गर्म पानी के अंदर थोड़ी कॉफी मिला के आप पी सकते हैं, क्योंकि वो क्या करेगा, आपको जब भी आप वर्कआउट स्टार्ट करोगे आपको वर्कआउट की तरह प्रेरित करेगा ताकि आप वर्कआउट और अच्छा कर पाओ। और बनाना क्या करता है, अपनी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा ताकि आप जब भी जिम ज्वाइन करें, वर्कआउट करें, ताकि आपकी बॉडी में बिल्कुल वीकनेस ना आए, आप वर्कआउट अच्छा कर पाए और 1.5 घंटे तक आप वर्कआउट अपना कर पाए।
0: जी, आपने ये बहुत अच्छी बात बताई। लोगों को लगता है कि जिम जाते ही उनको सबसे पहले वो जो डिब्बे हैं वो शुरू करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। अगर किसी को सामान्य फिटनेस के लिए, अपनी हेल्थ के लिए काम करना है तो वो घर का बना खाना, साधारण जो हमारा भोजन है उसके साथ भी काम कर सकते हैं। हम आपसे आमिर ये पूछना चाहेंगे कि कितने समय तक जो वर्कआउट है जिम के अंदर वो करना चाहिए?
1: देखिए, एज ए बिगिनर के लिए आप, मैं बताता हूँ, कोई भी बिगिनर पर्सन है जो वर्कआउट करना चाहता है वो एटलीस्ट 40 से 45 मिनट या 1 घंटा माने चलिए उनको वर्कआउट करना चाहिए। जिम जाते ही सबसे पहले उनको वार्म अप करना चाहिए, स्ट्रेचिंग करनी चाहिए अपनी बॉडी की प्रॉपर, ताकि जब भी आप वर्कआउट स्टार्ट करें आपकी बॉडी में कोई भी क्रैम्प्स या मसल पेन इशू ना आए, ठीक है। आप अपना वर्कआउट अच्छा करें, देन वर्कआउट खत्म करने के बाद में लास्ट में स्ट्रेचिंग करें, ताकि आपकी जो स्ट्रेंथ में आपने जो बिल्डअप किया है, आपने मसल को फिटिक किया है, वो रिलैक्स हो जाए और आपकी जो रक्त प्रवाह है, ठीक है, वो वापस नॉर्मल हो जाए सुचारू रूप से।
0: अगर हमने ग्रुप जो है मसल्स का, जैसे चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स है, उनको कर लिया, तो उनको रिकवर होने के लिए कितने घंटे का समय लगता है?
1: देखिए, अगर आपकी डाइट बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है, आप अपना खान पीन का पूरा ध्यान रखते हैं, हर 2 से 2.5 घंटे बाद अपनी मील ले रहे हैं, प्रोटीन का लेवल आप प्रॉपर रख रहे हैं बॉडी के अंदर, तो आप मान चलिए 48 आवर्स से लेकर 72 आवर्स तक आपकी बॉडी रिकवर कर जाती है उस मसल। अगर आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर पा रही, अगर आपका वर्कआउट करने बाद में 2 दिन बाद भी उस मसल के अंदर सोरनेस है, तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि आप अपनी बॉडी के अंदर उत्तम मात्रा के अंदर प्रोटीन नहीं ले रहे, ठीक है, आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है। तो आप ये कर सकते हैं कि 1 दिन के अंदर एक ही जो बॉडी का मसल पार्ट ग्रुप है, जैसे चेस्ट है या बैक है, शोल्डर, कोई भी मसल पार्ट है, उसको एक ही कीजिए, जैसे उसकी 4 से 5 एक्सरसाइज इनफ होती है, उसको ही कीजिए, ताकि आपकी जो रिकवरी मील्स है वो उसको एक मसल को अच्छे से रिकवर कर सके, ताकि आप लॉन्ग टर्म के लिए वो पेन ना पड़े।
0: एक ग्रुप आपने हमें बताया, अन्य कौन कौन से ग्रुप होते हैं जो मसल्स के?
1: जैसे चेस्ट हो गया, आपने चेस्ट

0: हो गया, बैक, शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप्स हो गए, फोर आर्म्स हो गए, अपने लेग्स हो गए, ये सब अलग अलग पार्ट्स। और इनको करने के लिए मैं आपको जनरल चीज बता रहा हूँ, जैसे कोई भी बिगिनर है उसको अगर वर्कआउट करना है तो जैसे मंडे को वो चेस्ट लगा सकता है, ट्यूजडे को वो अपना बैक का वर्कआउट कर सकता है,
1: ठीक है,
0: और अपने वेडनेसडे को अपना लेग का वर्कआउट कर सकता है, उसके जस्ट नेक्स्ट डे जैसे अपने थर्सडे को अपना बाइसेप ट्राइसेप लगा सकता है, फ्राइडे को अपना शोल्डर का वर्कआउट कर सकता है, और सैटरडे को वापिस लेग्स का वर्कआउट कर सकता है, क्योंकि लेग्स एक ऐसा पार्ट है कि वो काफी बड़ा मसल ग्रुप है, वो जल्दी से गेन नहीं होता, और उस पर क्या होता है पेन भी काफी होता है, तो हर कोई इंसान मैं देखता हूँ कि लेग से एक्सरसाइज होती है उससे दूर भाग, लेकिन लेग का वर्कआउट सबसे अच्छा करना चाहिए आपको, क्योंकि लेग वर्कआउट करने से आपकी ऑल ओवर बॉडी ज्यादा अच्छी होती है, कंडीशन ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि जब मेन ग्रुप की बात करते हैं तो उनका क्या होता है, जब भी अपने लेग्स लगाते हैं तो उनका हार्मोन ज्यादा बिल्डअप होता है, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा पावरफुल बनता है, और टेस्टोस्टेरोन जितना अपना अच्छा रहता है मेंस की अगर मैं बात करूं तो आपकी बॉडी उतना ही जल्दी आपका मसल मास रिकवर करेगी और आपका फैट ड्रॉप करेगी।
1: एक मिसकंसेप्शन जो है जनरली देखा जाता है कि महिलाओं को जिम करने की क्या जरूरत है।
0: देखिए सर, आप एक जेंट्स हो या फीमेल हो, दोनों को ही जरूरत पड़ती है, दोनों के शरीर में मसल्स है, दोनों के शरीर में जॉइंट्स है, सबको एक मसल्स को बिल्डअप करने के लिए आपको जिम ज्वाइन करनी है। लोग कहते हैं, मैं भी देखता हूँ कि योगा कर लो, योगा करने से आप फिट रहोगे।
1: योगा भी अच्छा है अपनी जगह, लेकिन अगर अपने को मसल्स को बिल्ड करना है
0: जी,
1: तो स्ट्रेंथ एक्सरसाइज।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए सर, मैं योगा के लिए मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि योगा खराब है, लेकिन योगा से आप अपनी पाचन क्रिया या इनर जो ऑर्गन है आपके वो अच्छे रख सकते हो, लेकिन अगर आपको मसल बिल्डिंग ही करनी है, आपको बॉडी फिटनेस रखनी है, अपन मसल मास को बिल्डअप करना है, फैट को ड्रॉप करना है, तो आपको जिम ज्वाइन करनी चाहिए, जिससे आप अपने जो एक फिटनेस लेवल को आप अचीव कर पाए। और महिलाओं के लिए भी यही है कि आप अपने रेगुलर रूटीन में एक घंटा आप अपना जिम में ज्वाइन कीजिए। अगर आप जिम नहीं जा पा रहे, आसपास जिम नहीं है या घर से कोई परमिशन नहीं है, तो आप घर में भी अपना वर्कआउट कीजिए।
1: एक जो फिटनेस का बहुत बड़ा पहलू है उस पर हम बहुत ही संक्षिप्त में बात करना चाहेंगे, जो डाइट है। डाइट में मुख्य रूप से आप हमें ये बता दीजिए कि जो एक्सरसाइज कर रहा है उसको अपने डाइट में कौन कौन सी चीजें जो है वो ऐड करनी।
0: अगर कोई एग्स खा सकता है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, कोई एग खा सकता है, कोई चिकन खा सकता है, तो दिन के अंदर सिर्फ 5 से 8 अंडे अपने जो रेगुलर रूटीन में आप कह सकते हैं, पूरे दिन के अंदर 5 से 7 अंडे आप ऐड कर सकते हो। आप ऐसा नहीं है कि 8 के 8 अंडे आपको एक टाइम ही खाने, वो 2 से 4 करके आप कभी भी खा सकते हो, ठीक है, जिसमें इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलता है, ठीक है। पनीर भी आप ऐड कर सकते हो, जैसे और घर का बना खाना, दाल चावल, ये बहुत ही अच्छा है, राजमा चावल हो गए, ठीक है, इनमें भी आपको प्रोटीन की मात्रा मिलती है, सोयाबीन बड़ी होगी जो बहुत ही सस्ती मिल जाती है और काफी अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है, प्रोटीन के लिए काफी लाभदायक भी है, ठीक है। तो आप घर पे भी बना खाना आप आराम से खाइए, ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि आप, लेकिन आप ये देखिए काफी लोग क्या करते हैं कि सर हम घर का बना खाते हैं लेकिन हम फिट नहीं रह पा रहे, हमारा वेट बढ़ा जा रहा है, क्योंकि वो क्या करते हैं घर का बना खाना इतना ज्यादा खाते हैं कि उसकी कोई लिमिट नहीं होती।
1: जी जी, सही बात कही आपने कि जो एग्स हैं या फिर चिकन है या फिर किसी भी तरह का नॉन वेज आहार जो आपने बताया, वो अपनी डाइट में हम जो है वो अगर सम्मिलित करते हैं तो प्रोटीन जो है उससे अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। ऐसे लोग हमारे आसपास आपको ज्यादा मिलेंगे जो प्योर वेजिटेरियन है, उनके लिए आप कुछ ऑप्शंस और बताइए कि वो प्रोटीन का इंटेक कैसे बढ़ाएं।
0: जैसे एक सोया पनीर आती है, सोया पनीर वो खा सकते हैं, राजमा चावल खा सकते हैं। आप देखिए जो आजकल सत्तू पाउडर काफी चलन है, जो अपने जो काले चने होते हैं उनको पीस कर ही बनाया जाता है, तो वो भी आप इंटेक कर सकते हैं। दाल चावल खा सकते हैं, सोयाबीन बड़ी अपने को मार्केट में आराम से मिल जाती है, तो वो भी आप इंटेक कर सकते हैं।
1: वे प्रोटीन,
0: और देखिए सर, अगर आप इन डाइट्स को प्रॉपर अगर मेजर नहीं रख पाते, ठीक है, तो आप एक प्रोटीन का जो डिब्बा होता है, लोग इसको काफी मिसकंसेप्शन है कि भाई डिब्बा खा के बॉडी बनाई, ऐसा कुछ नहीं होता, वो चीजें सिर्फ दूध से ही बनी होती है। बस ध्यान ये रखना होता है कि आपको जो भी आप जहां से भी चीज परचेज कर रहे हो वो ओरिजिनल हो, ताकि आपकी बॉडी पे कोई भी साइड इफेक्ट ना हो उस चीज का, वो आप ऐड कर सकते हो। एक स्कूप प्रोटीन आप वर्कआउट के बाद में जरूर ऐड कीजिए, ताकि आपने जो भी वर्कआउट किया है उसकी रिकवरी के जो मोड है वो अच्छा हो जाए पहले से।
1: जी, हमारे जो श्रोता हमें सुन रहे हैं, हम यही उम्मीद करेंगे कि आमिर खान की जो बातें हैं उनको सुनकर उनकी लाइफ में मोटिवेशन आए, वो किसी भी तरह की एक्सरसाइज को चाहे वो घर पर करें या फिर जिम जाकर करें, और अपनी डाइट को जो संतुलित करें, अपने हेल्थ को, अपनी फिटनेस को अच्छा बनाए और एक अच्छे जीवन को जो है जीने की ओर अग्रसर हों। आमिर खान, आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे फिटनेस कोच आमिर खान से की गई बातचीत। यह आकाशवाणी

ये लगता है कि यहाँ

105 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सवाई माधोपुर के रणथंभौर चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही पल में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। यह समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई

0: ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
0: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एवियां पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार सातवीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने घोषणा की है कि इजरायली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इजरायल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इजरायल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इजरायली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दवा शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को मजबूत बनाने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप H में स्पेन और कबो वर्डे के बीच मुकाबला जारी है। अन्य मुकाबलों में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से जबकि आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 101.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सवाई माधोपुर के रणथंभौर चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:05 हुए हैं। हमारी प्रसारण सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन प्रसारण सभा में 5:55 पर आपसे फिर होगी मुलाकात। जय हिंद।